मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 34 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और नमस्ते लखनऊ की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बूंदों से भरी बारिश की इस सावन की प्यारी सी सुबह में कहीं मंदिरों की घंटियां गूंज रही हैं, तो कहीं चाय की प्यालियों से उठती भाप दिन की शुरुआत का एहसास करा रही है। लेकिन सुबह का समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि अपने सपनों को फिर से जगाने और जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी हमें देता है। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को हैं और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। आपको लिए चलते हैं समाचारों के लिए अपने दिल्ली केंद्र।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव

0: परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी का हमारे मॉर्निंग शो नमस्ते लखनऊ में। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हुए हैं और समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज ड्रैगन फ्रूट की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर डॉक्टर दिनेश कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां ड्रैगन फ्रूट उत्पादन करना चाहते हैं यानी इसकी बागवानी करना चाहते हैं, तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ।

0: से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर दिनेश कुमार साहब स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां ड्रैगन फ्रूट उत्पादन करना चाहते हैं किसान बागवान भाई बहन, तो क्या इसकी संभावना है?
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बरसात भी कभी पहले कभी बाद में होता है। इस परिदृश्य देखते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत अच्छी होती है। और आपको ये भी बता दें कि इसके लिए जो आपका ज़मीन हो उसका पीएच 5.5 से 6.5, इसका मतलब हो गया कि अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें इसकी खेती अच्छी होती है। दूसरा ये भी बता दें कि इसकी जो प्रजाति है ये इसके कलर पर होता है। पहला अगर आप देखेंगे ऊपर से लाल होता है और नीचे इसका गुदा सफ़ेद होता है
0: जी।
1: दूसरा होता है कि ऊपर से वो पीला होगा, नीचे उसका गुदा सफ़ेद होता है। तीसरा जो है ऊपर का छिलका भी लाल होता है और गुदा भी लाल होता है। तो इसी बेस पर इसकी वैरायटी होती है। और इसमें देखेंगे कि इसके जो बीज होता है बहुत छोटे छोटे काले रंग के होते हैं। और किसान भाइयों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए जो तापमान होना चाहिए 25 से लेकर के 35 डिग्री के आसपास अगर है तो इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और जहाँ पर बारिश कम होती है या जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होगा वहाँ पर भी इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और दूसरा किसान भाइयों ये भी कहना चाहते हैं कि इसकी जो हम लगाते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कटिंग भी क्या होना चाहिए, 15 से 25 सेंटीमीटर का आप काटना चाहिए। और काट करके पहले हम इसको 2-3 दिन सुखाते हैं, सूख जाने के बाद हल्का सा फिर इसको हम चाहे पाली बैग में चाहे ज़मीन में इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद जब इसमें जड़ आ जाए इसके बाद इसको हम प्लांटिंग के लिए लगाते हैं।
0: तो लगाने का उपयुक्त समय क्या है डॉक्टर साहब?
1: इस समय देखा जाए तो कहीं कहीं इसको फरवरी मार्च में भी लगाते हैं और इस समय भी अगर आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
0: यानी बरसात के समय लगा सकते हैं।
1: हाँ लगा सकते हैं।
0: तो इसके लिए कुछ खास जलवायु की जरूरत होगी?
1: किसान भाइयों एक ये बताना चाहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आपको बरसात हो तो उसमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। और जब इसको लगाते हैं तो इसके लिए आपको पोल चाहिए क्योंकि ये एक लता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि चाहे आयरन हो चाहे सीमेंट का पोल हो और वो 2 मीटर की हाइट का हो और उसको कम से कम 50-60 सेंटीमीटर जमीन के नीचे कर देते हैं, फिर उसको बांध करके ऊपर ले जाते हैं और ऊपर लता की तरह चारों तरफ फैलता है। और ये भी देखा गया है कि इसमें जो फल आते हैं वो कम से कम आप देखेंगे 300 से 600 ग्राम के आसपास आते हैं और किसान भाई लगा करके इससे अच्छा उत्पादन पैदा कर सकते हैं।
0: तो पोल से पोल की दूरी कितना होगी?
1: 3 मीटर बाई 3 मीटर की दूरी पर हम पोल को फिक्स करते हैं और उसी पर हम पौधों को चढ़ाते हैं।
0: अब खेत का चुनाव कैसा हो, जमीन कैसी हो और खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है डॉक्टर साहब?
1: हाँ किसान भाइयों, जैसा कि हमने पहले बताया कि इसके खेती के लिए जो आपका मिट्टी का पीएच है वो 5.5 से 6.5 के आसपास हो तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा मिट्टी आपकी बलुई डोमट होना चाहिए, जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए और उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। अगर उर्वरा शक्ति कम है तो गोबर की सड़ी हुई खाद और उसके साथ में आपको जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इसकी उचित मात्रा खाद को देना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 6392-43-14-10 6392-43-14-10।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में डॉक्टर साहब?
1: किसान भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं इसकी खेती अगर आप करते हैं तो इससे लाभ आपको अच्छा मिलेगा। और ये भी देखा गया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें ड्रैगन फ्रूट अच्छा पैदावार दे करके किसानों को खुशहाल बना सकता है।
0: डॉक्टर दिनेश कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ड्रैगन फ्रूट की उन्नत कृषि तकनीक, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर दिनेश कुमार और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुने आज का सुविचार चेतना।
1: चेतना का रूप संसार का दूसरा पक्ष है। इसका अर्थ है ज्ञान, अनुभव, कल्पना, संवेदना, आस्था आदि के रूप में स्वयं का परिचय देने वाली वह शक्ति जो जड़ जगत को उपयोगी बनाती और उपभोग करती है। कला, सौंदर्य, संवेदना, शालीनता, करुणा, मैत्री और उत्कृष्टता के प्रति आस्था जैसी सद्भावनाओं के बढ़ जाने से चेतना का स्तर उस स्थिति में जा पहुंचना चाहिए जिसे देव मानव कहते हैं। उपभोक्ता को पशु और उद्धत को पिशाच कहते हैं। पदार्थ के साथ प्राणी जितना घनिष्ठ रहता है उसी आधार पर उसकी जड़ता बढ़ जाती है और यंत्र मानव जैसी स्थिति में उसे जीवन यापन करना पड़ता है। चेतना का भाव पक्ष विकसित हो जाने पर दृष्टिकोण में उत्कृष्टता का समावेश होता है और स्थिति कुछ दूसरी ही होती है। चेतना का स्तर ऊंचा होने से व्यक्तित्व सुगठित बन पड़ता है। उस समय ऐसी रीति नीति अपनाई जाती है कि संपदाएं एवं विभूतियां उत्कृष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त हों। चेतना की अविकसित स्थिति उसे माना जाता है जो भावना की दृष्टि से बौनी है, जो संकीर्ण स्वार्थपरता का ताना बाना बुनने में तो कुशलता का परिचय देती है पर व्यापक परमार्थशीलता और उदार आत्मीयता भी बनी रहनी चाहिए इस तथ्य को प्राय भुला ही बैठती है। चेतना की विकासमान स्थिति उदार और आदर्शवादी परंपराएं स्नेह सद्भाव को बनाए रहती हैं। सद्भाव एवं सत्प्रवृत्तियां ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व को मानवीय महानता के रूप बनाती हैं। सृजन और सहयोग का वातावरण इसी आधार पर बनता है। संकीर्ण दृष्टिकोण के लोग ही अपहरण और आक्रमण की नीति अपनाते हैं और उनकी क्रिया प्रतिक्रिया से सर्वत्र विषाक्तता फैलती है। कृमि कीटकों की अविकसित चेतना हमें उपहासास्पद लगती है। ठीक उसी प्रकार सुविकसित देवमानव के लिए हमारी नरपश जैसी स्थिति निराशाजनक है। महर्षि अरविंद ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अति मानव के साथ मनुष्य बंदर जैसा लगेगा, क्योंकि दुर्बल काया और अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी देव मानव अपनी गरिमा के सहारे स्वयं खिलते और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। इसके विपरीत क्षुद्र दृष्टिकोण रहने पर सुसंपन्न लोग भी कृपणता और तुच्छता की कीचड़ों में पड़े रहते हैं। संपत्ति की शक्ति से भी सभी परिचित हैं, पर विभूतिवानों की सामर्थ्य कितनी बढ़ चढ़ी होती है इसका अनुभव विरले ही करते हैं। विभूतिवान स्वयं उठते हैं और अपने साथ साथ प्रबल झंझावात के द्वारा धूल कणों को आसमान तक पहुंचा देने की तरह असंख्यों को ऊंचा भी उठाते हैं। अपनी प्रतिभा से अंधकार एवं अवसाद की गई गुजरी परिस्थितियों को आलोक और ऊर्जा देकर परिवर्तित कर देते हैं। भौतिक क्षेत्र में चेतना का विकसित क्रियाकलाप आदिम काल से आज तक की प्रगति का पर्यवेक्षण करते हुए जाना जा सकता है। यदि आत्मिकी के परिक्षेत्र में अंतरंग की विभूतियों के विकसित करने में यहाँ तत्परता नियोजित की जा सके तो अनगढ़पन एवं अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा मनुष्य सहज ही देव मानव जैसी स्थिति में पहुंच सकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार चेतना। वाचन स्वर था प्रभात शुक्ल का। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। सावन का ये पावन महीना श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक शांति का संदेश लेकर आया है, तो आइए हम भी आज आराधना का आरंभ करें भगवान शिव की महिमा का स्मरण करते हुए, और सुनते हैं ये पावन भजन।

श्रोताओं, सावन की फुहारों के साथ जब शिव का नाम स्मरण जुड़ जाता है तो वातावरण और भी पावन उठता है। आइए भोलेनाथ की आराधना में

श्रोताओं, ये तो प्रत्येक दिवस ही ईश्वर की आराधना के लिए होते हैं, किंतु सावन मास का हर दिन भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार उनके चरणों में पुनः नतमस्तक हो जाएं।

ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। श्रोताओं, भक्ति हमें जीवन की सच्चाई, आत्मचिंतन और ईश्वर से जुड़ने का सहज मार्ग दिखाते हैं। इसलिए कुछ पल संसार की भागदौड़ से अलग होकर ईश्वर की भक्ति में जरूर व्यतीत कीजिए। आइए अब चलते हैं हनुमान जी की शरण में। कहते हैं, प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण मन को असीम शक्ति और साहस से भर देता है। ये वो नाम है जिससे भय तो मिटता ही है, दुख भी दूर होते हैं और जीवन में नया उत्साह भर

ईश्वर निराकार है, वो तो हर कण में विद्यमान है। उनकी भक्ति किसी रूप या नाम की सीमा में कभी नहीं बंधती। उनकी भक्ति और कृपा के बिना जीवन का एक पल भी काटना असंभव है।

श्रोताओं, भक्ति का सच्चा मार्ग प्रेम, समर्पण और विश्वास से होकर गुजरता है। जब मन पूरी श्रद्धा में से ईश्वर में लीन हो जाता है, तो हर पल एक नई आध्यात्मिक उन्नति बन जाता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रातःकालीन इस मधुर बेला में आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज का प्रसंग है खर दूषण की राक्षसी सेना से श्री राम लक्ष्मण का युद्ध वर्णन। आज सुनिए भाग 252।

अपनी बहन शूर्पनखा के कटे नाक कान और अपमान का बदला लेने के लिए खरदूषण तथा राक्षसों की सेना श्रीराम लक्ष्मण का वध करने आ पहुंची है। पल भर में हर तरह के आसुरी शस्त्रास्त्र दोनों किशोर तपस्वियों पर बरसने लगते हैं। श्रीराम इन अस्त्रों को तिल के कोमल पौधों की तरह टुकड़ों में काट देते हैं। जब राक्षसों के वाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए आने लगे तो श्रीराम को क्रोध हो आया और उन्होंने अपने तीखे वाणों का प्रयोग किया। आसुरी सेना प्राण बचाने को भागने लगी, किंतु खरदूषण और उनके तीसरे भाई त्रिशिरा की चेतावनी ने उसके पांव बांध दिए। जो कोई भागेगा उसका हम सिर काट देंगे। फिर तो सारा भूखंड राक्षसों के कटे सिर, देह, हाथ पैर तथा रक्त से पट गया, किंतु कटे सिर तथा अन्य अंग कटते और फिर जुड़ जाते। मायावी राक्षसी सेना का संहार प्रभु के मायावी रूप से ही हो सकता था और वही हुआ। खरदूषण समेत राक्षस सेना का विध्वंस देख शूर्पनखा रावण के पास उसे भड़काने पहुंची।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और कविता कृष्णमूर्ति, एवं संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आयोजितासु तयो विंशतितम राष्ट्रमंडल क्रीडासु उत्कृष्ट प्रदर्शनं कृतवतां क्रीडकानां अभिनन्दनम् अकरोत्। तदनन्तरं प्रश्नकालस्य आरम्भे विपक्षसदस्यैः छात्रान्दोलनेषु कथितस्य आरक्षकबलप्रयोगस्य विषयः उत्थापितः। अस्मिन्नेव समये सांख्यिकी कार्य क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयकं प्रस्तुतवान् तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंकर्स बुक्स एविडेंस इत्येतत् विधेयकं प्रस्तुतवती। विधानसभायाः उपनिर्वाचनेषु जनसुराज दलस्य नेता प्रशांत किशोरः बिहार राज्यस्य बांकीपुर आसने विजयं प्राप्तवान्। तत्रैव गुजरात राज्यस्य मंजलपुर आसने भाजपा दलेन स्वस्थानं पुनः प्राप्तम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस दलेन विजयम् अवाप्तम्। बिहारे प्रशांत किशोरः भाजपा दलस्य प्रत्याशिनं नीरज कुमारं चतुर्विंशत्यधिक त्रिशताधिक एकोनविंशति सहस्र मतैः पराजितवान्। असौ एकपञ्चाशदधिकैकशताधिक चतुष्षष्टि सहस्र मतानि प्राप्तवान्। गुजराते भाजपा दलस्य प्रत्याशी सतीश पटेलः कांग्रेस दलस्य भीका भाई रबारी इत्येनं 30,000 मतैः पराजितवान्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी घनश्याम सिंहः भाजपा दलस्य आशुतोष तिवारी इत्येनं 6,000 मतैः पराजित्य पुनरपि विजयं प्राप्तवान्। एतेभ्यः त्रयेभ्यः विधानसभासनेभ्यः मतदानं विगतमासस्य 30 दिनांके एव सम्पन्नमासीत्। तेलंगानायाः हैदराबादस्थले अद्य ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स एक्सपोर्ट नेटवर्क इत्यस्य द्वितीयोपवेशनं प्रारप्स्यते। अस्य द्विदिवसीयोपवेशनस्य आयोजनं स्थैर्याय नवोन्मेषाय सहयोगाय निरन्तरतायै च निर्माणम् इति विषयमाधारीकृत्य क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे ब्रिक्स सदस्य देशेभ्यः वरिष्ठनीति निर्मातारः व्यावहारिक विशेषज्ञाः सहैव भ्रष्टाचार विरोधी विधि प्रवर्तन अभिकरणानां प्रतिनिधयः अपि भागं ग्रहीष्यन्ति इति सम्भाव्यते। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ह्यः नवदिल्ल्याम् उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमंत्रिणा बख्तियार सईदोव इत्यनेन सह वार्ताम् अकरोत्। उभाभ्याम् मंत्रिभ्याम् भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सहभागितायाः विस्तृत समीक्षा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अवदत् यत् भारतीय क्रीडकैः ग्लास्गो नगरे आयोजितासु 26,000-तमवर्षस्य राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थस्थाने स्थापयित्वा गौरवपूर्णं इतिहासं विरचितम्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7 बजे हैं और श्रोताओं समय है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का। कार्यक्रम में आज नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं जर्नलिंग के विषय में। करें खुद से संवाद और रहें स्वस्थ।
2: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में मैं नीना सोनकर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज का विषय थोड़ा निजी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। हम जिस तेज रफ्तार जीवन में जी रहे हैं वहाँ अक्सर हमारी बातें अधूरी रह जाती हैं, दूसरों से भी और खुद से भी। ऐसे में एक सरल लेकिन गहरा उपाय है जर्नलिंग, यानी अपने मन की बातों को कागज पर उतारना, खुद से संवाद करना और भीतर के बोझ को हल्का करना। जर्नलिंग कोई नई अवधारणा

0: धारणा नहीं है। हमारे पूर्वज भी किसी न किसी रूप में अपने अनुभव, भावनाएं और विचार लिखते आए हैं। कभी ये डायरी के रूप में होता था, कभी पवित्र ग्रंथों के पन्नों पर, कभी किसी किताब की कोरी जगहों पर, लेकिन आज के समय में ये और भी जरूरी हो गया है। जब जीवन में विचारों की भीड़ हो, भावनाओं का शोर हो और मन की थकान हो, तब जर्नलिंग एक शांत सहयात्री बन जाती है। जब हम अपने दिन भर की घटनाओं, भावनाओं और विचारों को लिखते हैं, तब हम उन्हें एक रूप देते हैं। मन में जो अस्पष्ट था वो स्पष्ट होने लगता है। जैसे जैसे शब्द पंक्तियों में ढलते हैं, वैसे वैसे हमारे भीतर का भ्रम और उलझन सुलझने लगती हैं। ये सिर्फ मानसिक हल्कापन नहीं होता है, एक तरह की आत्म चिकित्सा है। ये अभ्यास हमें भीतर से देखना सिखाता है, अपने व्यवहार को समझना और सुधारना सिखाता है। शोध बताते हैं कि नियमित रूप से जर्नलिंग करने से तनाव और चिंता में कमी आती है। जब आप किसी चिंता को शब्द देते हैं तो वो मन से बाहर निकलती है। ये एक तरह का इमोशनल रिलीज है। कुछ मनोवैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि जर्नलिंग अवसाद के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती है, खासकर जब इसे एक अभ्यास की तरह रोज अपनाया जाए। जर्नलिंग का एक और बड़ा लाभ ये है कि ये आत्मचिंतन को बढ़ावा देती है। हम दिन भर में क्या सोचते हैं, किन चीजों से प्रभावित होते हैं, क्या बात हमें बार बार परेशान करती है, ये सब तभी समझ आता है जब हम उन्हें लिखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा सा समय निकालकर बस 5-10 मिनट लिखते हैं तो वो समय हमारे लिए मानसिक विश्राम का साधन बन जाता है। और जर्नलिंग का स्वरूप हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कोई सिर्फ दिन भर का लेखा जोखा लिखता है, कोई अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, कोई कृतज्ञता के कुछ वाक्य लिखता है, तो कोई सपनों और लक्ष्यों के बारे में। कुछ लोग सुबह उठते ही अपने विचार लिखते हैं, जिससे दिन की शुरुआत स्पष्ट और केंद्रित होती है। वहीं कुछ लोग रात में सोने से पहले लिखते हैं, जिससे मन का बोझ कम होता है और नींद भी बेहतर आती है। श्रोताओं, ये जानना भी जरूरी है कि जर्नलिंग कोई कविता या उपन्यास लिखना नहीं है। इसमें व्याकरण, भाषा या सुंदरता की चिंता नहीं होती। ये एक अंतरंग संवाद है, आप और आपकी डायरी के बीच। इसमें आप रो सकते हैं, हंस सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं जिसे आप किसी और से नहीं कह पाते हैं। जर्नलिंग का एक और सकारात्मक प्रभाव ये भी है कि ये लक्ष्य निर्धारण और आत्म विकास में मदद करती है। जब हम अपने लक्ष्य लिखते हैं और उन्हें नियमित रूप से पढ़ते हैं तो मन में एक प्रतिबद्धता बनती है। धीरे धीरे हम अपने व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगते हैं, अधिक अनुशासन, स्पष्टता और आत्म प्रेरणा आने लगती है। आज के डिजिटल युग में कई लोग ऑनलाइन जर्नलिंग एप्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कागज और कलम का जादू कुछ और ही होता है। उस लेखन की गति, स्याही की छुअन और पन्नों की खड़खड़ाहट, ये सब मन को जोड़ते हैं, तकनीक से नहीं, आत्मा से। हाँ, अगर कोई टाइपिंग में सहज है तो डिजिटल विकल्प भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे जरूरी है लगातार लिखते रहना, चाहे माध्यम कोई भी हो। कई माता पिता अपने बच्चों को जर्नलिंग की आदत डालते हैं। ये न केवल लेखन कौशल को निखारता है बल्कि भावनात्मक संतुलन भी सिखाता है। बच्चों में आत्मविश्वास आता है, वे अपने डर और उलझनों को बेहतर समझ पाते हैं। इसी तरह किशोरों और युवाओं के लिए भी ये एक सशक्त अभ्यास है, विशेष रूप से जब वे जीवन के कई बदलते चरणों से गुजर रहे होते हैं। श्रोताओं, आज की इस भागदौड़ में जब हम दूसरों से जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, तब खुद से जुड़ने की भी जरूरत है। और जर्नलिंग वो पुल है जो हमें हमारी ही भावनाओं, लक्ष्यों और सपनों से मिलवाता है। ये हमें सुनता है बिना किसी टोके, बिना किसी न्याय के। तो क्यों ना इस अभ्यास को हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें। श्रोताओं, हर सुबह या हर रात बस कुछ मिनट खुद के लिए निकालिए, लिखिए अच्छा या बुरा, उलझन सुलझन, हार जीत, डर या आशा, जो भी मन में हो। कोई और ना पढ़े, ना जाने, लेकिन आप जानेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं, क्या सोचते हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ जो जीवन को और अधिक आत्मीय और सजग बना सके। तब तक खुद से जुड़िए, मन की बात कहिए और जर्नलिंग से अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाइए। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे

थे जर्नलिंग, करें खुद से संवाद और रहें स्वस्थ। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 8 बजे से सुनिएगा संसद समीक्षा। रात्रि 10 बजे से संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश हम आपको सुनवाएंगे। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, आज रात्रि 8:20 से आप सुनेंगे विधानमंडल समीक्षा हमारे लखनऊ केंद्र से। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर जिलों की खबरें। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश होगा। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे राम नरेश व साथियों का आल्हा गायन। लोकरंग कार्यक्रम का समय होगा प्रातः 9:50 और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा दिन में 2:45 से। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। इस कार्यक्रम में आज बहनें सुन सकेंगी भेंट वार्ता, बच्चे का अमृतपान, माँ को मिले समर्थन सम्मान। इस विषय पर डॉक्टर ऋतु सक्सेना से भेंट कर बातचीत करेंगी ममता उपाध्याय। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार प्रबंधन। वार्ताकार होंगे अवधेश कुमार तिवारी और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग 5:10 से। इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में स्वास्थ्य सुरक्षा, इस विषय पर डॉक्टर आशीष कुमार से विष्णु प्रिया की भेंट वार्ता आज युवा श्रोता सुन सकेंगे। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोक कायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता तकनीक से सशक्त होते दिव्यांगजन। वार्ताकार होंगे अजय कुमार श्रीवास्तव। 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। आज इस कार्यक्रम में खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन, इस विषय पर डॉक्टर रिंकी कुमारी चौहान से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता आप सुन सकेंगे। रात्रि 9:30 से श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। आज सुबह कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा प्रातः 7:31 पर। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

सभी श्रोताओं को रिंकी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा के आज के सफर में। दोस्तों कहते हैं दुनिया में सबसे पहला स्वाद जो किसी भी शिशु की जीभ पर सबसे पहले उतरता है वो किसी मिठाई या किसी पकवान का नहीं बल्कि माँ के दूध का होता है। जी हाँ, यही वो पहला अमृत है जिससे जीवन की शुरुआत होती है। ये केवल भोजन नहीं बल्कि ममता का पहला स्पर्श, सुरक्षा का पहला एहसास और विश्वास का पहला पाठ भी है। दोस्तों यूं तो दुनिया की

हर भाषा अलग हो सकती है, हर देश की संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन एक बात हर जगह एक जैसी मिलती है, वो है एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर स्तनपान कराती है, शायद इसलिए माँ के दूध को केवल पोषण नहीं बल्कि प्रेम की भाषा भी कहा गया है। तो आज विविधा में हम बात करेंगे लोक संस्कृति में माँ का दूध इस विषय पर। देखा जाए तो ये केवल एक विषय नहीं है जो स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि ये हमारी परंपराओं, हमारे लोकगीतों, हमारी संस्कृति, हमारी कहावतों और हमारे जीवन के मूल्यों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे गांव में दोस्तों एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है कि माँ का दूध और धरती का पानी दोनों जीवन की सच्ची कहानी। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि उस सोच का परिचय है जिसमें माँ के दूध को प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार माना गया है। भारतीय लोक संस्कृति में माँ के दूध को अमृत, जीवन रस और ईश्वर का वरदान तक कहा गया है। आपने सुना भी होगा कि जब किसी व्यक्ति के साहस की प्रशंसा करनी होती है तो लोग आज भी यही कहते हैं कि भाई उसने अपनी माँ का दूध पिया है, उसके सामने मत जाना। जी हाँ, यहाँ माँ का दूध केवल शरीर की ताकत का प्रतीक नहीं बल्कि साहस, संस्कार और आत्मविश्वास का भी प्रतीक बन जाता है। हमारे लोकगीतों में भी माँ और शिशु का संबंध बहुत भावपूर्ण ढंग से चित्रित हुआ है। इन लोकगीतों में दूध को केवल भोजन नहीं माना गया बल्कि ये माँ की ममता का संगीत बन जाता है। भारतीय परंपरा में बच्चे के जन्म के बाद माँ और शिशु की देखभाल से जुड़े बहुत सारे रीति रिवाज रहे हैं। घर की बुजुर्ग महिलाएं नई माँ को पौष्टिक भोजन देती थी ताकि बच्चे पर्याप्त मात्रा में दूध प्राप्त कर सके। मेथी, सौंठ, गोंद के लड्डू, सौंफ, अजवाइन, देसी घी और कई पारंपरिक व्यंजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि माँ के स्वास्थ्य और स्तनपान को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाए जाते थे। यानी हमारी लोक संस्कृति में माँ के दूध की महत्ता केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी आकी गई है। इसीलिए बच्चे जब बड़े होते हैं तो बस एक ही बात कहते हैं,

श्रोताओं, 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जन्म के तुरंत बाद निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, शिशु के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसे अक्सर बच्चे की पहली प्राकृतिक वैक्सीन भी माना जाता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले अनेक तत्व होते हैं। आज चिकित्सा विज्ञान भी यही सलाह देता है कि जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराया जाए और शुरुआती 6 महीने तक शिशु को केवल मां का दूध ही आहार स्वरूप दिया जाए। दोस्तों, ये सुखद है कि हमारी परंपराओं में भी सदियों से यही भावना रही है कि माँ का दूध बच्चे का पहला और सर्वोत्तम आहार है। यकीन मानिए, लोक संस्कृति हमें केवल परंपराएं नहीं देती बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है। माँ का दूध केवल हमें पोषण ही नहीं देता बल्कि माँ और बच्चे के बीच ऐसा भावनात्मक रिश्ता भी बनाता है जिसकी नींव जीवन भर रहती है। शायद यही कारण है कि दुनिया की लगभग हर संस्कृति में माँ को जीवनदायिनी कहा गया है। हमारी लोक परंपराएं हमें यही सिखाती हैं कि माँ का सदैव सम्मान कीजिए। इसके लिए केवल एक दिन नहीं होना चाहिए बल्कि हर दिन आपके हृदय में अपनी माँ के लिए प्रेम और सम्मान रहना चाहिए। जब भी हम किसी माँ को अपने शिशु को गोद में लेकर उसे स्नेह से दूध पिलाते देखते हैं तो ये हम प्रकृति

प्रकृति का सबसे सुंदर दृश्य देख रहे होते हैं, जहां प्रेम, त्याग, धैर्य और जीवन एक साथ दिखाई देते हैं। तो आइए हम भी इस प्रकृतिक सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें, नई माताओं का उत्साह बढ़ाएं, उन्हें सहयोग दें और समाज में स्तनपान के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अब आज विविधा के सफर से मुझे यानी अपनी दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति। फिर होगी किसी रोज मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा का किया आह्वान, आज पेश होगा अनुपूरक बजट। लोकसभा ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन विधानसभा के

0: सदस्य रहे आलमबदी के निधन पर शोक जताया गया। साथ ही 21 पूर्व सदस्यों को भी श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्ष में संवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के बाद बनी योजनाओं के माध्यम से ही सरकार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि सदन के समय का बेहतर उपयोग करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सदन में सार्थक चर्चा की जाए।
1: यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े भी मुद्दों

0: गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार एक से डेढ़ सप्ताह में आउटसोर्स कमीशन को लागू करने के साथ ही न्यूनतम मानदेय सुनिश्चित करने जा रही है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। उधर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता का मुद्दा उठाया। जवाब में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से अवगत कराया। सरकार के उत्तर से संतुष्ट न होने पर सपा के सदस्यों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विधान परिषद में प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर कर्मचारियों की तरह ही सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिए जाने का मुद्दा भी उठा। इस पर नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को लेकर प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर विचार करेगी।
2: शिक्षकों के लिए हमारी सरकार ने इस बीच माननीय सभापति जी काम किया है, कैशलेस सहित, शिक्षा मित्रों सहित, अनुदेशकों सहित कितने बड़े बड़े कदम उठाए। कोई भी अगर छूटा होगा तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम लोग कोई छूटे ना, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना, इस लक्ष्य में काम कर रहे हैं।
1: लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक कल पारित हो गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।
3: यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ में कल से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। उद्घाटन सत्र के दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के NSO प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन JSP 2026 का मसौदा और इसका संक्षिप्त संस्करण भी जारी किया गया। इस अवसर पर सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अध्यक्ष डॉ. सौरभ गर्ग ने राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के आधुनिकीकरण, प्रशासनिक डेटा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के उपयोग और गोपनीयता मानकों को बेहतर बनाने पर जोर दिया। इस दौरान सभी देशों ने ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के तहत सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

0: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल ग्रेटर नोएडा में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के साथ देश प्रगति के पथ पर है।
1: गरीबों को पैर से खड़ा करने का काम किया है, उसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता था। नागरिक व्यवस्था के पहले पीछे बात करता था, आज व्यवस्था नागरिक तक पहुंच रही है, ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था है।
0: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की अध्यक्षता में कल आगरा के डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय का 92वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। समारोह में 64 मेधावी विद्यार्थियों को 88 पदकों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन जीने का एक मूल मंत्र दिया, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सर्वोपरि है। आज इमाम हुसैन का चेहल्लुम मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में निकलने वाले ऐतिहासिक जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चेहल्लुम के मद्देनजर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और भूल भुलैया जैसे लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में इस समय मानसून पूरी तरह सक्रिय है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम और कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा की सूचना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सार्थक चर्चा करने का किया आह्वान, आज पेश होगा अनुपूरक बजट। लोकसभा ने पारित किया न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026। लखनऊ में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों NSO के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक का हुआ शुभारंभ। और प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं, उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग शो नमस्ते लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

दोस्तों नमस्कार, हेलो, हाय, सुप्रभात। और ये भीगी भीगी सी सुबह में मैं रिंकी शर्मा आ गई हूँ लेकर आप सभी का कार्यक्रम जो है आज सुबह। आज के सफर में मेरे साथ है

0: सत श्रीवास्तव, तो कीजिए हम दोनों का स्वीकार प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, उम्मीद है कि बारिश की बूंदों के साथ ही आपका दिन मुस्कान, उत्साह और अच्छी ऊर्जा के साथ शुरू हुआ होगा। आने वाले कुछ समय तक हम साथ रहेंगे, ये तो आपको पता ही है। कुछ अच्छी बातें भी करेंगे, कुछ अच्छी बातें नहीं श्रद्धा, बहुत सारी बातें करेंगे, है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि हम साथ साथ हैं और हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, तो बातें तो अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी।
1: जी हाँ, और इसके साथ जानकारियों का खजाना तो हमारे पास है ही, जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करेंगे, और इसके साथ ही सुनाएंगे आपको आपकी पसंद के कुछ खूबसूरत से गीत। आपकी पसंद के इसलिए क्योंकि जो आपकी पसंद वो हमारी पसंद, और हम ढूंढ के लाते हैं आपके लिए कुछ ऐसे सदाबहार नगमे जो वाकई आपकी सुबह को और खास बना देते हैं।
0: जी हाँ, और आज का दिन तो बेहद खास है क्योंकि सुबह से ही पानी बरस रहा है ना रिंकी?
1: जी बिल्कुल, और आज हम लोग दौड़ते आए, भागते आए, भीगते आए, लेकिन आए
0: आ गए क्योंकि आपसे मिलना जो था।
1: जी हाँ भाई, देखिए दोस्ती का मतलब ही यही होता है, अगर वादा किया है तो निभाइए। हमने कहा था कि जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, तो देखिए हम आ गए हैं लेकर आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आज सुबह।
0: तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर सकारात्मक सोच और मधुर संगीत के साथ हो जाए तो पूरा दिन जैसे सहज और आनंदमय बन जाता है। तो आज की इस खूबसूरत सुबह का सफर शुरू करते हैं आपके साथ और आपके लिए।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा श्रद्धा, सुबह का समय अगर खूबसूरत विचारों के साथ हो तो बात क्या खास हो जाती है ना। और देखिए ना, जो सुबह का मौसम होता है वो भी बहुत खास होता है, जैसे रात की जो शांति होती है, एक अजीब सी शांति होती है, और उसके बाद प्रकृति जैसे फिर से मुस्कुराने लगती है, जाग जाती है, पक्षियों का कलरव होता है, पेड़ों पर हरियाली, सावन का महीना चल रहा है, पेड़ों पर अलग तरीके की हरियाली है, हल्की हवा,
0: खिले खिले से दिख रहे हैं ना।
1: और आज तो लखनऊ वालों का इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि रात से ही बहुत अच्छी बारिश हो गई है, शुरू है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो ये सब चीजें हमें याद दिलाती हैं कि एक जो नया दिन शुरू हो रहा है वो अपने साथ एक अवसर लेकर के आया है कि हम फिर से जो चाहे वो कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और रिंकी, इन दिनों सावन का महीना भी अपने पूरे रंग में है, कभी रिमझिम फुहारे, कभी बादलों की गड़गड़ाहट और कभी धूप की हल्की मुस्कान, मौसम का हर दिन नया रूप दिखा रहा है। ऐसे मौसम में मन भी कुछ गुनगुनाने का होता है ना?
1: जी बिल्कुल, गुनगुनाने का मन होता है, गुनगुनाया जाएगा, सुनाया भी जाएगा, लेकिन बात पहले सुविचार की कर लेते हैं। तो आज का सुविचार क्या कहता है श्रद्धा?
0: जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। रिंकी,
1: वाह क्या बात कही, और मुझे लगता है कि बूढ़ा तो कोई भी नहीं होना चाहता है, और खासकर अगर लड़कियों की बात करें तो वो तो अपनी एज हमेशा कम करके ही बताती है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, और मुझे लगता है सबको अच्छा लगता है,
0: कोई खूबसूरत दिखना चाहता है।
1: अगर आप बूढ़े नहीं होना चाहते हैं तो हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास जरूर कीजिए, और याद रखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है।
0: जी हाँ, तो रिंकी हमें तो लगता है हमारे श्रोता अब नित नया कुछ सीखने का प्रयास जरूर करेंगे।
1: हाँ, क्योंकि हमने उनको एक राज की बात बता दी ना।
0: जी हाँ।
1: कि भाई देखिए, बूढ़ा नहीं होना चाहते तो ऐसा करिए, सबसे सरल उपाय है, और एक और तरीका है कि आप अपने उम्र को जो है वो बढ़ने से रोक सकते हैं। पता
0: क्या? क्या?
1: अपनी पसंद का गीत संगीत सुनिए।
0: जी हाँ भाई, इसमें मन खो जाता है और आप भूल जाते हैं सब कुछ, तो क्यों ना आपको सुनवा दिया जाए एक प्यारा सा गीत।
1: बिल्कुल, और देखिए बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, तो हमारे श्रोता बस हम उनसे यही कहेंगे कि चाय का एक कप उठाइए और इस गीत के साथ बालकनी में पहुंच जाइए, बरामदे में पहुंच जाइए, और आनंद लीजिए खूबसूरत से नगमे का।

0: खूबसूरत सा गीत आपने सुना इला अरुण और लता मंगेशकर की मीठी सी आवाज में। फिल्म का नाम था लम्हे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं इस गीत को सुन के थोड़ा सा तो बारिश की तरफ आकर्षित हुए होंगे। उन लोगों को भी बारिश इस गाने ने अच्छी लगवा दी होगी जिन लोगों को बारिश थोड़ी कम पसंद है ना।
1: हाँ भाई, होते हैं बहुत से जिन्हें बारिश पसंद नहीं, लेकिन पता है बहुत से लोग होते हैं जिन्हें बारिश में भीगने का बहुत मन करता है
0: जी,
1: है ना?
0: बिल्कुल। तो आप किस कैटेगरी में आती है
1: भाई? हम तो बारिश में भीगना पसंद करते हैं, खूब झूम के पानी झूम के तो बरसे और हम उसका आनंद लें। लेकिन कुछ जानकारी भी अपने श्रोताओं को देते चले।
0: जी हाँ, और इसके साथ सबसे पहली जानकारी जो अभी आपने बात कही ना कि हम भीगे, भीगे तो जरूर, मजा जरूर लें बारिश का, लेकिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और देखिए, जब बारिश वगैरह होती है ना तो इसमें कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आ ही जाती है, जैसे कि बिजली की समस्या बड़ी उत्पन्न हो जाती है ना, जैसे बस आसमान में बादल छाए, थोड़े से बिजली कड़की तो लाइट चली जाती है
1: जी।
0: तो इसके लिए अभी तो बहुत अच्छा सा वो आ गया ना, देखिए जो सोलर सिस्टम लोग लगवा रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
0: तो इसका लाभ उठा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने ये लाभ उठाया भी है। तो अपने श्रोताओं को एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आज जरूर देना चाहेंगे कि बारिश का मजा तो लें, लेकिन इसके साथ ही जो समस्याएं इस मौसम में आती हैं वो ना आने पाए, इसलिए विशेष चर्चा सुनवाते हैं आपको। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस चर्चा में योजना के लाभार्थियों से बातचीत के माध्यम से उनके अनुभव और इस पहल से हुए लाभ जानने का प्रयास किया गया है। आपसे बातचीत कर रहे हैं रमनप्रीत सिंह।
2: नमस्कार, आज सुबह में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमनप्रीत सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बेहद

0: महत्वपूर्ण मुद्दे पर। जी हां, आज उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा बनकर उभरा है। यह सफलता केंद्र सरकार की दूरदर्शिता और राज्य सरकार के बेहतरीन तालमेल का नतीजा है। केंद्र सरकार ने देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और उन्हें मुफ्त बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। केंद्र सरकार के द्वारा 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 78,000 की भारी सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार की इस योजना को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपनी सौर ऊर्जा नीति के तहत 30,000 रुपए की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दे रही है। यानी यूपी के लोगों को केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर कुल 1,08,000 तक की सब्सिडी का फायदा मिल रहा है, जिसने इसे जनता के लिए बेहद सुलभ बना दिया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करना और ग्रिड पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के मामले में लखनऊ गुजरात के सूरत को पछाड़कर पूरे भारत में पहले स्थान पर पहुंच गया है। यूपी नेडा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लखनऊ में अब तक 87,000 से अधिक घरेलू छतों पर सोलर प्लांट इंस्टॉल किए जा चुके हैं। लखनऊ में सौर ऊर्जा को लेकर इतनी जबरदस्त दीवानगी है कि शहर के लगभग 100 घर हर दिन सोलर एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं। बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक यानी नेट मीटरिंग प्रणाली की वजह से लखनऊ और यूपी के अन्य शहरों के लोग अब सिर्फ बिजली का बिल भरते नहीं, बल्कि अपनी छतों पर बनी एक्स्ट्रा बिजली सरकार को बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। यूपी के हजारों युवाओं को सोलर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग देकर सूर्य मित्र के रूप में रोजगार से जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। लखनऊ के साथ साथ अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहरों में कलेक्ट्रेट, विकास भवन और विश्वविद्यालय पूरी तरह से सोलर पावर हो रहे हैं। आइए सुनते हैं इस योजना से लाभान्वित हुए कुछ ग्राहकों का अनुभव।
1: नमस्कार, मेरा नाम इश्मीत सिंह पावा है और मैं सरोजनी नगर लखनऊ का निवासी हूँ। पहले हर महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखकर टेंशन हो जाती थी, जिसके बाद मुझे पीएम सूर्य घर योजना के बारे में पता चला, जिसके चलते मैंने अपने घर में सोलर पैनल प्लांट लगवाया। और आज मैं बहुत गर्व और खुशी से बताना चाहता हूँ कि मेरा घर स्वच्छ साफ सौर ऊर्जा से चल रहा है। ये डिसीजन मेरे लिए फाइनेंशियली भी काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। मेरा बिजली का बिल लगभग 80% तक कम हो गया है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं अपने बच्चों के बेहतर और ग्रीन फ्यूचर के लिए एक छोटा सा कदम उठा पाया हूँ। मुझे लगता है कि हम सभी देशवासियों को ये पीएम सूर्य घर योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि ना इससे केवल हमारी बचत होगी बल्कि हमारा एनवायरनमेंट और भी सुरक्षित होगा, जिससे हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद कर पाएंगे। तो मैं दिल से सबसे आग्रह करता हूँ कि इस योजना का फ़ायदा ज़रूर उठाएं।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा वर्मा है। मैं एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ में रहती हूँ। मैंने पीएम सूर्य योजना के अंतर्गत सोलर लगवाया है, जिससे मेरे घर पर बिजली के बिल में लगभग 80-90% की कमी आई है। सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाकर स्वच्छ और सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना से बिजली का खर्च कम हो जाता है, पर्यावरण की रक्षा होती है, देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ता है। आइए हम सभी सौर ऊर्जा को अपनाएं और हर घर सोलर, हर घर उजाला के संकल्प को साकार करें। धन्यवाद।
3: मेरा नाम रविंद्र कुमार है। साथियों, पिछले साल मई में मैंने अपने घर के छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगवाया है। और मैं एक बात सबको बताना चाहता हूँ कि पिछली मई से और अभी इस समय जुलाई चल रही है, 1 साल की अवधि हो गई और मुझे बहुत फायदा मिला है। मेरा बिजली का बिल 3500, 4000, 4500 तक आता था गर्मियों में, और ठंड के दिनों में मेरा बिल 1200, 1500, 1800 तक आ जाता था। लेकिन मैं आपको बताऊं, शुरुआत में 2-3 महीने 1-1000 बिल आने के बाद से मेरा बिल 200 रुपए, 400 रुपए आना शुरू हो गया। अभी की मैं बिल्कुल लेटेस्ट बात बताऊं तो पिछले 5 महीने से मैंने कोई भी पैसा बिजली विभाग को नहीं दिया है, मेरा बिल 0 आ रहा है। तो साथियों, ये कितना बड़ा फायदा हुआ कि एक तरफ मुझे 1,08,000 सब्सिडी भी सरकार से प्राप्त हुई, तो मेरा कितना कम पैसा लगा, और उस पैसे में मैं पिछले 1 साल से लगभग

0: ना के बराबर बिजली का बिल दे रहा हूं, और कुछ महीनों में तो बिल्कुल भी मैंने बिल नहीं दिया है।
1: नमस्कार, मेरा नाम बृजेश कुमार तिवारी है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के विषय में। हमने पिछले वर्ष यानी कि सितंबर 2025 में अपने छत पर रूफटॉप सोलर योजना का लाभ उठाते हुए सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट का एक संयंत्र लगाया। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे घर का जो बिजली बिल आता था वो लगभग 3200 से 4000, अधिकतम 4500 रुपये तक भी आता था। तो जब हमने 3 किलोवाट का ये सोलर प्लांट लगाया तो अब पिछले वर्ष लगभग सितंबर से और अभी इस वर्ष जुलाई तक जो भी हमने बिल देखा उसमें अप्रत्याशित रूप से उसमें हमारी बचत हुई है। हमारा लगाने के बाद अधिकतम बिल इस महीने आया है 1100 रुपये का, वरना अब तक हमारा बिल नहीं आ रहा था, केवल मंथली फिक्स चार्ज आ रहा था। तो इसके पहला फायदा तो हमको ये मिला कि भाई हमारे बिजली के बिल में बचत हुई। दूसरा फायदा हमको ये भी है कि हमको इसके तहत जो मिलने वाली सब्सिडी है उसका भी लाभ मिला। 78,000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से हमारे खाते में आए और 30,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ, तो कुल मिलाकर 1,08,000 की सब्सिडी भी मिली। और इस योजना के बहुत सारे ऐसे भी लाभ हैं जो दिखते तो नहीं है लेकिन बड़े ही दूरगामी उनका जो है परिणाम है। जैसे कि हमारे मन में शुरू से ये था इस योजना को लेकर के कि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रकृति की तरफ दें। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना निश्चित रूप से सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ सभी को अधिक से अधिक मात्रा में उठाना चाहिए, और सब्सिडी का भी लाभ लें और साथ ही साथ इस प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान भी दें।
2: केंद्र सरकार की नीतियां और उत्तर प्रदेश का संकल्प रंग ला रहा है। कल तक जो लखनऊ अपनी नफासत और तहजीब के लिए जाना जाता था, आज वो अपनी छतों से देश को सौर ऊर्जा की नई राह दिखा रहा है। हर घर सौर ऊर्जा के साथ यूपी अब सचमुच आत्मनिर्भर के नए उजाले की ओर बढ़ चुका है। अभी आप सुन रहे थे आज सुबह में सौर ऊर्जा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा। अगले एपिसोड में इसी तरह महत्वपूर्ण चर्चाओं को लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रस्तुति रमनप्रीत सिंह की थी। वाकई श्रद्धा, और ये जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसके माध्यम से जो सोलर सिस्टम लग रहे हैं ये वाकई बहुत उपयोगी हैं। और अगर मौसम की बात करें, इस तरह के मौसम में ना, और कोई भी स्थिति हो, आपका बिजली का बिल शून्य हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, ये सब लाभ की ही बातें हैं। मौसम कैसा भी हो, आपके घर रोशन रहेंगे,
4: बिल्कुल,
3: है ना। तो ये लाभ की बातें हैं और
4: सभी लोग इसका लाभ उठाए, है ना।
3: जी बिल्कुल, इस तरह का लाभ उठाना ही चाहिए। और जब जानकारियों की बात चल रही है तो चलिए इतिहास के कुछ पन्ने भी पलट लिए जाएं।
4: जी हाँ, सन 1870 में ब्रिटिश रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी आज ही के दिन।
3: जी हाँ श्रोताओं, युद्ध के समय बीमार और घायल सैनिकों की सहायता के लिए जिनेवा कन्वेंशन के नियमों के तहत इसका गठन किया गया था।
4: और आज ही के दिन सन 1956 में एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ था।
3: जी हाँ श्रोताओं, और आपको बता दें इसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। आपको इसके साथ ही बता दें कि विश्व का सबसे लंबा नागार्जुन सागर बांध से पहली बार 4 अगस्त 1967 को ही पानी छोड़ा गया था, जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है।
4: बिल्कुल, और आज ही के दिन सन 2010 में पर्यावरण से जुड़े मामलों के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी।
3: वाह क्या बात है।
4: और पता है रिंकी, सन 1947 में जापान में आज ही के दिन सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी।
3: न्याय हमेशा बहुत जरूरी होता है। और आपको बता दें सन 2007 में नासा ने मंगल ग्रह की खोज के लिए फिनिक्स स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया था, वो भी 4 अगस्त 2007 का ही दिन था।
4: इतना रोचक है ना।
3: जी बिल्कुल, और इतिहास हमेशा रोचक होता है अगर आप उसे दिल से स्वीकार करें। आपको बहुत कुछ सीखने, समझने और जानने के लिए मिलता है, जिसे आप अपने अनुभवों का आधार बना सकते हैं।
4: बिल्कुल,
3: तो अब जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन की तरफ भी रुख कर लिया जाए। एक खूबसूरत सा नगमा इंतजार कर रहा है आपके रेडियो सेट पर आने के लिए।

0: जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने सुना अवतार फिल्म का एक गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। वही रिंकी, गीत तो एक से बढ़कर एक हैं, और क्यों ना आप अपने श्रोताओं को मौसम की जानकारी भी दे दी जाए।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मौसम की जानकारी आज बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि मौसम हर पल रुख बदल रहा है। तो हम अपने
0: ताकि
1: श्रोताओं
0: हमारे
1: को
0: श्रोता जान सके ना कि छतरी लेकर कब हमें निकलना है ना रिंकी।
1: बिल्कुल सही बात। और मौसम की जानकारी हमसे साझा करने के लिए फोन लाइन पे हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं IMD के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दारिश जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं मौसम का हाल।
2: दारिश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
3: जी नमस्ते।
2: सर, मौसम का हाल हमारे श्रोता जानने के लिए उत्सुक है, लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में कैसा रहने वाला है कुछ दिनों तक मौसम।
3: मौसम की बात करें तो जैसा कि मानसून साफ अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से आने वाले अगले 2 से 3 दिन तक मौसम काफी खुशनुमा रहेगा और बीच बीच में हल्के से मध्यम वर्षा जारी रहेगा। वहीं अगर हम तराई पर की बात करें तो वहां पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना आने वाले 3-4 दिनों के लिए।
2: जी सर, तो इधर वर्षा जो है वो होती रहेगी, बारिश लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों को तर करती रहेगी।
3: जी जी जी
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुबह सवेरे समय निकालते हैं आप, हर रोज हमारे श्रोताओं को जानकारी देते हैं मौसम संबंधी, आपका बहुत बहुत आभार।
3: ओके धन्यवाद,
2: नमस्कार सर।
0: भाई रिंकी, हमारे श्रोताओं को मौसम की जानकारी तो मिल गई है कि पानी बरस रहा है, छाता साथ रखिए और अपना ध्यान भी रखिए।
1: जी बिल्कुल। और चलिए अब अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज यानी 4 अगस्त का जो दिन है इसे हम किस किस रूप में मनाते हैं।
0: जी हाँ, आज कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं
1: जी,
0: तो आपको बता दें आज मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस। ये दिवस हर साल 4 अगस्त को मनाया जाता है। ये दुर्लभ और शर्मिली जंगली बिल्ली की प्रजाति के संरक्षण और उनकी घटती संख्या और उनके सामने मौजूद खतरों के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।
1: वाह क्या बात है। और अपने श्रोताओं को बता दें कि आज भारत में यानी 4 अगस्त को राष्ट्रीय अस्थि एवं जोड़ दिवस भी मनाया जाता है, जिसे इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था।
0: और आज ही के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय उल्लू जागरूकता दिवस। प्रकृति के रात के पहरेदार माने जाने वाले इन उल्लुओं के संरक्षण और उनके प्रति फैले अंधविश्वास को दूर करने के लिए दिन मनाया जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कहीं हम हास्यास्पद रूप में उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो प्रकृति के बहुत करीब होती है और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। जी

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी के साथ नमस्ते लखनऊ का सफर भी अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री

0: के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए, और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करते हैं।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है, ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय असैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा

0: कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत, बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेत

0: दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजरें अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है नमस्ते बरेली का, तो चलिए सुनते हैं नमस्ते बरेली। नमस्ते बरेली, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। अगर आप इस समय अपने घर में हैं, ड्राइव कर रहे हैं या फिर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या फिर अपने घर की बालकनी में चाय का आनंद ले रहे हैं, और इस सफर पर भी बहुत सारे लोग निकल रहे होंगे, तो अपना रेडियो 100.4 FM ही रहने दीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त नीतू और आधे घंटे तक आपके साथ रहूंगी, क्योंकि बरेली की जो खबरें हैं वो हम सबके लिए ज्यादा जरूरी हैं, और बारिश का जो मौसम है वो भी बन रहा है। बात करेंगे शहर की उपलब्धियों की, यहाँ के विकास की, और आज का मौसम क्या कह रहा है। तो चलिए चलते हैं इस खूबसूरत सफर पर आकाशवाणी बरेली के साथ।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना।

तो सावन की सुबह और आपके हाथों में उम्मीद है कि चाय का कप होगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नमस्ते बरेली में। और बात करते हैं अपने शहर बरेली के विकास की, तो बरेली विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े कई गांवों के अवार्ड घोषित किए हैं। इससे शहर के नियोजित विस्तार, नई सड़कें और आवासीय सुविधाओं का रास्ता साफ होगा। साथ ही बरेली विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत बाईपास से लगे नए टाउनशिप और स्काईवे अपार्टमेंट जैसी योजनाओं पर काम भी आगे बढ़ाया है और ऐसे में शहर के तेजी से बढ़ते शहरी विकास का ये जो संकेत है हम सभी के लिए है।

और इस समय आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी बरेली प्रोग्राम नमस्ते बरेली। हम सभी जानते हैं कि सावन का जो माह है वो चल रहा है और सोमवार को भी हमारी नाथ नगरी शिव भक्ति में साराबोर नजर आई। सुबह से ही बम बोले महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष गूंजते रहे मंदिरों में और कांवड़ियों ने भी कई जगहों से नाथ मंदिरों में विधि विधान के अनुसार भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया। वहीं कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए बरेली में भी सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई इंतजाम भी किए हैं ताकि सभी आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके और हम सबको इसमें अपनी भागीदारी भी करनी चाहिए।

और इस समय आप सुन रहे हैं नमस्ते बरेली 100.4 FM पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बारिश का जो मौसम है वो चल रहा है और बरसात इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन भी लाती है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं। खांसी, बुखार और जुकाम से सभी परेशान भी हैं। साथ ही डॉक्टर्स ने बच्चों को परामर्श भी दिया है और गंभीर रूप से बीमार 4 बच्चों को वार्ड में भर्ती किया गया है। वहीं जिला अस्पताल के ओपीडी में लगभग 3000 मरीज पहुंचे। साथ ही सीएमओ कार्यालय में हर हफ्ते की तरह प्रमाण पत्र बनवाने आए दिव्यांग परेशान हुए, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही सभी की समस्या हल हो जाएगी और खांसी और जुकाम जैसे जो मामले बढ़ रहे हैं उसके लिए खुद ही सतर्क हमें होना पड़ेगा। डायरिया के केस हालांकि कम हुए हैं, वहीं वायरल बुखार के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी को परामर्श देने के साथ जरूरी जांचें भी लगातार की जा रही हैं।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को हम मनाते हैं अपना देश का जो आजादी का जश्न, तो वहीं अब 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान 2026 जन भागीदारी के साथ चलाया जाएगा। और इस साल अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष के याद में समर्पित भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय ध्वज संहिता का पालन करने की भी अपील की गई है जिलाधिकारी ने। और साथ ही उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दौरान सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वजारोहण के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गान भी किया जाएगा। और अभियान के डिजिटल स्वरूप के तहत देश के नागरिक तिरंगे के साथ सेल्फी और वंदे मातरम के साथ ही वीडियो और फोटो भी अपलोड कर सकेंगे।

और आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय हड्डी एवं जोड़ दिवस। हम सभी की जिंदगी मोबाइल और लैपटॉप पर जुड़ चुकी है और ज्यादा लंबे समय तक हम इस पर काम करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ज्यादा लंबे समय तक झुककर काम करना और लोगों को जो हड्डियों और जोड़ों के लिए काफी गंभीर समस्या भी ये बनती जा रही है, क्योंकि गलत तरीके से बैठने, हमारा जो पोस्चर है वो खराब होने की वजह से कमर दर्द, गर्दन और कंधों में जकड़न, रीढ़ की का जो दर्द है उससे जुड़ी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सभी को फेस करनी पड़ रही है। स्पेशलिस्ट का मानना है कि अगर सही पोस्चर में मोबाइल और लैपटॉप चलाया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज की जाए और सुबह की धूप ली जाए तो हड्डियों और जोड़ जो हैं वो काफी मजबूत होंगे और कई बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हम जब भी लैपटॉप, मोबाइल या फिर अपने घर के कोई गैजेट्स चलाते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा पोस्चर यानी कि मुद्रा है, बैठने का तरीका है, वो बेटर हो। इससे हम कई बीमारियों से दूर हो सकते हैं। काफी छुटकारा मिलने की जो बात है वो भी सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि 4 अगस्त को राष्ट्रीय हड्डी एवं जोड़ दिवस मनाया जाता है। भारतीय ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की थी और इसका जो शुरुआती मकसद था वो ये था कि हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना था। तो चलिए, हम सभी उम्मीद करते हैं कि आपसे मोबाइल आपके अगर हाथ में है तो उसको सही तरीके से पकड़िए, अपने बैठने का जो तरीका है उसे भी बदलिए और अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए।

और अब बात करते हैं आज के मौसम की। तो मौसम विभाग की माने तो बरेली और आसपास के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना भी है। अधिकतम तापमान लगभग 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो इस वजह से आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ अम्ब्रेला और रेनकोट भी जरूर रखें, और जो जल भराव वाले इलाके हैं वहां पर भी आप सावधानी से चलें।

तो दोस्तों आज के नमस्ते बरेली में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और अगर आप अभी सफर में हैं तो सुरक्षित चलिए, मौसम का आनंद लीजिए और मुस्कुराते रहिए। आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने प्रोग्राम नमस्ते बरेली में। आपका दिन शुभ हो।

अभी आप सुन रहे थे नमस्ते बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है लोकगीत का। तो चलिए सुनते हैं लोकगीत रुचि गुप्ता की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आवाजें सोनू कक्कड़ और वंदना सक्सेना की थी, समीर अनजान के बोल थे। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था उसे हमने लिया था फिल्म किसी का भाई किसी की जान से, कमल खान और पलक मुछाल की आवाजों में। वो गीत आपने सुना था शब्बीर अहमद के बोल थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तो लिया जाए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपको सुनाएंगे गाने।

अरमान खान और साथियों की आवाजों में हक फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, जिसे गाया कौशल किशोर ने और विशाल मिश्रा का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मतिथि है। महान गायक, अभिनेता, संगीतकार, निर्माता, निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ साथ बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और कई भाषाओं में गीत गाए। अपनी अनूठी गायकी, चंचल अंदाज और बहुमुखी प्रतिभा से करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसे हुए हैं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक किशोर कुमार पर।

0: आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा रात 9:30 और सुबह 9:30।
1: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में गुलजार का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था डेढ़ इश्क किया और इस गीत को संगीत से संवारा था विशाल भारद्वाज ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।

विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में रेखा भारद्वाज और साथियों का गाया ये गीत अभी आपने सुना। गुलजार ने इस गीत को लिखा था, ओंकारा फिल्म का गीत आपने अभी सुना। और अब लीजिए सुनिए शशि डीजे खुशी की आवाज में लक्ष्मी फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं गगन आहूजा और संगीतकार हैं शशि डीजे खुशी।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। आपका हर दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ सकुशल और समृद्ध रहें। आगे दीजिए, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।
1: अरे हाय हाय हाय।

0: लाया हूँ।
1: सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: छोटा सा घर होगा बादलों की छाओ में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजा।
1: किशोरदा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं: मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: बात अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये गीत।

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम है, दूर गगन की छाव में, दूर का राही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी।

आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ संवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ संवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।
3: जिंदगी का सफर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: कोई लौटा दे।
1: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
2: आज के फनकार।

104 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली और अब समय है आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद।

और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम में। और चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आप सबके पसंदीदा गाने। ये है हमारे श्रोता जो की गाना सुनना चाहते हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चंपा, कपिल चंपा, ईशान, पूजा परिहार, कपिल और धर्मेंद्र चंपा भोपालगढ़ राजस्थान से, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एसके पप्पी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। साथ ही ये है हमारे श्रोता मणिनाथ बरेली सिटी से डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हैं। और ये हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। साथ ही इश्तियाक अहमद इदरीसी जो कि बहेड़ी से हैं, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, संतोष सार्थक नामदेव बघेरा दुर्ग से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं। और ये हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह और सिटी दीवाना भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमरदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, जगदीश धाकर, नाइमा, श्रीमती रंजुबाई धाकर, युवराज सिंह, शिवांगी हिंगड़ी, आलोर जिला रतलाम एमपी से हैं, उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशु, अर्णव, सत्यमानंद जो कि हैं पोखरा झारखंड से, बोहरा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं, मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जिला नादेड़ एताला महाराष्ट्र से हैं शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जसपुर उत्तराखंड से हैं, बहेड़ी से हैं अंजुम और साथ ही ये हैं चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जयकिशन, कुमारी साहू, इंद्राणी और माया साहू भी इसे सुनना चाहते हैं। गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से हैं, गांव फानासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार, बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबैनिशा, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी, जाहिद सैफी और आबाद।

ज्योतिनगर नुखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर कैलाश मिस्त्री गोवर्धन धरा फरसाराम सोलंकी श्यामलाल चौहान घनश्याम भागर बाबू गौरी और हसन सिक्का भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी बबीता सुभाष योगी डब्बू और बब्बू चंदौसी रोड चमनपुरा यूपी से मुकेश गौतम सुनील अमन बुधनगर खंडवा से नदीम बहजोई और राजू भी से सुनना चाहते हैं। ये हैं भेरूलाल वाकतड़िया भोला वाकतड़िया प्रवीण वाकतड़िया रियांश प्रतीक उन्हेल जिला उज्जैन एमपी से। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना फिल्म का नाम टशन उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्री
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अगर आप भी आपका पत्र मिला लकी थ्री और मनभावन में हमें कमेंट्स करना चाहते हैं तो आकाशवाणी बरेली के व्हाट्सएप नंबर पर हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। नंबर है 9457395859, यानी कि 9457395859। और इस नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप कमेंट्स हमें पहुंचा सकते हैं आपका पत्र मिला लकी थ्री और मनभावन के लिए। इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली से, प्रोग्राम का नाम है आपकी पसंद। और अब सुनेंगे फिल्म नदिया के पार से ये गाना। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हमारे श्रोता रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हैं। विनेश कुमार श्रीवास्तव, रागिनी मुस्कान, बैंक सेंटर चनेटी के पास बरेली कैंट से हैं। साथ ही आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मुरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष, नंदिनी और धमदा ग्राम सुकरी कला से अमित, शकुना ऋषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। नास रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, मजबी निसार अंसारी, नुसरत फातिमा, अब्रार अहमद अंसारी, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, वसीम टेलर और पप्पू भाई भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा और सार्थक।

मोहम्मद यासीन अंजवान, शाइमा नवाज, हसन बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, चाहत और साधिया जो कि हैं दादा बाबू रोड गिरीडा झारखंड से, गंज टुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन, शमसुल कमर राही भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टा जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव, दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहनी, डॉक्टर हाजी अफजल मलिक, संदीप रामगढ़ कैन झारखंड से निप्पी सानी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर यूपी से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाइयां, शेरकोट जिला बिजनौर से, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बनल।

कर वीणा और विविधा, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद आलिया और अयान, धन्यवाद देते हुए ये लिखा है। कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन मयंक ने इस गाने को सुनने के लिए। गांव बेरा जिला बतेरा, छत्तीसगढ़ से प्रहलाद सिंह, मालती वर्मा, सुरु नीहू, चकवती देशमुख और इनके परिवार के सभी सदस्य, गौरव सिंह, जानवी राजपूत, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना, बिट्टू कुमार और अहले खान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांव नौडेडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन मोहन, सुधीर, भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर, दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी। कस्बा उघैती बदायूं से हैं धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता, डीके हिटलर और इनके परिवार के सभी सदस्य, आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, उमेंद्र पुरी, कल्लू भाई, कस्बा मीरगंज बरेली से हैं और ये हैं राकेश अकेला जो भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा, टीकमगढ़ एमपी से राजेश कुमार अकेला, यशोदा, राजीव और संजीव, मुनीश यादव, अंशिका यादव, कुणाल यूनुस, राजवीर सिंह, बीजना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर यूपी से है, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, तन्वी, मानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल दिशानी और निमित आहूजा, नावा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजेश भारती रेडियो श्रोता संघ कुलीपाड़ा कटिहार से राजेश भारती, विभा रानी, आदित्य, प्रिया, प्रियंका, प्रेरणा, प्रगति और आशीष, ये है राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना, कल्पना, मुन्नी, चांदनी, नंदिनी मुजफ्फरपुर बिहार से और आप सभी की पसंद का ये गाना हेमलता जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम नदिया के पार।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर। और अब आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज में। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनका पूरा परिवार। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया भी इस गाने को सुनना चाहते हैं।

जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, राहुल और मुनीश गांव नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं, विराटनगर नेपाल से हैं अरुण चंद्र शर्मा, रेणुका और इनके बहुत सारे साथी, शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम अजीम अदीम, अब्दुल गनी अलमीर और जन्नत, ये है एयरपोर्ट रोड वंदना।

ये है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से नारायण भाऊ खरसे, ललिता आशा रानी, संजना परी, गणेश कार्तिक, देविका चौधरी, लड्डू चौधरी, स्वाति, प्रयागराज चौधरी और इनके परिवार के सदस्य, दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्र और नोखेलाल, नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुसाहिद पटेल और नदीम पटेल, तिलकनगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और रानीगंज बंगाल से आर के शुक्ला भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, रावर करनाल से विनोद लखन पाल, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं, श्रीरामपुर भोकार महाराष्ट्र से हैं, हरिभाव बिडवे, अनिकेत शुभांगी और अनीता बिडवे, गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद, पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं, बबलेश पवार, डैनी मनीष और इनके बहुत सारे सदस्य, दिनेश चौहान रामदेवरा से, बाबूराम जयपाल डांगरी से, खुदा बख्श खलीफों की बावड़ी से। कोल सिटी बरकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू नसनीम, निप्पी और मोहम्मद अफजल मलिक, गांव कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोडे, योगिता, प्रियाली, पार्थ और इनका हागोडे पूरा परिवार, अक्षय कॉलोनी गोंदू रोड धूलिया महाराष्ट्र से मनोहर मगर, यामिनी और उद्यन के अलावा अर्पिता बेस गाने को सुनना चाहते हैं, बड़ा बम चौक खंडवा एमपी से ममता मार्कंडे, संजय और किट्टू भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये है हमारे श्रोता गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, अवंतिका सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से हैं, साथ ही नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू, ज्योति, चरौदा बार, नवापारा अभ्यारण, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। लाल कुर्ती रुड़की कैन से राजेश वर्मा, मंजू, निशांत कौशिकी, दीपाली युमान और आर के राजा, गंज डंडवारा यूपी से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना, नवाजेज, दानिश और अमन आफरीदी, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता, किशोर रधान और तुलसी मस्कीन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, और ये हैं सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, हीरावाली गांव फाजिलका पंजाब से हैं, जिला खरगोन सनावद एमपी से मास्टर अशोक वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मुस्सा भाईजान, राजकुमार बुराना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप, गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और अवयाना कंचा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल, दिव्यांशी और विश्वकर्मा, ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं, ग्राम रसोडिया, नरसिंहगढ़, राजगढ़ एमपी से गोविंद, वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, सदवीर सिंह बिजरानिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या, जिला सिरसा हरियाणा, गांव खारिया ढाणी से हैं, और ये हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, बीपी गौतम, सरिता शेख, मोहम्मद कलीम, डीएच बच्चन, एटर रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, और अब आप सभी की पसंद का ये गाना लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम हाथी मेरे साथी, ये गाना आपने सुना। और गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश एटा रोड से बीपी गौतम, सरिता शेख, मोहम्मद कलीम, डीएच बच्चन भी इस गाने को सुनना चाहते थे। कस्बा उगैती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज बजाज, प्रिंस, प्रशांत और कार्तिक के अलावा निर्भय। और सनावत से शेख मुसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुडाना, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कार्टरोट लद्दावली से, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से प्रोग्राम आपकी पसंद। और अब आप सभी की पसंद का ये गाना आप सुनेंगे। फिल्म का नाम है बरेली की बर्फी, जिसमें आवाज है आरको की, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। सलार पहलगाम से कश्मीर से हैं, पर ज्यादा मिराजदीन इस गाने को सुनना चाहते हैं। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। साहू नगर यवतमाल से राहुल और सरला, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और प्रियांशी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। पंचकुला सेक्टर 9 से आशुतोष चुग, अश्विनी, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और भाविक राधे ढिंगरा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। गांव बांडी फाजल का पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और गरिमा। किशनगंज बिहार से हैं रविन्द्र मोहनदास और आशा देवी, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल, लगान पंड्रिया छत्तीसगढ़ से, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से, सिद्धार्थ गुरनाने, अर्चना, हीरामन, किशोर, हिम्मत राव, राजेंद्र गुप्ता और दीपक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मूडत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन और इनका पूरा परिवार। गांव टुरवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और इनके परिवार के सदस्य, संदीप मकर, ज्योति मन्नत मकर, भरत, कमल साहनी, पिंकावाला चौगराया, जालंधर से ही लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश और इनका पूरा परिवार। ग्राम धुर्राबादा भाट्टापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज। ग्राम एचोरा मंसूरी क्लब तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन, तालिब मोहम्मद, फैज मोहम्मद, अर्श तौफीक, मोहम्मद नवी, सुनील रस्तोगी, राहुल और इनके बहुत सारे दोस्त भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। अलकनाथ मंदिर के सामने से हैं बेचूलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत, ज्ञानेन्द्र, इला देवी, वर्फा देवी, सुनील, संजय अग्रवाल, अश्विनी, विनोद दीक्षित, महावीर कश्यप, राज, श्रीराम और इनका पूरा परिवार, रमेश चंद्र सैनी, गौतम राम। करेली बरेली से हैं हमारे ये श्रोता लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार हुसैन, अल्ताफ, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खुरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी। दुबिया निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल। नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री मेहते, अंजलि, बाला साहेब, राम निवास, धनंजय, पीबी कुलते, बीचवेर महाराष्ट्र से हैं। माल्यान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान और जीव्यम जैन। बाबू भाई भारती देवी, रमेश नाचानी, विनीत मिथिल तिलक उदयपुर राजस्थान से हैं। और ये हैं रितिका मिस्कीन, वाणी, आरव, विष्णु मिस्कीन परिवार, दयानंद कॉलेज, भवानीपीठ, सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा और प्रथम जनकपुरी नई दिल्ली से हैं। अनम मलिक, अमरीन भाई, मोहम्मद साजिद, अक्सरानी, ग्राम काशीपुर जिला रामपुर से हैं रुबीना मलिक। और साथ ही ये हैं नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, नत्थू चाचा मिस्त्री, हिब्जा, हिनाम, नन्हे, जाहिर अंसारी, शाकिर करगैना और इनके परिवार के सभी सदस्य। शाहजी नगर देगलूर जिला नादेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता। सतीश शाके फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से, राजनगर मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत और चुलबुल रानी। राम प्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा, अजय खेमकरण, लक्ष्मी देवी, छामनी, अशरफ खान, पानी की टंकी, होली चौक बरेली से है। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर, सुरेंद्र और

शमशेर के अलावा इनके परिवार के सदस्य जलेश्वर नायक, गौरव नायक खरसावां झारखंड से हैं, सुकरा नायक और मंजू नायक, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति आर्यन, कार्तिक राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, शिवमंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन कृष्णा और पीहू, साथ ही यह मोहम्मद फैज, मोहम्मद दर्श, मोहम्मद दर्शान, अलशिवा, शुएब और आमिर, ग्राम एचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम बरेली की बर्फी और जिसमें आवाज है आरको की।

और ये गाना आपने सुना अर्कू की आवाज में, फिल्म का नाम बरेली की बर्फी, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम आपकी पसंद। ग्राम पंचायत बाकरगंज फरीदपुर से हैं सुनील, शिवम, अभिमीत, भगवान देव, स्वाति, तान्या और इनके बहुत सारे दोस्त। उदयपुर से नजीम खान, साहिबा, जबार, मोहम्मद, अशरफ खान, फरीदा, रईस, मंजू, निम्मी, साथी ये हैं हमारे श्रोता जो कि चुट्टा मंदिर रोड यमुनानगर से मधुबाला प्रजापति, शिवी, शमा, अनुराधा, तेजपाल सिंह प्रजापति, और जबलपुर एमपी से अशोक सिंह, सुनीता, अंकिता, ऋतु, संकल्प, गुड़िया और वेदा सिंह। ये हैं रेणुका श्रीपुर जैन से हैं, और गिरीश देशमुख, सोनाली ये हैं हमारे श्रोता राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से, नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति आकांक्षा और आकाश, ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुगू और भाविक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार उत्तराखंड से, ऊंचे गांव नादेड़ और देवानंद शिंदे पाटिल भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया जावेद अंसारी, सूरज अख्तर, जैस्मीन, शकीला, सना, शमा, हिना, राजिया सुल्ताना अंसारी और इनका पूरा परिवार। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद कुमार गौरा मंदुरकर।

चेक 14 पीएसपी जिला श्रीगंगानगर से हैं कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप, जसकरण, हरदीप, मनराज विरक और इनका पूरा परिवार। आकूर जिला अकोला महाराष्ट्र से रामराव नितोने, शारदा नितोने, शमसुल कमर राही, शहीन फातिमा, अनु खान, अदनान, फैजान गंज डुंडवारा से, संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी, बुलंदशहर से उमेश कुमार और रानी गौड़, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलेजा नायाब और पीपर रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश, गौतम ऋषि मौर्य, मोहनलाल मिही, प्रीति, रीना, सुनीता, ये हैं बरेली से कर्मचारी नगर रोड से हैं। और साथ ही आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निमान, सौरभ, सैंडी और शायना शर्मा भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणदीप गुप्ता, बबीता सत्यम सुंदरम, राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम और शिवम, श्रीराम गोंदली, उषा, भावी निमा, निमगांव शिव गांव से हैं, कोपर गांव से है सुरेश मालोद और वर्षा, टाउन मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, साक्षी बाला, मीनाक्षी तिवारी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। और ये हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगा, मायशा खान, हदिया खान सरोज चौक से, पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद, सुफियान और अनस भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये हैं झारखंड से एसएम नावेद, नजमुल होदा और इनके बहुत सारे दोस्त, खुर्जा उत्तर प्रदेश तिलक से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन अंकुश और इनका पूरा परिवार, वीरम गाम गुजरात से अजीत भवसार और प्रमिला भवसार भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश कुमार, मोहिनी, कल्पित, गर्वी और हिमांश। सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गाना जो कि है सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया।

आपकी पसंद ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से, और बारी अगले गाने की जो कि फिल्म कुर्बान से सोनू निगम, सलीम मर्चेंट, श्रेया घोषाल की आवाज, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम गुलबालोद आलोड जिला रतलाम एमपी से कृपाल सिंह, विक्रम, नरेंद्र, विशाल और इनका पूरा परिवार, और ये है नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन, नाजमा, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, हाशमी, कलीम भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन, आफिया, रामपुर अनई जिला बनारस से, मदरसा गेट भावपुर मुड़ियाऊ जौनपुर से इरशाद अहमद, कामरान अरमान, नवेद अजरा, और वर्ली मुंबई से हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, चौकड़ा धाम कॉलोनी सनावर जिला खरगोन एमपी से हैं कृष्णपाल सिंह चौहान, तारा देवी, नवोदित, वैभव, ध्रुवी, प्रद्युम्न सिंह चौहान भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री वैष्णो कॉलोनी सनावत से। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाना हसन, अक्सा, अदीप, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी। मानसी गौरव, अनिल अरोड़ा, मिनिस्ट्री रोड मूर्ति नगर नई दिल्ली से हैं, और ये हैं विनय, मोहन खार, मीनाक्षी प्लोमा, डॉक्टर ईशानी सेक्टर 18 जगाधरी यमुनानगर हरियाणा से, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनवास नवीद हसन, सुहेल हसन, अनम किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबेर अली खान, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवारकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सुपान आशीष और इनका पूरा परिवार, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से है फैजल इबाब, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल, सचिन खुरवाल, अमन, दीपांशु और इनका पूरा परिवार, ब्रजेंद्र कुमार, जयजान, कांता रानी, गुंजन साहेब।

निलवाणी भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से, सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार, सावित्री मोहित, देविका गजेंद्र कुमार चंदन और हेयांश कुमार मोहाली पंजाब से हैं, गांव तंगोरी से हैं गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत और सहजप्रीत भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये हैं किशोर कुमार सांवले, रेखा, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना, चारवी, प्रणय, दरबार कॉलोनी सनावत से, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक, कस्बा अग्रवाल, मंडी, बागपत, यूपी से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक अली खान और सादिक भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी, एकता कॉलोनी रोहतक से, सलीम मर्चेंट, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम है कुर्बान।

और इस गाने को आप सभी भी सुनना चाहते हैं। ग्राम गोपी खीरिया तहसील भांडे जिला दतिया एमपी से राहुल पाल हरिमोहन अंजना ज्योति और लक्ष्य रेणु देवी राहुल वंदना प्रियंका और उनके बहुत सारे दोस्त अरुण कुमार शर्मा सरलाही सोपनाहा नेपाल से हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। फूलेनगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद कारवां गीतांजलि आकाश और आकांक्षा फाजिलका पंजाब खेड़ा से है भूषण खेड़ा विशु विशाल लाडी खेड़ा शालिनी तिवानशी बी खेड़ा वाणी जीवन और इनका पूरा परिवार। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह ज्योति रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। राजकोट से जैमिन जैन हेतल कृष्णा राकेश कटरा चांद खां मौर्य मंदिर बरेली से हैं रतन माला मौर्य मुकेश प्रिंस प्रियांशी पुष्पा गौरव चंद्र प्रकाश और मन्नू भाई भी इससे सुनना चाहते हैं। रेलवे रोड गंज डंडवार से मोहम्मद कलीम भुवन प्रकाश डॉक्टर दबीरुल बेगम शबनम नाजमा बेगम और सरिता गौतम पश्चिमपुरी दिल्ली से उत्तम सिंह जुनेजा भूपेंद्र सीमा अनमोल और साहिबा कंवर कॉलोनी बड़वा खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा बलवंत कुमार वर्मा राजू भाई वर्मा माया शोभा राहुल ज्योति अतुल प्रायल प्रियांश ऋषि वर्मा ये हैं पामिलागंज अलोट डिस्ट्रिक्ट रतलाम एमपी से राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार और इनका पूरा परिवार रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। ये हैं गजानन नादरे माटुराव पंचाल ये फ्रॉम महाराष्ट्र से हैं ये गिरगांव से और ये हैं मौलागढ़ नई बस्ती बरेली से तरुण अंसारी तनाना अजरुद्दीन हसन और इनका पूरा परिवार।

और अब ये प्रोग्राम आपकी पसंद यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी ने अपने पसंद के गानों के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट भेजी और उम्मीद है कि आपने अपने पसंदीदा गानों को सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना, हम उनकी पूरी कोशिश करेंगे उनके गानों को सुनाने की। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही।

अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है सब रंग का। सबसे पहले सुनते हैं ये भजन सोनू निगम की आवाज में।

और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है वायरल फीवर शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार यानी कि आज 4 अगस्त को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251720 पर फोन कीजिए। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक मौजूद रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लीजिए, जो विषय है वो है वायरल फीवर शंकाएं और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार 4 अगस्त यानी कि आज शाम 4 बजे से। और टेलीफोन नंबर है 0581251720 यानी कि 0581251720। सूचना समाप्त हुई और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली से सबरंग, और आप सुनते हैं मीका सिंह की आवाज में ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे सबरंग, आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर, और अब समय है झुमका गिरा रे का। तो चलिए सुनते हैं झुमका गिरा रे।

नमस्कार, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। प्रोग्राम का नाम झुमका गिरारे। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी दोस्त नीतू। सावन का पावन महीना चल रहा है, ये तो हम सभी जानते हैं, यानी कि शिव भक्ति का उत्सव, शिव जाप करने का पवित्र मास।

सावन के सोमवार के साथ ही मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत बड़े ही उल्लास और पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। तो चलिए चलें शिवालय, जहां आस्था और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है।

सावन के सोमवार के साथ ही मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत बड़े ही उल्लास और पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। तो चलिए चलें शिवालय, जहां आस्था और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिल रहा है। सावन के पावन माह में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, तो वही मंगलवार मंगला गौरी व्रत के रूप में मनाया जाता है। ये व्रत माँ पार्वती की आराधना का पर्व है। माना जाता है कि माता गौरी की पूजा से अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन महिलाएं माँ गौरी की पूजा करती हैं और कथा भी सुनती हैं, साथ ही अपने परिवार की मंगल कामना भी करती हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, पूजा अर्चना का विशेष आयोजन होता है और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आइए इस पावन अवसर पर हम भी भगवान शिव और माँ मंगला गौरी से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। हर हर महादेव। जय मां मंगला गौरी।

पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे हैं। श्रद्धालु भी जलाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वहीं मंगला गौरी व्रत की अगर हम बात करें तो कई महिलाएं यहां पर सुख समृद्धि और मंगल कामना के लिए श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना में तल्लीन है। सावन में इस बार काफी रौनक देखने को मिल रही है, तो चलिए खुद भक्तों की जुबानी जानते हैं। सावन मास में वैसे तो हर दिन शिव भक्ति में डूबने का दिन होता है, यानी कि शिव का भक्ति भाव हम सभी के लिए कण कण में हमारे मन में रच बस जाता है और पूजा सामग्री की दुकानों पर रौनक देखने को मिलती है। बेलपत्र, फूल, प्रसाद,

0: की दुकानों पर रौनक देखने को मिलती है। बेलपत्र, फूल, प्रसाद और पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए श्रद्धालु मंदिर की ओर जाते हैं।
1: सभी जानते हैं कि मंगला गौरी का पर्व को लेकर भी काफी उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है। चलिए उनसे जानते हैं। जी, आपका नाम?
2: कविता।
1: कविता, आप यहाँ हर रोज आती है?
2: नहीं, सावन में आती है। सावन
1: जी, तो मंगला गौरी पर्व को लेकर भी काफी उत्साह है, आपको भी अच्छा लगता है?
2: हाँ, बहुत अच्छा लगता है। गौरी माँ के अच्छा लगता है, शिव जी के साथ सभी लोगों के साथ अच्छा।
1: तो घर पर करेंगे इस बार पूजा?
2: करेंगे।
1: देख, शुक्रिया। चल रहा है और भक्त लगातार शिवालयों की ओर रुक कर रहे हैं। तो चलिए भक्तों से जानते हैं कि वो कब से यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, क्योंकि सावन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का भी प्रतीक है। जी, आपका नाम?
3: मेरा नाम राधा कश्यप है।
1: जी, कब से आ रही हैं आप?
3: मुझे लगभग हो गया 8-10 साल हो गई।
1: जी, इतना लंबा अरसा।
3: हाँ जी।
1: मतलब ईश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ता
3: काफी है।
1: काफी है।
3: हाँ।
1: और सावन माह में तो और भी आपका आना?
3: हाँ, आना रोज, हर सोमवार को आते हैं हम।
1: जी।
3: हाँ।
1: अपने पूरे परिवार के साथ?
3: हाँ, परिवार, मेरे फैमिली में मेरे दो बेटी हैं, एक बेटा है, मेरे हस्बैंड है।
1: जी।
3: हाँ, 5-6 लोग हम लोग आते हैं।
1: तो शिव जी की आराधना करती है?
3: हाँ जी।
1: किस तरीके से, क्या क्या अर्पित करती है?
3: फूल हो गई, बेलपत्री हो गई, गंगा जल हो गया, और
1: बतूरा
3: आ गया होगा, और ये भांग हो गई।
1: कराती हैं
3: पहले? हाँ, स्नान है और पढ़ा चढ़ाना है।
1: जी।
3: हाँ, ये सब चीज अर्पित करते हैं भगवान जी।
1: बिल्कुल, शुक्रिया।
0: सावन का पवित्र मास चल रहा है और धरती पर नन्ही नन्ही सावन की जब बूंदें गिरती हैं तो धरती भी अपने आप को धन्य मानती है और कांवड़िए भी इंतज़ार करने लगते हैं कि कब सावन आए और वे शिव के द्वार पर कांवड़िए लेकर जाएं।

अभी आप सुन रहे थे झुमका गिरारे, ये आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ से FM रेनबो।

सावन केवल एक पवित्र माह ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामुदायिक आस्था का भी प्रतीक है। यही श्रद्धा हर वर्ष लोगों को मंदिरों तक खींच लाती है और सभी शिवालय पहुंचते हैं। इसी भक्तिमय वातावरण के साथ झुमका गिरारे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर।

0: ना आप हैं तो हम हैं, क्योंकि आप से ही हमारी ये जो म्यूजिकल जर्नी है वो लगातार नॉन स्टॉप चलती है। और एक और बड़ी प्यारी सी आवाज के साथ एक लिसनर हैं जो हमसे अपने मैसेज के साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, अस्सलाम
0: जी।
1: वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। फातिमा जी ने हमें कॉल किया है। फातिमा जी एक स्टूडेंट हैं और 11th में पढ़ती हैं, राइट
1: जी
0: जी। फातिमा जी, तो फिर क्या आप है कहना चाहेंगी आज?
1: हम ये कहना चाहते हैं कि
0: हाँ
1: जैसे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, कुछ
0: हाँ
1: लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया है, कुछ लोगों का बोर्ड एग्जाम है, तो
0: हाँ हाँ
1: मन लगाकर पढ़ाई करें।
0: ओके। फातिमा
1: जी
0: जी, आज आप स्कूल नहीं गई?
1: नहीं, वो मतलब तबीयत खराब थी और छुट्टी हुई
0: आहा,
1: इसीलिए नहीं गए।
0: अच्छा फातिमा जी, तो आपका भी बस अगले साल बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो कैसे तैयारी कर रही हैं आप?
1: जी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और छोटे बच्चों से काम ना करवाएं।
0: छोटे बच्चों से काम ना कराए, ये लग रहा है फातिमा जी आपसे घर पे काम कराते हैं। हाँ ये मम्मी
1: नहीं,
0: से शिकायत
1: स्कूल में
0: लग, ये
1: काम ना
0: मम्मी की शिकायत
1: करवाएं।
0: लगा रही हैं।
1: नहीं, हम स्कूल में बच्चों से काम करवाते हैं, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, वो ना करवाएं, वही बात
0: अच्छा
1: है।
0: ओके, थैंक यू सो
1: जी
0: मच फातिमा हमें कॉल करने के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। हालांकि अभी टाइम है, लेकिन फिर भी अगर आप तैयारी अभी से करेंगी तो ये जो एग्जाम का प्रेशर है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा आपके ऊपर। थैंक यू हमें फोन करने के लिए। तो ये थी फातिमा जिन्होंने हमें कॉल किया और शेयर किया कि भाई एग्जाम्स के लिए अगर आप पहले से तैयारी करते हैं तो उसका प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। बिल्कुल सही बात है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई करेंगे उसके बाद आपको बहुत सारे मौके आएंगे फैशन करने के लिए भी, बाकी सारी जो आपकी हॉबीज है उन्हें पूरा करने के लिए।

0: वक्त हो गया है 11:37 और एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं जो एक इम्पोर्टेंट मिसेस के साथ थे। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका नाम?
1: वीरपाल है, कौन सी?
0: वीरपाल जी।
1: करौली। हाँ,
0: ओके
1: हरदोई।
0: जी, वीरपाल जी, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना
1: मैं
0: चाहेंगे?
1: लोगों को संदेश देना चाहूंगा कि
0: हाँ।
1: जो लोग कहते हैं तो बारिश हो रही है, तो
0: वीरपाल जी, वीरपाल जी, शायद सिग्नल इशू हो रहा है बारिश की वजह से, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं,
1: हेलो।
0: हाँ जी, हाँ जी, या तो आप
1: हेलो,
0: रेडियो के बहुत करीब पहुंच गए।
1: नहीं, रेडियो तो बंद है।
0: अच्छा, अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि इससे पहले सिग्नल खराब हो जाए फिर।
1: मैं
0: जी
1: कहूंगा लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं,
0: जी
1: और जो बारिश का मौसम बिगड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही जहां तहां, तो
0: हाँ हाँ
1: जो
0: हाँ
1: पेड़ ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे ना, तो बारिश होगी।
0: जी, ये जो शिकायत है कि हमारे यहाँ तो बारिश हो नहीं रही और हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश हो रही है, ये
1: हमारे वहां
0: शिकायत,
1: शाम से हो रही है बारिश।
0: जी, हमारे यहाँ भी बहुत सारी बारिश हो रही है, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट में अनबैलेंस हो गया ना, इम्बैलेंस हो गया है, वो करेक्ट हो सकता है। ये जो असंतुलन लगातार आ रहा है वो सही किया जा सकता है अगर आप पेड़ लगाते हैं। थैंक यू सो मच वीरपाल जी हमें कॉल करने के लिए। हमारे पास अगला जो मैसेज है, मेल है, वो है तमन्ना आरजू जी का, और इन्होंने मलिहाबाद लखनऊ से हमें मेल किया है। मुझे यही कहना है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वही तो हमने कुछ देर पहले कहा था, और हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो ही हमारे आसपास के लोग खुश हो जाएंगे। गुड लक, थैंक यू सो मच। और आपने गुलफ्जा सिद्दीकी, शाजिया अंसारी, रोशनी रावत जी का नाम मेंशन किया था, हमने भी मेंशन कर दिया। अजय सिंह जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू, हम एकदम बढ़िया हैं, शुक्रिया आपने इतनी तारीफ।

संदेश ये है कि लोग बाइक और कार चलाते हैं तो कृपया हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। बरसात का मौसम चल रहा है। अब अनवारुल जी तो अपने छाते समेट के चले गए हैं, अब आपको उनके अगली बार आने का वेट करना पड़ेगा ताकि वो आए और फिर आप उनसे छाते की बात कर सकें। शो आपको अच्छा लगा? बहुत शुक्रिया। सुपरहिट सॉन्ग आपको अच्छा लगे ये कहा है वारिस जी ने, और फिर हमें खटाक से भेजा है मैसेज। जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं वो अक्सर दूसरों की गुलामी करते नजर आते हैं। ऐशबाग लखनऊ से आपने हमें मेल किया है वारिस जी ने। अगला ट्रैक ने अपना स्टेशन भी छोड़ दिया है, तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कुछ और कॉलर से बात कर सके, उन्हें और ऑन एयर ले सकें।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: अगर आपको है FM से बेपनाह मोहब्बत,
6: तो लिख भेजिए हमें 26 बरस के FM के लिए 26 शब्दों की मोहब्बत भरी कविता या कहानी।
5: मोहब्बत का नियम निभाएंगे,
7: एक लिसनर से केवल एक ही एंट्री मंगाएंगे।
5: और हाँ, आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2026। 3 टॉप विनर्स बनेंगे हमारे सबसे खास मेहमान 20 अगस्त की शाम।
6: पता है ना, fmsesh26@gmail.com।
5: और सुनते तो रहेंगे आप हमें 100.7 FM रेनबो पर।
8: फॉर मोर डिटेल्स फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशु

0: दूसराना मैंने जाना फिर ये माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
1: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: 11:44 हो चुके हैं और ये जो धारपड़ करके अंदर आई हैं वो हैं जरीना जी, जो आपको 12 बजे से मिलेंगे और पूरे के पूरे शोर के साथ आई हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अभी बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे कि आपने ज्वाली जी को फिर से जोड़ा। ज्वाली जी बिल्कुल जल्दी से अपनी बात कम्प्लीट कर दीजिए।
4: बारिश का मौसम है।
3: हाँ हाँ,
4: तो मेरा संदेश कुछ शायराना अंदाज में है
3: जी।
4: थोड़ी वफा कीजिए, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए।
3: हाँ।
4: जो नहीं मिलता उसे दफा कीजिए। हाँ। हर कोई नहीं होता आपके काबिल।
3: हाँ।
4: अकेले बैठकर रेनबो का मजा बारिश में चाय और पकौड़ी के साथ लीजिए।
3: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अकेले खुद की कंपनी एंजॉय करना भी एक कला होती है और ये कला जिसने सीख ली वो जिंदगी की हर कला में पारंगत हो सकता है ना।
4: रेडियो के FM रेडियो के साथ में
3: जी, FM रेडियो के साथ में। थैंक यू सो मच ज्वाली जी हमें कॉल करने के लिए।
4: ओके,
3: तो ये बहुत अच्छी बात है। अपनी कंपनी खुद एंजॉय करना सच में एक डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन जिस दिन आपने ये डिफिकल्ट टास्क कर लिया पूरा, उस दिन आप लाइफ पर विक्ट्री पा सकते हैं। खुद की कंपनी एंजॉय करना, हैप्पीली एंजॉय करना बड़ा टास्क है। निधि जी आपको एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार अरुण कुमार कुशवाहा, शुक्रिया तारीफ के लिए। बरसात में बहुत सारी खाली चीजें इधर उधर पड़ी रहती हैं जिनमें पानी भर जाता है, जिसमें डेंगू जैसे खतरनाक मच्छर पैदा होते हैं। इसका ध्यान जरूर रखें अरुण जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, अरुण कुमार जी का मेल हमने पढ़ दिया है। अगला ट्रैक, आज मैंने ऐसे ऐसे गाने लगाए हैं जो शायद आपने भी बहुत टाइम बाद सुने होंगे। हमने भी वो गाने बहुत टाइम बाद सुने थे, इसलिए हमने सोचा था आज हम लेके आएंगे और हम लेके भी आए। हम जो सोचते हैं वो कर देते हैं।
5: मिला हूं तुझसे,
3: आप भी जो सोचिए वो कर जरूर दीजिए, बशर्ते वो सही सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पड़ोस वाले से जाके आज लड़के आना है ये सोचा और जाके उसके घर में दंगा कराए, ऐसा नहीं करना है।

0: हो जाए।
1: कैसी बातें करते हैं, हंसते हंसते कर जाए रस्ते, ये तो हम सब लोग कहते हैं। और ये कह रहे हैं हंस मत पगली, ऐसा तो हो ही नहीं चाहिए। आपको जब भी मौका मिले हंसते रहिए भाई। संदेश बहुत सारे जो सीरियस वाले आ रहे थे, तो हमने सोचा एक लाइट नोट पे गाना लगाया जाए और साथ ही साथ आपको हंसाया भी जाए, और ये भी कहा जाए कि आप हंसते हुए एकदम क्यूटी पाए लगते हैं।

0: हम एकदम इनोसेंट से शक्ल बना नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो इनोसेंट हैं, हम अपनी तारीफ खुद कर लेते हैं। निधि मैम जी, तेज बहादुर यादव जी का हमारे पास मेल है, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपको लगा जीएमएल का अनवारुल जी के साथ, बहुत शुक्रिया, सुंदर सुंदर गीत बजाए। और संदेश यह है कि जब ये नियम बनाया गया तो है, तो आप लोग कृपया इस नियम का पालन करें। सभी श्रोतागण बहुत शुक्रिया कि आप कई बार फोन लगा रहे हैं, हफ्ते में कई कई बार फोन लगा रहे हैं ऐसे में, और नाम बदल बदल कर अगर फोन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो जेन्युइन लिसनर्स हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। वेरी ट्रू तेज बहादुर जी, और शुक्रिया आपने हमारी इस बात को समझा। मेरा संदेश ये है कि हम सबको बारिश में संभल कर चलना चाहिए, ये कहना है गुलाबसा सिद्दीकी जी का। थैंक यू सो मच उन सभी का जिन्होंने आज हमें कॉल किया, और थैंक यू सो मच उन सभी का भी जिन्होंने हमें मेल किया। हाँ, मैं थोड़ी देर और रुक जाती अगर जरीना जी अंदर ना आती धड़धड़ाते हुए, बिल्कुल जैसे कि आपने आवाज सुनी थी शोर मचाते हुए ये अंदर आई। और ये भीगी भागी तो नहीं है क्यों?
1: हाँ, भीगी भागी नहीं है क्योंकि मौसम थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है, मतलब बूंदाबांदी जो है वो हाँ। इस एरिया में मतलब आसपास हमारे काफी कम हो चुकी है।
0: ओके, तो देखिए हम वक्त वक्त पे आपको मौसम की अपडेट भी देते रहते हैं। तो जैसा जरीना जी ने कहा है कि बाहर मौसम थोड़ा खुलने लगा है, तो उम्मीद हाँ। करते हैं खुल के धूप आ जाएगी।
1: लेकिन लेकिन निधि, ये वैसा नहीं खुल रहा, लुका छुपी टाइप्स है, तो मतलब ऐसा आप कुछ मत कह दीजिए, क्योंकि लोग अभी पता चले आसपास से गुजरे या लखनऊ में रह गए, अरे ये तो फिर से बारिश हो रही है, ऐसा क्यों बोला गया?
0: ये सरप्राइज बारिश कह के आ जाती है, तो हम सरप्राइज कह के नहीं जा रहे, हम बिल्कुल आपको बता के जा रहे हैं कि अब अगले कुछ घंटे जरीना आपके साथ रहेंगी, निधि आपसे कहने वाली है फाइनल टाटा बाय बाय आज के शो से, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेता बैठक में शामिल रहे। गठबंधन की एकता पारदर्शिता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को पारंपरिक रूप से ये बैठकें आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी। तृणमूल के अलग हुए गुट नव गठित नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद भी गठबंधन की बैठक में भाग ले रहे हैं। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉ अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा संचालित डॉ अंबेडकर मेडिकल एंड स्कीम के तहत पात्र मरीजों को इलाज के लिए 1.5 लाख से 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन एससी एसटी परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख से कम है। योजना के तहत हृदय, किडनी, कैंसर, ब्रेन, अंग प्रत्यारोपण सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पीलीभीत जिले में गन्ना विकास विभाग द्वारा गन्ने की उन्नत खेती करके अधिक उपज वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम भार्गव ने बताया कि समिति स्तर पर पौधा व पेटी में अधिक उपज लेने वाले, जैविक खेती व नवाचार करके अधिक गन्ने का उत्पादन लेने वाले किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय घोषित करके सम्मानित किया जाएगा। अमरोहा में खाद्य सुरक्षा एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई में एक्सपायरी खाद्य पदार्थों के अवैध भंडारण, बिना खाद लाइसेंस कारोबार और मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए खाद्य पदार्थों के कुल 15 मामलों में एडीएम न्यायालय ने 13,40,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। सहायक खाद्य आयुक्त विनय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए 30 क्विंटल खाद्य पदार्थ मामले में न्यायालय ने 8 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है। मिल्क क्रीम में अधुमानक पाए जाने वाले आपूर्तिकर्ता पर 2 लाख रूपये समेत 15 मामलों में 13,40,000 रूपये का जुर्माना लगाया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा। जानो फिर मानो।
4: अगर आपको है FM से बेपनाह मोहब्बत,
5: तो लिख भेजिए हमें 26 बरस के FM के लिए 26 शब्दों की मोहब्बत भरी कविता या कहानी।
4: मोहब्बत का नियम निभाएंगे,
6: एक लिसनर से केवल एक ही एंट्री मंगाएंगे।
4: और हाँ, आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2026। 3 टॉप विनर्स बनेंगे हमारे सबसे खास मेहमान 20 अगस्त की शाम।
5: पता है ना, fmsesh26@gmail.com।
4: और सुनते तो रहेंगे आप हमें 100.7 FM रेनबो पर।

0: For more details, follow us on social media.
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

यस बिल्कुल यही छमछम वाला माहौल हो रखा है हमारे आसपास और लगभग हर जगह, और इसी के साथ स्वागत कर देती हूँ आप सभी का 100.7 एफएम रेनबो पर। भाई 12:08 का वक्त हो चला है और लगातार हो रही बारिश के खुशनुमा एकदम मौसम में आप बारिश की आई होप हर बूंद का मजा ले रहे होंगे, है ना। मिट्टी की सोंधी सोंधी सी खुशबू, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास और बहुत सारी यादें लेकर आता है इस तरह का मौसम, है ना। तो चलिए बस आप भी जो आप तक गाने पहुंचने वाले हैं, जो हमारी बातें होने वाली हैं, उसमें खो जाइएगा अगले एक घंटे, क्योंकि प्रोग्राम शत्रुपा में कुछ ऐसी हम बात करने वाले हैं जो आपसे जुड़ी है। वैसे आज तो है ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं फैशन या स्टाइलिंग, तो बस ऐसा ही कुछ फैशन और स्टाइलिंग भरी बातें हैं जो आपसे तो जुड़ी हुई है लेकिन वो सिर्फ दिखने और दिखावे से कहीं ऊपर होंगी। तो जुड़े रहिए मेरे साथ यानी आपकी दोस्त जरीना के साथ अगले एक घंटे प्रोग्राम शत्रुपा में, और इसी के साथ अगला ये जो ट्रैक है वो भेजती हूँ आपके रेडियो सेट पर। एंड यस, हम सभी को अपना जलवा जो है वो हमेशा दिखाते रहना चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, टोलकर ही नहीं किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: करियर पर है ध्यान,
4: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
3: पॉजिटिव है फैशन,
4: क्रिएटिव है पैशन,
3: टेक्नोलॉजी में रुचि,
4: बने पर्सनालिटी ऊंची,
3: फॉलो करें ट्रेंड्स,
4: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
3: ओनली ऑन YouthWave।
4: यूथ की बात यूथ के साथ,
3: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
0: धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, 12:17 का वक्त हो चला है और प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जहाँ आज हम बात करते हैं यानी ट्यूसडे को बात होती है फैशन या स्टाइलिंग की। वैसे अगर फैशन की बात हो तो एक चीज सबसे पहले जहन में हम सभी की आ जाती है, वो होते हैं हमारे कपड़े, जूते, नए ट्रेंड्स और डिफरेंट डिफरेंट अटायर, ये सारी चीजें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज की दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे जरूरी फैशन क्या है? जी हाँ भाई, फैशन ये सब नहीं है जो हम दिख रहे होते, बल्कि फैशन है सिर्फ स्टाइलिश कपड़े नहीं, बल्कि स्टाइलिश जिंदगी भी। यस, लाइफस्टाइल का अभी ना नया ट्रेंड शुरू हो चुका है जिसे हम सभी को ऑप्ट करने की जरूरत है, हम सभी को अपनाने की जरूरत है, वो है स्टाइलिश जिंदगी। और भाई ये कैसे होगा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम सभी को अपने ज़िंदगी में इंक्लूड करना पड़ता है। तो आज हम आपसे ऐसी ही कुछ बातें करने वाले हैं जिनको इंक्लूड करने से, हमारी ज़िंदगी में अपनाने से, हम सभी की जिस ज़िंदगी है ना वो भी स्टाइलिश हो जाती है। भाई जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है कि आज का जो नया फैशन है वो ये है कि खुद के लिए समय निकालना। हाँ भाई, आज के फैशन में सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने या ट्रेंड अपनाने का नाम नहीं रह गया है, या सिर्फ उतना ही नहीं होता, बल्कि स्टाइल तो तब दिखता है जब इंसान अपनी मानसिक और भावनात्मक जो हेल्थ है उसका भी ख्याल रखे। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जो मी टाइम होता है ना, मतलब खुद के लिए टाइम होता है, वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट लाइफस्टाइल ट्रेंड जो है वो बन चुका है। तो बस इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बहुत ज्यादा टीम झाम करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। पूरे 24 घंटे आपके पास होते हैं, 1000 काम उस बीच आप करते हैं, दौड़ते भागते, ऑफिस का काम, घर का काम, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें। इस बीच एक जो छोटा सा काम करना होता है वो ये है कि 24 घंटे में 20 से 30 मिनट या अगर मिल जाए आपको तो एक घंटा बस अपने लिए निकालिए और उसमें वो काम करिए जो आपको करना पसंद है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। महिलाएं सुन रही हैं तो वो अपने आप को सजा सकती हैं, संवार सकती हैं, अपने लिए शॉपिंग कर सकती है, या आपको लगता है, बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है आपको पेंटिंग का शौक है वो करिए, कुछ बढ़िया बनाने का शौक है वो कर लीजिए, या आपको लगता है गार्डनिंग का शौक है तो पेड़ों के साथ थोड़ा वक्त बिता लीजिए। तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो आपकी खुद के लिए होती है और ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा बूस्ट करती हैं। तो बस स्टाइलिश बनिए लेकिन अपने

साथ, मतलब खुद को आगे लेते हुए, खुद को साथ चलते हुए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हुए। तो चलिए भाई, बातें अभी हम बहुत सारी करेंगे आपसे कि हम अपनी लाइफस्टाइल को, खुद को कैसे अच्छा कर सकते हैं, और ये जो फैशन का और स्टाइलिंग का बड़ा सा पार्ट होता है ना, वो हमारी जिंदगी यानी हमारे खुद से, हमारी जो आत्मा है उससे कैसे जुड़ा हुआ है। और जो ये सब चीज़ें कर पाते हैं ना, बस उन्हीं को लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी खूबसूरती से जिया है ना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: अरे चिंटू, तुम समोसे का खाली आलू आलू क्यों खा रहे हो?
4: अरे भाई, बहुत बीमार चल रहा हूँ मैं, और डॉक्टर ने बाहर का खाने को मना किया है, बस इसीलिए अंदर का आलू खा रहा हूँ।
5: जी हाँ दोस्तों, आपके भी चाय समोसे जो हैं, आई एम श्योर बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। पकौड़े शकौड़े का दौर घरों में होगा। खैर, हमारे पास इस समय नहीं है, हम आपके साथ जुड़े हुए और हम आपके लिए प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मौका लगे तो जरूर हमारे लिए भी ले आइए। खैर, 12:26 का वक्त, प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, और आज है ट्यूजडे यानी मंगलवार, और आज हम बात कर रहे हैं फैशन और स्टाइलिंग की। आई एम श्योर आप इस बात को समझ चुके हैं कि भाई फैशन और स्टाइलिंग सिर्फ ऊपरी दिखावा नहीं होता है। आप ज्यादा स्टाइलिश तब लगते हैं जब आप अंदर से भी यानी अंदरूनी तौर पर भी खूबसूरत होते हैं। और आपको पता है कि ये एक बहुत बड़ा वे बन जाता है, एक बहुत बड़ा तरीका होता है जहां पर हम आदतों को सुधार लेते हैं। मतलब फैशन सिर्फ कपड़ों का ही नहीं बल्कि आदतों का भी होता है। हर दौर में एक नया फैशन आता है, लेकिन कुछ आदतें कभी भी आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड नहीं होती हैं। अब वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि समय पर उठना, खुद का ध्यान रखना, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, योग करना, अगर आपको जिम करना पसंद है तो जिम करिए, टहलने जाना पसंद है तो टहलिए, या बागवानी करना। ये वो सब आदतें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को अंदर से निखारती हैं। भाई महंगे ब्रांडेड जो कपड़े हैं वो आपको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन ये जो अच्छी आदतें हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाती हैं। तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल में ऐसी आदतों को जरूर शामिल करिए जो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। आपको पता है जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सोच लीजिए। एक्चुअली होता क्या है ना, हम सबको लगता है ना, ये खरीद लिया, कार खरीद ली, बंगलो बनवा लिया, वो कपड़े खरीद लिए, वो ज्वेलरी खरीद लिए, तो हम लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जो हम अपने लिए, अपनी अंदरूनी खूबसूरती के लिए, अपनी मानसिक शांति के लिए, सुकून के लिए खर्च करते हैं। और वो जो एक्सपेंडिचर होता है, वो जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो ताउम्र हम सभी के साथ चलता है और शायद जिंदगी को बेहतर जरूर बनाता है। तो चलिए, और भी बातें अभी आपके लिए हैं हमारे पास, बट फिलहाल ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द फिल्म लुटेरा आगे आप सभी के रेडियो सेट पर एंजॉय करिए इसको, और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की, आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

चलिए भाई, इससे आगे मैं बोल देती हूँ कि भाई बारिश तो अपनी धुन बिखेर ही रही है, साथ ही साथ हमारा जो एफएम रेनबो है और आपका जो एफएम रेनबो है वो भी अपने प्यारे प्यारे गानों से आपके लिए प्यारी प्यारी सी धुन भी बिखेर रहा है। 12:36 का वक्त हो चला है। प्रोग्राम शत्रुपा में आज हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे खुद को स्टाइलिश बना सकते हैं, और आप ये सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं, अंदरूनी तौर पे भी खुद को कैसे स्टाइलिश बना सकते हैं, इन चीजों पर आज हम बात कर रहे हैं। और इसमें जो हम अगली बात करने वाले हैं ना, वो है एक्सेसरीज की। जी हाँ, जब कपड़े इंसान पहन लेता है उसके बाद उसको लगता है कि कुछ बढ़िया बढ़िया सी एक्सेसरीज हाथ पैर गले कान इन सब में होनी ही चाहिए, ताकि लगे कि भाई आप परफेक्ट हैं, बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर चीज जो हमारे लिए होती है वो होती है हमारी मुस्कान, हमारी और आपकी मुस्कान। जी हाँ, लोग अक्सर अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए नए कपड़े, जूते, एक्सेसरीज खरीदते हैं, लेकिन सबसे सुंदर जो एक्सेसरी है वो है चेहरे की मुस्कान। और ये मुस्कान तभी आती है जब मन हल्का हो, मन खुश हो। और ये कब हो सकता है? जब आप अपने आप को मी टाइम देते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो हम सभी को अंदर से खुश करती हैं। तो अपने पसंदीदा शौक को समय दीजिए, परिवार के साथ हंसिए, प्रकृति के करीब आइए और हर वो काम करिए जो आपको करना पसंद हो, जायज भी हो। ये नहीं कि भाई कुछ उल्टा सीधा करने का मन कर रहा है वो भी कर रहा है, नहीं, जो अच्छा लगे, जो आपकी आत्मा कहती हो कि सही काम है वो जरूर करिए। और यकीन मानिए, अंदर की खुशी जब बाहर आएगी तो आप खुद ब खुद बेहद खूबसूरत दिखने लगेंगे। ओके, और इस बात के बाद ये जो श्रीवल्ली है ना, बहुत तेजी से कह रहे हैं कि मुझे भाई रेडियो सेट पर ले आइए। तो बस जावेद अली की आवाज, ये प्यारा सा गाना आप सभी के लिए। 12:38 का वक्त, जरीना है इस वक्त आप सभी के साथ और बहुत सारी बातें अभी भी करने को है आपके साथ। फिलहाल एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: अगर आपको है एफएम से बेपनाह मोहब्बत
1: तो लिख भेजिए हमें 26 बरस के एफएम के लिए 26 शब्दों की मोहब्बत भरी कविता या कहानी।
0: मोहब्बत का नियम निभाएंगे,
2: एक लिसनर से केवल एक ही एंट्री मंगाएंगे।
3: और हाँ, आखिरी तारीख है 5 अगस्त 2026।
0: 3 टॉप विनर्स बनेंगे हमारे सबसे खास मेहमान 20 अगस्त की शाम।
1: पता है ना, fmsesh26@gmail.com।
3: और सुनते तो रहेंगे आप हमें 100.7 FM रेनबो पर।
2: For more details, follow us on social media.
4: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल FM रेनबो।
5: I am संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो FM की।
6: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ FM रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM रेनबो।
5: ये तू सुन रहे हैं FM रेनबो और आप
7: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
8: भाई, आई एम श्योर कि आप सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि हमारे खूबसूरत गानों को और हमारी बातों को एंजॉय भी कर रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर। भाई, अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सबसे बड़े ट्रेंड की। और पता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा ट्रेंड होता है जिंदगी का कि खुद को हमेशा पहले से बेहतर बनाना, यानी खुद का बेहतर संस्करण ढूंढना, बनाना और उसको जीना। जी हाँ, हर दिन दुनिया में नए फैशन ट्रेंड ये सब चला करते हैं, लेकिन एक ट्रेंड ऐसा है जो कभी भी पुराना नहीं होता है, हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना। भाई, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले कुछ पल खुद के साथ बिताइए। अब आपको लग रहा होगा कि भाई अपने आप हम कैसे बिता सकते हैं अपने साथ, मोबाइल का साथ भी तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, वो साथ जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा किनारे करके आप खुद से बातें करिए, आप खुद को एनालाइज करिए कि आपने दिन भर क्या किया और आगे आपको क्या करना है या कल कैसी जिंदगी होगी, आपके क्या प्लानिंग्स हैं, और अपना खुद का बेहतर वर्जन पाने की हमेशा कोशिश करिए। भाई, असली फैशन यही है, क्योंकि इंसान सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपनी जो लाइफस्टाइल है उससे सबसे ज्यादा खूबसूरत

दिखाई देता है ना। तो बस कोशिश करिए अपना बेहतर वर्जन ढूंढने की। भाई रोज नहीं कर सकते, आपको लगता है कि हर दिन एक नया बेहतर वर्जन बनाना मुश्किल है, तो आप इसके लिए अपने आप को डेडलाइन दे सकते हैं, वो चाहे एक हफ्ते का टाइम हो। एक हफ्ते में जो आप पहले कर रहे थे उससे बेहतर अपनी जिंदगी में चीजें करिए, या आपको लगता है और ज्यादा टाइम लेने की जरूरत है तो बस महीने भर का टाइम ले लीजिए। एक महीना खुद पर इन्वेस्ट करिए, खुद को अच्छा करिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें करिए, और फिर आप पाएंगे अगले महीने, अगले हफ्ते या हो सकता अगले साल आपका अपना बेहतर वाला वर्जन। यस, और इसके बाद ये जो 12:45 हो रहा है ना, यानी स्टूडियो की क्लॉक इशारा करी कि ऑलमोस्ट मेरे पास, देखिए बात करते करते 46, ये हमेशा की प्रॉब्लम है इस क्लॉक की कि हम बात करते हैं और जो मिनट है वो चेंज हो जाता है। तो 12:46 का वक्त हो चला है और इसके बाद लगभग मेरे पास अभी 15 है आपसे बातचीत भी करने के लिए और आपको बढ़िया बढ़िया गाने सुनाने के लिए। तो चलिए ये जो ट्रैक है ना फ्रॉम द फिल्म परदेश, इसको भेजती हूँ आप सभी की रेडियो सेट पर। सोनू निगम की आवाज है इसमें और आपको पता है ये गाना अपने टाइम पे बेहद हिट हुआ था, बहुत ही अच्छा गाना माना गया था और अभी भी लोग इसको बेहद पसंद करते हैं। और इसमें जब आप शाहरुख खान को देखते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान ने इस पूरे गाने को शूट नहीं किया था, बस थोड़े से क्लिप उनके क्लोज शॉट में लिए गए थे और उसके बाद जितने भी आप लॉन्ग शॉट देते हैं उसमें शाहरुख खान नहीं, उनके डुप्लीकेट ने इस गाने को पिक्चराइज किया था। तो चलिए परदेश फिल्म का ये प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर इसी के साथ एंजॉय करिए 100.7 FM रेनबो को आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
2: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
1: और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ दोस्तों, देखते देखते वक्त कहाँ भाग जाता बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और घड़ियां भी मिला सकते हैं। 12:53 का वक्त हो रहा। अच्छा, घड़ियां मिलाने की बात इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है और लगभग सभी के घरों में जो घड़ियां हैं या जो उनकी बैटरीज है वो पक्का कुछ ना कुछ मुश्किलात पैदा कर रही होगी। कभी रुक जाती है, कभी तेज चलने लगती है, कभी टाइम गलत दिखाती है, और कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई एम श्योर आपके भी घर में कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मिला लीजिए, 12:54 हुए हैं और ये देखिए 10, 11, 12 और सेकंड्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी के साथ प्रोग्राम शत्रुपा को फिलहाल वाइंड अप करने का वक्त आ चुका है। और जाते जाते मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि स्टाइलिश तो हर कोई होता है, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। क्योंकि बहुत बार आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो भैया सूट बूट ठाट बाट में तो बिल्कुल रहते हैं, लेकिन जब वो अपनी जुबान खोलते हैं, जब आप उनके बिहेवियर को समझते हैं, जब उनको जानने की कोशिश करते हैं, तो आपका ये जो एकदम बूस्टअप सा उनको लेकर के इमेजिनेशन होता है, वो धड़ाम से डाउन हो जाता है। और उसके लिए बेहतर, सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि इंसान खूबसूरत तब है जब वो खुद को पहले से बेहतर अंदरूनी तौर पर बनाता है ना। तो बस कोशिश करिए कि अपना बेहतर वर्जन पाने की आप हमेशा कोशिश में लगे रहें, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी तो रहिए सिर्फ फिजिकल

फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। और इसी के साथ अब आपकी दोस्त जरीना को आप दीजिए इजाजत प्रोग्राम शत्रुपा से, आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और दिन इसी प्रोग्राम में। लेकिन ये प्रोग्राम तो फिलहाल वाइंड अप कर रही हूँ, अगला प्रोग्राम जो है उसको लेकर के बस अभी थोड़ी देर में वापस आती हूँ, क्योंकि भाई शाम तक हमें आपके साथ रहना है। तो सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।

पुष्पा टू फिल्म से आपने ये गाना सुना श्रेया घोषाल की आवाज में, और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे। बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जुबैर निशा बेगम, अकरम सैफी, आबाद खान। सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम रेशमा और अदीबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन सरफुद्दीन और कुमार वली और कुमार डब्लू भी सुनना चाहते थे। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम और उल्ला आसमा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम नितिन, पलक करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल अंसारी, आरमा नाज और सोनम। सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, मोहम्मद समी। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या।

और अब आप सुनेंगे फिल्म देसी बॉयज से ये गाना सोनू निगम की आवाज में, और इस गाने को आप सभी ने सुनने के लिए अनुरोध गीत में खत लिखा है रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदारानी और हिना कौसर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, मोहल्ला गढ़िया बरेली से हैं मोहम्मद कैसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम और नवेद शमसी के अलावा राजिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, परीमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा और इल्मा खान, वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कुमल, वाशने, सुशीला, प्रभा, तमरीज सलोनी, कमल, सचिन, नीरू, देविका, कार्तिक, वेद रचा और ऐश्वर्या, कमल वाशने। सुनते हैं आप सभी की अनुरोध पर ये गाना, फिल्म का नाम देसी बॉयज, सुर निगम की आवाज में।

और अब आप सुनेंगे ये गाना, फिल्म का नाम है दामिनी और इस गाने को गाया है कुमार शानू, साधना सरगम ने, और आप सभी सुनना चाहते पंचकुला सेक्टर 9 से आशुतोष अश्विनी, गोविंद टोनी, लव दीवान और राधे भाविक ढिंगरा, मोहल्ला तलैया उल्ला जागीर से फजलुद्दीन अबरार, अफजाल रामप्रसाद शर्मा, गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान सिद्दीक, साबिया रामप्रसाद, धुरेनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, फजरुद्दीन और अवरार, डूंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबे, राधिका गजबे, अनुष्का और तन्मय, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन और अपार, शकील अहमद और जावेद अली, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। सुनते हैं आप सभी के अनुरोध का ये गाना, फिल्म का नाम है दामिनी, कुमार शानू साधना सरगम की आवाज़।

0: सकता।
1: अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज, फिल्म का नाम रंग। ये गाना आपने सुना और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते थे। मंसूरी क्लब ग्राम मेचोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन, तालिब हुसैन, मोहम्मद

चोरा तहसील मिलक जिला रामपुर से सकावत हुसैन, तालिब हुसैन, मोहम्मद फैज, मोहम्मद अर्श, तौफीक मंसूरी, मोहम्मद नवी मंसूरी, सुनील रस्तोगी, राहुल और इनके बहुत सारे दोस्त। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार हुसैन, अल्ताफ हुसैन, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम और कुसुम नेताम भी इस गाने को सुनना चाहते थे। ये हैं विष्णु मस्कीन, रितिका वानी, आरव जो कि दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। आप सभी के अनुरोध का ये गाना आपने सुना, फिल्म का नाम रंग, और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। और ये गाना है नाम शबाना, फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत, और अब आप सुनेंगे ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम क्या दिल ने कहा। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं, ये है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा अमित और हैप्पी, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकेजा रेडियो श्रोता संघ, वैष्णो कॉलोनी सनावद एमपी से, छत्तीसगढ़ भाटापारा दुतरिंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और छावेंद्र, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम, रेशमा और आदिबा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सरफुद्दीन कुमार वली, कुमारी डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अक्रम और उल्ला आसमा। और अब आप सभी की पसंद का और अनुरोध पर ये गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज, फिल्म का नाम क्या दिल ने कहा।

इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर और अब रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार 5 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है वायरल फीवर, शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार यानी 4 अगस्त आज शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें टेलीफोन नंबर 0581251700 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक उपस्थित रहेंगे। विषय है वायरल फीवर, शंकाएं और आधुनिक उपचार। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय मंगलवार 4 अगस्त 2026 यानी कि आज शाम 4 बजे से। टेलीफोन नंबर 0581251700 यानी कि 0581251720। सूचना समाप्त हुई।

और इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत 100.4 FM पर। और ये गाना है किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है अजनबी। इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, नवनीत, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और सोहेल, पीतम लाला मकान के पास ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, डॉक्टर सरफराज खान, विकास सक्सेना, कर्णवीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर और सागर बख्शी, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति कुमार, रेडियो क्लब सिद्धार्थनगर इज्जतनगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव, गोलू, अनुराग और इनके परिवार के सभी सदस्य, आदर्श नगर मलोट से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार, मोहम्मद आसिफ जो कि हैं जसपुर उत्तराखंड से। आप सभी की अनुरोध का ये गाना फिल्म का नाम है अजनबी, किशोर कुमार की आवाज में।

0: दादू।
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

और इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 FM पर। प्रोग्राम का नाम है अनुरोध गीत। समय हुआ 1:44 और 54 सेकंड। ये गाना है फिल्म अकेले हम अकेले तुम से उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज। और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं। ये है सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े ज्योति आकांक्षा और आकाश मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धनपाल वीर सिंह लखविंदर संधू महावीर गुरचरण रमेश मिगलानी ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम सबिर राही मेराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गाना आप सभी के अनुरोध पर उदित नारायण अलका याग्निक की

और एयरलिफ्ट फिल्म से आपने गाना सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस समय आप सुन रहे आकाशवाणी बरेली, प्रोग्राम का नाम अनुरोध गीत। और अब आप सुनेंगे क्योंकि फिल्म से गाना उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में, और इस गाने को आप सभी सुनना चाहते हैं महादेव घर अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश, रमेश गौर, मोहम्मद शादाब खत्री, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावद एमपी से पीर।

घोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम और तबस्सुम, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम और मोहम्मद रेहान, शमरीन, औरंगाबाद से राजेश, साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि, ये हैं रीता, विनोद, वंश, अनंत और इनके परिवार के सदस्य रामप्रसाद शर्मा, वंदना मनोरमा देवी, जो कि हैं अशरफ खां बरेली से, पीर बहोड़ा से हैं आजाद खान, दिलशाद मुस्तकीम, तबस्सुम, मेहरून निशा। आप सभी के अनुरोध का ये गाना फिल्म का नाम क्यूंकि, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत नीतू त्रिपाठी के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रसरंग। रसरंग में ये पहले सुनते हैं लोकगीत तुलिका सक्सेना की आवाज़ में।

शुदा 100.4 एफएम पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रसरंग। श्रोताओं, आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारा आज का विषय है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, घी में गिरे तो। जी हाँ श्रोताओं, यह है हमारा आज का टॉपिक और इसका हम रिकॉर्डिंग करेंगे आज दोपहर 2:30 पर और प्रसारण रहेगा शाम 4 बजे से। तो श्रोताओं, आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज पर अपने कमेंट भी लिख करके भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0581-2517200। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम रस रंग में पंकज उदास की आवाज़ में यह गज़ल।

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से प्रोग्राम चल रहा है रसरंग और आप सुन रहे हैं लोकगीत गजल और कव्वाली। तो आइए सुनते हैं कैजर आजाद बदायूं व साथियों की आवाज़ में ये कव्वाली।

श्रोता हूँ आपकी बात आकाशवाणी के साथ कि हम रिकॉर्डिंग करेंगे 2:30 पर। फ़ोन करना ना भूलिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0581-251-7200 और हमारा आज का विषय है चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो। जी हाँ श्रोताओं, हमें फ़ोन ज़रूर करीजिएगा और साथ ही हमें फेसबुक पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं प्रोग्राम रसरंग में सारिका श्रीवास्तव के स्वर में ये लोग।

0: बस में उसे भूल।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रसरंग। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
1: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कैसी हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: लग रही हो?
1: जी
0: बिल्कुल। सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में, वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
1: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
0: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उसे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहाँ इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब ऋतु आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूलने के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
1: बिल्कुल। ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
0: हाँ।
1: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती हैं वो भी एकदम हरी भरी हो जाती हैं, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह हैं वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हैं। तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
0: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल। और सावन की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
0: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
1: बिल्कुल। आज हम लेके आए हैं विषय, आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
0: संबंध खराब हो जाते हैं
1: और जो शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह है, तो मेरा तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी है।
1: बिल्कुल,
0: है ना। तो ये सब चीजें भी होती है, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान के कच्चे कहावत है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान के कच्चे कभी ना हो। आपसे किसी ने कोई बात कही या आप तक कोई बात पहुंची तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें।
1: बिल्कुल।
0: कि क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही है।
1: बिल्कुल। उसकी आप जांचें, उसे परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीजें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए,
0: रखना पड़ता,
1: क्योंकि ये जो चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और आज हम विषय बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे एक से 21 होना।
0: अरे, एक से 11 होना तो हमने सुना है,
1: ये अलग है।
0: एक से 21 होना और भी बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए इस पर ये हमारे श्रोता, हमारी सखियों और सखा इस पर विचार भेजेंगे।
1: बिल्कुल। वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते हैं,
0: देखते हैं।
1: बिल्कुल। और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती है ना
0: जो
1: बिल्कुल याद रह जाती है।
0: तो और कई बार हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है जब भी छोटी थी, जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो हम उसके बारे

0: समेत बात करेंगे। अपनी अपनी आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं,
1: हाँ
0: क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक दूसरे के बारे में जानना।
1: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर निबंध नहीं लिखे है ना, कि वे बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं, आपने क्या शरारत की आपको याद है, या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
0: बिल्कुल
1: ये आप लिख सकते हैं।
0: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप किसी का भी, या अपने पोते पोतियों का बचपन,
1: या
0: कुछ
1: आपके
0: भी बता
1: पड़ोस
0: सकते
1: के
0: हैं।
1: बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है, उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है ना।
0: जी बिल्कुल। और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक हैं मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात करेंगे।
1: इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब सावन,
0: को एंजॉय, ओ आनंद उठाते हैं।
1: हाँ चलें करें।
0: बिल्कुल।

0: तो कितना प्यारा गीत। सावन तो आ गया है और खैर सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सावन की
1: जी
0: फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति
1: बिल्कुल
0: के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें
1: बिल्कुल
0: हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं।
1: जी
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अरे हम किस
1: जी
0: दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में,
1: बिल्कुल
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्वेलित हो जाता है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या उस तरीके की
0: हाँ,
1: चीजें होती हैं,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही कहा
1: ऐसे
0: आपने
1: हादसे हो जाते हैं।
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है, तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते, तुरंत आगे भेज देते। हमें लगता है
1: बिल्कुल
0: पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति बना देंगे, लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट है और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल। और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर हो फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम
1: जी
0: इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के
1: बिल्कुल
0: मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है।
1: जी
0: इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती है।
1: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में, तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है, और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए, और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
0: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनके विश्वसनीय स्रोत की जांच

0: जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं।
1: हाँ,
0: इस कार्यक्रम
1: बिल्कुल,
0: में
1: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की, और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो, पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती, अनुशासन से बंधा हुआ था, और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे, उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया, और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी।
1: जी, और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की, और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई, और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई, और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं, और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था।
1: जी, और क्योंकि लंदन से आने वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
0: हाँ।
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए,
0: हाँ,
1: इस
0: बिल्कुल
1: तरीके
0: सही
1: के।
0: कहा। हाँ हाँ
1: जी
0: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले, लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो, इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया। साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल, और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया, और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
1: जी बिल्कुल, और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था, और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सबके बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ, और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है, और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
1: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
0: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया, और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी,
2: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था।

0: -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती तुम चौंक गई ना?
3: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
2: लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 107.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं और आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर का।
1: और अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़ता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। वो लिखते हैं,
0: जय गुरुदेव, जय गुरुकुल, उमंग टीम को पल पल बंदगी, विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी, जय जोहार बंदगी जी। उमंग कार्यक्रम है लाखों में एक, आप हमारे गुरु के समान हो, हर सप्ताह नई नई जानकारी हमें सिखलाते हो, अहो भाग्य हमारा। उमंग कार्यक्रम एक पाठशाला है जिसे सुनकर जीने की कला हमें आ जाती है। इस सप्ताह बहुत ही खूबसूरत गीत, कविता, फूलों से नित हंसना सीखो, खेल गीत, भारत प्यारा, टिम टिम तारा आपने सुनाया, ये सभी गीत हमें बहुत पसंद आए। धन्यवाद साहेब जी।
1: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेरणादायक संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है माँ बम्बलेश्वरी धाम सांकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल कुमारी।
1: और राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं आज भी करेंगे कि उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए लगातार।
1: जी
0: एक बार फिर से स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, क्या है हमारी आज की चर्चा का विषय?
1: अजी जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। चलिए मैं श्रोताओं को कुछ संकेत देती हूँ।
0: जी,
1: अंदाजा लगाना है कि हम किस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं।
0: जी, तो विमलेश जी आपने कहा मैं संकेत देती हूँ, तो संकेत दीजिए।
1: मेरे संकेत कुछ प्रश्नों में छिपे हुए हैं। पहला प्रश्न है, श्रोताओ क्या आपने कभी अपने मोबाइल से कोई प्रश्न पूछा है और देखा है कि तुरंत उत्तर मिल गया? क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर को कोई पोस्टर बनाने की कमांड दी और देखा कि तुरंत आपके लिए पोस्टर बनकर तैयार हो गया? यदि हाँ तो बताइए कैसे संभव हो पाया।
0: या फिर श्रोताओ, क्या आपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भाषा का अनुवाद कुछ ही सेकंड्स में होते देखा है? भला ये कैसे संभव हो जाता है?
1: अजीत जी, यदि हमारे श्रोता मित्रों का ये अंदाजा है कि AI या कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संभव हो पाता है तो वो एकदम सही है। जी हाँ, हमारी आज की चर्चा का विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बता दें कि इसका आविष्कार अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी ने 1955 में किया था। लेकिन अजीत जी, एक ये प्रश्न उठता है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस क्या है?
0: विमलेश जी, यदि सरल शब्दों में कहें तो AI या कृत्रिम इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर या मशीनों को इस प्रकार से काम करने में सक्षम बनाती है कि वे कुछ हद तक मनुष्यों की तरह सीख सकें,
1: जी,
0: समझ सकें और निर्णय लेकर समस्याओं का समाधान भी कर सकें।
1: जी अजीत जी, आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। आज AI शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, परिवहन, चिकित्सा, विज्ञान और उद्योग जैसे अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपयोगी सिद्ध हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकती है।
0: और तो और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकती है।
1: शिक्षा के क्षेत्र में AI विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकता है।
0: और विमलेश जी, इतना ही नहीं, ये कठिन विषयों को भी सरल भाषा में समझा सकता है।
1: जी,
0: अभ्यास प्रश्न तैयार कर सकता है और नई भाषा सीखने में भी सहायता कर सकता है।
1: जी,
0: इससे सीखना अधिक रोचक और व्यक्तिगत बन जाता है।
1: ये सब बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन श्रोताओं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: जी,
1: हर नई तकनीक की तरह AI के साथ भी कुछ चुनौतियाँ जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती है गलत या भ्रामक जानकारी।
0: जी,
1: AI कभी कभी ऐसा उत्तर दे सकता है जो सुनने में तो सही लगे लेकिन पूरी तरह से सही न हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीय स्रोतों से अवश्य जांच कर लेनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही श्रोता। दूसरी एक और बहुत बड़ी चुनौती,
1: जी,
0: वो चुनौती नकल करने की प्रवृत्ति।
1: जी,
0: विद्यार्थी भी कई बार अपना गृह कार्य, प्रोजेक्ट या निबंध पूरी तरह AI से बनवा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत हानिकारक है।
1: जी,
0: क्योंकि इससे उनकी अपनी सोचने, लिखने और समस्या समाधान की क्षमता प्रभावित हो सकती है और आजकल ऐसा होने भी लगा है।
1: तो श्रोता मित्रों, हमें याद रखना चाहिए कि AI सीखने का साधन है, सीखने का विकल्प नहीं।
0: जी,
1: तो अब बात करते हैं कि AI का जिम्मेदारी से उपयोग कैसे करें। सबसे पहली बात, AI का उपयोग सीखने के लिए करें, केवल उत्तर पाने के लिए नहीं। यदि कोई विषय समझ में ना आए तो आप AI से कहें कि वो सरल भाषा में विषय को समझाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिखें।
0: जी, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हमें एक और बात पर बहुत ध्यान देना चाहिए, कि एआई से

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
1: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सुविचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और प्रियंका जी ने। लिखते हैं,
2: कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है लेकिन झुकने के बाद भर कर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ ऐसा ही है, जो विनम्रता से झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर और प्रेरणादायी विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर।

0: लिए जानकारी का मिलान विश्वसनीय पुस्तकों, शिक्षकों या प्रामाणिक स्रोतों से जरूर करें
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI पर आश्रित ना हो जाएं।
1: बिल्कुल,
0: अपनी रचनात्मकता को बनाए रखें। चित्र बनाना, कविता लिखना, कहानी गढ़ना और नए विचार सोचना, ये सब मानव की विशेष क्षमताएं हैं।
1: जी हाँ श्रोता मित्रों, AI का उद्देश्य आपकी जगह सोचना नहीं, लेकिन आपको एक बेहतर ढंग से सोचने में सहायता प्रदान करना है
0: जी।
1: AI हमारी सहायता कर सकता है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति का स्थान नहीं ले सकता। ये सच है कि हर नई तकनीक अपने साथ अवसर भी लाती है और जिम्मेदारी भी।
0: जी हाँ, जैसे एक उदाहरण लीजिए, जिस प्रकार बिजली का सही उपयोग हमारे जीवन को आसान बनाता है,
1: बिल्कुल,
0: और गलत उपयोग नुकसान पहुंचा सकता है
1: जी।
0: इसी प्रकार AI भी एक बेहद शक्तिशाली साधन है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब हम इसका उपयोग समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करेंगे। आइए हम इस तकनीक से डरे नहीं, बल्कि उसे समझें, उससे सीखें, उसका उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो श्रोताओ, आज का हमारा प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: और एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है पेड़ की बात।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम महान भौतिक और वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बसु के एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है।
0: पेड़ की बात।
2: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
3: चलो चलो
4: पास
3: चलते हैं।
4: सर से हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे। नमस्कार सर।
5: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
6: सर मैं इशिता।
7: मैं हूँ चेताली।
8: मैं शुभेंदु।
9: और मेरा नाम है इंदु।
10: और मैं सोमेश।
5: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
6: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
5: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
8: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।

0: फिर क्या होता है?
1: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
0: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
1: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
2: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
3: वाह, कितनी सुंदर बात है।
1: अच्छा, एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
4: पौधा।
1: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
4: उल्टा?
1: हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
0: ये तो बड़ी रोचक बात है सर। सर, एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
3: जी सर।
1: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
3: रसपान कैसे करते?
1: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
3: जी सर।
1: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
3: अच्छा, अब समझ आया।
1: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
4: जी सर। हाँ,
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं।
3: अरे, कितनी बड़ी प्रयोगशाला है। यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
0: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे।
6: देखो, इतना बड़ा पेड़।
0: अरे, उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
4: अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है? चलो चलो सर से पूछते हैं।
1: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
6: माइक्रोस्कोप?
1: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ, देखो।
3: जी सर।
1: हाँ, देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ, आओ देखो। देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है।
0: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
1: शाबाश।
0: हाँ, नलिया तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
3: मुझे भी देखना है। सर, मैं भी देखूं?
1: हाँ, आओ आओ।
0: मुझे भी देखना है।
1: देखो क्या दिखाई दिया?
0: इसमें तो बहुत सारी नलिया हैं।
1: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
4: पाइप?
1: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
5: अच्छा, तो ये बात है।
1: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
0: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
1: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
4: नहीं सर।
1: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता लें? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ,

0: देखो कौन देखेगा सबसे पहले। शुभेंद्र तुम देखो क्या दिखाई दिया।
1: अरे वाह कितना अद्भुत है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
0: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
2: जी सर।
0: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ ऐसे। हाँ शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा। इशिता तुम बताओ।
3: सर टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
0: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं।
1: सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: हाँ।
1: लेकिन सर ये तो जहरीली होती है।
0: बिल्कुल ठीक बहुत अच्छे। देखो बेटा मनुष्य ही नहीं पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा अब जरा सोचो अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा।
3: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
0: सही कहा तुमने शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं जिससे हमारा जीवन चलता है।
4: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
2: हम भी नहीं होते।
0: शाबाश। तो बताओ बच्चों कैसी लगी आज की बातचीत।
2: बहुत बढ़िया।
0: अब से एक काम जरूर करना।
2: क्या सर?
0: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना तो उसे बोलना
2: थैंक यू प्लांट थैंक यू ट्री।
0: शाबाश।
5: तो साथियों अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
6: पेड़ की बात अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।
0: पिताजी ने कहा,
2: 5-7 रुपए?
3: तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
1: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया, फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए।

0: बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संपादक संयुक्ता लूदरा और सत्येंद्र वर्मा। कार्यक्रम निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर। कलाकार नीरज यादव, अर्जुमन अली खां और मिताली। ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साथी की सहायता। CIET NCERT presents English rhymes and songs.
1: Friends, we present to you the song Five Little Ducks.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु
0: चेतना
1: और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, 104.4 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का। ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर।

0: श्रोताओं, समय हुआ है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ का। तो हमारे सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं और घी में गिरे तो। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कई बार कि वस्तु की कीमत देखकर अलग अलग व्यवहार करते हैं, जबकि स्वच्छता के नजरिए से अगर हम देखें तो दोनों ही मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। अगर खाने या पीने की चीज दूषित हो जाए तो उसे सुरक्षित मानने से पहले उसकी स्थिति पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो आज इसी विषय पर हमने अपने बहुत सारे श्रोताओं से बातचीत की है और साथ साथ हमारे फेसबुक पेज पर बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो सभी हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। श्रोताओं, देखते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। हेलो,
1: एक हसरत थी सच्चा प्यार पाने की, एक हसरत थी सच्चा प्यार पाने की, मगर चल पड़ी आलिया जमाने की, मेरा गम कोई नहीं समझ पाया क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? बड़ा प्यारी आवाज है आपकी।
1: जी सर, मैं ग्राम पोस्ट बक्सीना डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दाताएं का रहने वाला विमल ठाकुर इस समय हरिद्वार से मुखातिब हूँ सर आपसे।
0: अच्छा अच्छा, इस वक्त हरिद्वार में हैं आप तो? हरिद्वार में
1: ही प्रोग्राम सुना जा रहा है आपका।
0: तो सावन के महीने में घूमने गए हैं आप वहाँ पर या वहीं रहने लगे हैं अब?
1: सर हम यहीं पर रहते हैं, बच्चों के साथ, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और साथ ही हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो यहीं रहते हैं सर अभी तो।
0: चलिए, बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा वातावरण है वहाँ का तो, है ना? उत्तराखंड का एरिया है वो और ठंडी ठंडी गंगा जी की मतलब छांव में आप लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं।
1: जी सर बिल्कुल, और यहाँ पर इस समय तो खूब घूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा भी निकल रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मनमोहक दृश्य है यहाँ उत्तराखंड का और नजारे भी काफी अच्छे अच्छे हैं सर देखने।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृतिक जगह है वो तो, वहाँ पर गंगा जी भी बह रही हैं और पर्वत भी हैं, है? और सावन का महीना है तो इस महीने में तो वैसे भी बहुत ज्यादा हरा भरा वातावरण हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। विमल ठाकुर जी, आज का हमारा टॉपिक है आपकी बात आकाशवाणी के साथ का, कि चाय

0: में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, घी में गिरे तो, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: चाय में अगर मक्खी गिर जाती है तो एक कप चाय में अगर मक्खी गिर रही है तो चाय की कीमत सर कम रहती है और घी की कीमत देखा है अधिक रहती है। ये इंसान की सोच पर डिपेंड करता है, तो अपने मुताबिक है, मतलब के मुताबिक वो इंसान चाय को तो फेंक देता है पर घी को नहीं फेंकता, क्योंकि घी की कीमत भी ज्यादा है और घी की वैल्यू भी ज्यादा है सर।
0: अच्छा, सारी बात मतलब कीमत पर आकर अटक जाती है।
1: जी सर, जैसे जिसकी वैल्यू वैसे वैसे उसका वो है उत्पादन।
0: नहीं, कहते हैं कि जैसे मक्खी है वो गंदी जगहों पर भी जाकर बैठती है, नाली में और
1: बिल्कुल
0: इधर
1: सर,
0: उधर बैठती है, तो उसके मतलब जो पंजे होते हैं उसमें गंदगी होती है, तो जिसकी वजह से चाय तो हम फेंक देते हैं क्योंकि उसकी कीमत कम है, लेकिन घी
1: जी
0: क्योंकि
1: जी सर,
0: कॉस्टली होता है तो इस वजह से हम उसको नहीं फेंक पाते हैं कहीं ना कहीं, है ना?
1: मन में आ जाता है कि हाँ घी कीमती है और घी को हम नहीं फेंकेंगे, है ना सर, इस तरह से हो जाता है।
0: चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप, विमल ठाकुर जी?
1: जरा आपसे बात हो रही है और मूवी का नाम लगा राजा हिंदुस्तानी और इसमें बेहतरीन सलामार पूछो जा रहा, पूछो मुझे क्या हुआ ये सब सुनवा दीजिए, मेरी बात सरकस तो लोग गुनगुन को ये रेडी कर रहेगा।
0: अच्छा, तो अगर आप थोड़ा गुनगुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है।
1: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है।

0: श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के फेसबुक कमेंट भी आए हैं, तो इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, आप कहते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को हमारा सादर नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। आप कहते हैं कि चाय मीठा जहर है जो हर भारतीय बड़ी चाव के साथ पीते हैं, जिनको हम चाय कहते हैं। अंग्रेज चले गए, चाय हमारे लिए छोड़ गए। बड़ी बात यह है कि जब भी कोई मेहमान हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम चाय के साथ उनका स्वागत करते हैं, और चाय आजकल राजनीति में भी चाय का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करना चाहिए, इस विषय पर मेरा निजी राय यही है कि चाय को नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि मक्खी हर गंदी जगह पर बैठ जाती है और वही चाय में गिरने से हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं, और उसे चाय को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए वैसे भी हानिकारक होती है, अगर मक्खी गिर जाए तो और भी ख़तरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए चाय को नहीं पीना चाहिए जिसमें मक्खी गिर जाए। और साथ साथ अगर घी में भी अगर मक्खी गिर जाए तो जिस स्थान पर मक्खी गिरी है, क्योंकि घी थोड़ा कीमती होता है और उसको फेंकने पर थोड़ा कहीं ना कहीं हमें कष्ट होता है, तो उस स्थान से मक्खी को निकाल करके फेंक देना चाहिए और उस घी को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। राधा नामदेव जी कहती हैं कि हम तो घी भी फेंक देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका, और देखते हैं कि अब हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ, हमारे कौन श्रोता बोल रहे हैं?
1: सर जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ। सर
0: सतीश रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में। प्रोग्राम हमारे सुन पाते हैं आप?
1: बिल्कुल सर जी, आपके कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी, और आप जो विषय हर रोज चेंज करके देते हैं सर, और भी अच्छे लगते हैं सर हमको।
0: जी, प्रत्येक दिन हमारे आपकी बात आकाशवाणी के साथ का टॉपिक अलग अलग रहता है, और टॉपिक ऐसा रहता है कि जिससे हमारे लिसनर भी जुड़ सकें अच्छे से, है ना?
1: जी बिल्कुल सर।
0: आम कहावत है कि चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, और घी में गिरे तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर सतीश रघुवंशी जी?
1: जी बिल्कुल सर जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक है सर जी, और मैं ये बोलना चाहता हूँ सर।

0: यदि चाय में यदि हम सामने से यदि चाय पी रहे हैं तो मक्खी जाती है, बिल्कुल हम चाय को फेंक देते हैं और घी में गिरती है, रुको खा क्यों सही सर। जो मीठे पसंद होती है सर जी, तो उसको आदमी प्यार में और दोस्त लोग के बीच में उसको खा लेता है, और थोड़ी जो कड़वाहट होती है सर जी, जो चार में दिखती है सर, उसको आदमी निचोड़ के फेंक देता सर। जी
1: जी, तो आप फेंक देते हैं।
0: जी बिल्कुल सर जी, क्यों सर की चाय सर हम पीते हैं तो चार लोग के बीच में बैठ के पीते हैं सर जी, और चार में कीटी होती है तो इसलिए उसको आदमी फेंक देते हैं। और यदि हम सर खाना खा रहे हैं और अचलू में बैठ के यदि खा रहा है और थोड़ा सा यदि इसमें कुछ हो गया तो धीरे से निकाल के उसको फेंक के सर उसको फिर से खाना ही पड़ेगा।
1: अच्छा, ये मतलब है आपका,
0: जी
1: या
0: सर
1: मतलब क्या इसकी कीमत से कोई अभिप्राय है? भाई, जैसे चाय की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और घी क्योंकि अमूल होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है,
0: जी सर
1: क्या ये कारण रह सकता है?
0: जी जी बिल्कुल सर जी, और इसमें सर कीमा को कोई महत्व नहीं होता, क्यों सर जी यदि सर हम किसी को यदि चार को चार के बीच में यदि सर किसी की किटी कर रहे हैं वो सर सहन नहीं हो जाती, और अकेले में उसको कुछ भी बोल ले मान लो तो वो अंदर से तो उसको पी लेते हैं सर।
1: जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
0: सर जी मुझे सुनो दीजिए, फिल्म का नाम है सर आओ प्यार करें, और गीत को बोल रहेंगे सर जी, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे कानों ओ मेरे।

0: कृतिका मिस्किन, वाड़ी मिस्किन, अरब मिस्किन, दयानंद कॉलेज भवानीपेट, सोलापुर महाराष्ट्र से। आप लिखते हैं कि चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिरे तो लोग अक्सर मक्खी निकालकर घी रख लेते हैं। यही इंसानी सोच का बड़ा दिलचस्प पहलू है। जहां नुकसान कम होता है वहां हम बिना सोचे छोड़ देते हैं, लेकिन जहां चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है वहां उसे बचाने के लिए तरह तरह के तर्क ढूंढ लेते हैं। बात सिर्फ चाय और घी की नहीं है, बल्कि हमारी मानसिकता की भी है। जीवन में भी हम अक्सर रिश्तों, समय और विश्वास जैसी अनमोल चीज़ों की उतनी कदर नहीं करते जितनी धन दौलत की करते हैं। जबकि सच तो यह है कि खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास, समय और अपनापन वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए सीख यही है कि कीमत केवल वस्तुओं की नहीं होती, कुछ चीज़ों का मूल उनसे कहीं अधिक होता है। पहचान उसी की है जो हर चीज़ का महत्व समझे, केवल उसकी कीमत नहीं। बहुत ही सुंदर सा उदाहरण आपने इस कहावत पर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु मिस्किन जी। और आप हैं रणधीर गुप्ता, आप कहते हैं कि इतनी कमाई नहीं है कि देसी घी खाएं, महंगाई। अच्छा, चलिए, ये हमारा अगला कमेंट आया है नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू ज्योति ठाकुर का, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। आप कहते हैं कि चाय में मक्खी गिर जाए तो लोग पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिर जाए तो अक्सर मक्खी निकालकर घी का उपयोग जारी रखते हैं। ये हमारे व्यवहार का रोचक उदाहरण है कि निर्णय कई बार वस्तु के मूल और उपयोगिता से प्रभावित होते हैं, फिर भी स्वास्थ्य की दृष्टि से दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचना ही बेहतर है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नंद ठाकुर जी। और देखते हैं कि ये हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, हमारे कौन श्रोता बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मानोर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहुत दूर से आपने फोन किया शारदा प्रसाद जी, और बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम आपकी बात आकाशवाणी के साथ में।
1: जी धन्यवाद।
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आकाश में बादल घिरे हुए हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत ही सुंदर और सुहाना मौसम है,
0: और सावन का महीना भी चल रहा है ना।
1: जी जी,
0: बड़ा ही भक्तिमय वातावरण होगा इस वक्त मथुरा का, क्योंकि मथुरा तो वैसे भी
1: इस वक्त काफी श्रद्धालु भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं देवों के देव महादेव का, और इस वक्त शिवालय में अधिक भीड़ रहती है और अन्य मंदिरों में भी रहती है, लेकिन वो सुबह और शाम रहती है, लेकिन शिवालय में दिन भर भीड़ रहती है।
0: क्या बात है। आज का जो हमारा विषय है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, घी में गिरे तो, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: जी निसंदेह मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। चाय काफी गर्म होती है और हम गर्म गर्म चाय पीते हैं, लेकिन जब उसमें मक्खी पड़ जाती है तो उसके दूषित तत्व चाय में घुल जाते हैं, और इसलिए हमें चाय को फेंक देना चाहिए, उसे कभी सेवन नहीं करना चाहिए। और जबकि घी ऐसा है कि वो शीतल होता है, जमा हुआ होता है, और जो दूषित पदार्थ होते हैं मक्खी मच्छर के, वो घी में घुल जल्दी से घुल नहीं पाते हैं, तो थोड़े से घी के साथ में अपन मक्खी को फेंक देते हैं, लेकिन पूरा घी नहीं फेंकते हैं। ये हमारी एक मानसिकता है, सोच है, और ऐसा हमें करना भी चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही शारदा प्रसाद प्रजापति जी, के चाय गर्म होती है और जो मक्खी का दूषित पदार्थ है वो चाय में जल्दी घुल जाता है, जिसकी वजह से उसे फेंक देते हैं, और घी क्योंकि जमा हुआ होता है तो लाजमी है जिस एरिया पर बैठी है उसी जगह पर उसका दूषित पदार्थ रहा होगा, तो अक्सर लोग मतलब उतने ही स्थान से, मतलब मक्खी की जगह जहाँ बैठी है तो उस जगह का वो निकाल करके फेंक देते हैं, है ना। लेकिन अगर हम यूं कहें कि चाय थोड़ा सस्ता पेय पदार्थ है और घी थोड़ा महंगा होता है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी घी तो काफी महंगा होता है चाय के मुकाबले में, लेकिन चाय की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी होती है और सस्ती भी होती है, तो उसमें फेंकना इतना कष्टकारक नहीं होता है, घी तो काफी मात्रा में होता है, और ऐसे में क्या होता है कि उसको भी देखते हुए आदमी को ऐसा करना स्वाभाविक होता है। लेकिन क्या होता है कि जो मतलब ये दूषित पदार्थ जो घुल जाता है चाय में ना अति जल्दी, और मक्खी मर भी जाती है, उसकी वजह से ये चाय थोड़ा सा आदमी का मन विकृत कर देता है, गिनगिनाहट लगती है, और कहते हैं अरे यार अब क्या फेंकते हैं कोई इसको।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही शारदा प्रसाद प्रजापति जी। कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: मानवराज महान अभिनेता।

0: गीतकार संगीतकार निर्माता निर्देशक किशोर कुमार साहब की जन्म जयंती है, उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सत सत नमन वंदन प्रणाम करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, फिल्म का नाम है ब्लैकमेल और किशोर कुमार साहब ने गीत को गाया है, पल पल पल दिल के पास तुम रहती हो, ये गीत सुना दीजिए।
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, आप कहते हैं कि आज दुनिया का ये दस्तूर बन गया है कि जो कम पूंजी का व्यक्ति होता है उसे चाय मंगाई जाती है और जो ज़्यादा पूंजी का व्यक्ति होता है उसको चाय पिलाई जाती है। इसी प्रकार अगर चाय में मक्खी पड़ जाए तो चाय फेंक दी जाती है और अगर घी में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी को निकाल कर फेंका जाता है, घी को कोई नहीं फेंकता। ये ज़रा सी बात हमें बहुत बड़ा संदेश देती है, अगर आप समझ सकूँ तो। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही लाल मोहम्मद अंसारी जी, आपका बहुत शुक्रिया। और आप हैं ग्राम पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी, आपका

हैं कि मेरे नज़रिए से बस यही कहना चाहता हूं कि ये मानव स्वभाव की एक दिलचस्प सच्चाई है कि हम अक्सर निर्णय वस्तु की कीमत देखकर लेते हैं, सिद्धांत देखकर नहीं। चाय में यदि मक्खी गिर जाए तो बिना सोचे समझे पूरी चाय फेंक देते हैं, लेकिन वही मक्खी यदि घी में गिर जाए तो कई लोग मक्खी निकाल कर घी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये उदाहरण हमें बताता है कि कई बार हमारे फैसले स्वच्छता या सही गलत के आधार पर नहीं बल्कि नुकसान और लाभ के हिसाब से होते हैं। यदि हम जीवन में सिद्धांतों को प्राथमिकता दें तो हमारे निर्णय अधिक ईमानदार, संतुलित और सही होंगे। इसलिए केवल वस्तु का मूल्य नहीं बल्कि अपने मूल्यों का भी सम्मान करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शारुनूर अंसारी जी। आप हैं हमारे श्रोता अनोखे लाल मौर्य। आप कहते हैं कि चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिरे तो लोग अक्सर घी मक्खी निकाल कर

0: चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिरे तो लोग अक्सर घी मक्खी निकाल कर घी रख लेते हैं। यही इंसानी सोच का बड़ा दिलचस्प पहलू है। जहाँ नुकसान कम होता है वहाँ हम बिना सोचे छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है वहाँ उसे बचाने के लिए तरह तरह के तर्क ढूंढ लेते हैं। बात सिर्फ चाय और घी की नहीं है बल्कि हमारी मानसिकता की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे श्रोता हैं, आपने अपना नाम और पता नहीं लिखा, KPS चौहान जी हैं। आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम पेशकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। चाय हमारी माता, चाय नहीं होती तो अच्छा। चाय ये कहते हैं कि इसको हम संस्कृत में दुग्धम, संक्रम, मंदाकम, पद्रातकम के नाम से पुकार सकते हैं। चाय मीठा जहर है जो हर भारतीय बड़ी चाव के साथ पीते हैं, जिनको हम चाय कहते हैं। और आप कहते हैं गलती से चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक दी जाती है, यहाँ तक कि जो ठीक लगता है कि मक्खी हर गंदी जगह पर बैठ जाती है जो बीमारी फैला देती है, इसलिए चाय नहीं पी जाती। अगर मक्खी घी में गिर जाए तो उसे हम जिस जगह मक्खी गिरी है उस जगह चम्मच से उतने घी को निकाल देते हैं, क्योंकि चाय से घी ज़्यादा महंगा होता है। आप हैं चौकड़ा धाम कॉलोनी सनाबत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, KPS चौहान, तारा देवी चौहान, NS चौहान और PBS चौहान, कुमारी दुर्बी चौहान और इनके सभी साथी। तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से शाहरुख खान, हाशिम खान, अरहम बाबू और किश्वा नूर। चाय सस्ती होती है इसलिए उसे तुरंत फेंक दिया जाता है, जबकि देसी घी बहुत महंगा होता है इसलिए उसे फेंकने में दिल नहीं मानता। देखने का नज़रिया इंसान अपनी सुविधा और नुकसान के हिसाब से नियम बदल लेता है। सस्ती चीज़ में ज़रा सी गंदगी भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन महंगी चीज़ में समझौता कर लिया जाता है। समाज में लोग अपनी कीमत और फ़ायदे के अनुसार और शुद्धता के पैमाने को बदल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हैं हमारे श्रोता शाहरुख खान जी। और देखते हैं कि हमारे ये अगले कॉलर कौन है। तो देखते हैं कि हमारे ये कॉलर कौन है। हेलो
1: सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील लीसागढ़ जिला अशोक नगर MP से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा हूँ सर।
0: क्या बात है विनोद नारायण कुशवाहा जी, मध्य प्रदेश से आप फोन किया है ना?
1: जी जी सर।
0: तो वहाँ पर हमारे प्रोग्राम आपको साफ सुनाई देते हैं?
1: सर आप सुनाई देते हैं, लेकिन आजकल जो अपना ऑनलाइन सिस्टम है सर उसके जरिए हम सुन लेते हैं।
0: जी जी, ऑनलाइन से ही सुन पाएंगे आप, क्योंकि उसी के माध्यम से जो है हम हर जगह उपलब्ध हैं।
1: जी जी सर, हम
0: देश विदेश तक लोग हमें सुनते हैं।
1: आपकी आवाज बहुत प्यारी लगती है सर, मधुर है सर।
0: आज का जो हमारा विषय है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं, घी में गिरे तो, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर?
1: सर जी मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मक्खी दूध में गिर जाए या अपने चाय में गिर जाए तो अपन लोग उस चीज को फेंक देते हैं।
0: जी
1: दरअसल क्या है, अब जैसे सर घी में गिर जाए, अब घी मान के चलो सर कि अपने पास 1-2 किलो हो तो ज्यादा मात्रा में हो तो सर उस चीज को अपन फेंक तो नहीं सकते, लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत चाय या दूध के बराबर हो तो सर फेंक देना चाहिए, क्योंकि सर वो दूषित हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया तो चला जाता है
0: जी।
1: तो सर अपन अगर उस चीज को उपयोग करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, तो सर अपने स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पहला अपन स्वस्थ रहेंगे तो घी दूध तो और भी खा सकते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, आपने
1: अगर दूसरे चीज को अपन खाएंगे तो सर बीमार पड़ जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसलिए दूध हो या घी हो तो सर ऐसी चीज का उपयोग न करें जिससे कि अपना स्वास्थ्य खराब हो जाए सर, चाहे वो महंगी हो अथवा चीज सस्ती हो। अब स्वास्थ्य के आगे महंगा सस्ता नहीं देखना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अक्सर ये कहावत है कि मतलब चाय जब हम पीते होते हैं अगर उस बीच अगर हमारे चाय में मक्खी या कोई भी कीट पतंगा गिर जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, क्योंकि वो मात्रा में कम होती है और शायद उसकी कीमत भी कम ही होती है, और घी क्योंकि थोड़ा महंगा होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि अधिक संख्या में होने की वजह से जितनी जगह पर वो गिरा है उस स्थान से उतना निकाल करके हम फेंक देते हैं। अगर कम मात्रा में है तो हम उसको फेंक भी सकते हैं, है ना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे ही पूरे घी को प्रदूषित कर दे। चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके विनोद नारायण कुशवाहा जी, इतनी दूर से आपने फोन किया है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप इस प्रोग्राम में?
1: सर सर फिल्म का नाम है कलाकार गायक कलाकार अपने किशोरदा गीत इंदिवर संगीत कल्याण।

आप हैं हमारे श्रोता माँ बम्लेश्वरी धाम रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू कुलवंती देवी साहू देवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी साहू मिलित कुमार साहू प्रणय कुमार साहू रुद्राक्ष प्रताप साहू। आप कहते हैं चाय पर मक्खी पड़ जाती है तो हम चाय को फेंक देते हैं और चाय को नहीं पिया जाता, लेकिन चाय मीठी होती है, सस्ते में उपयोग करते हैं, परंतु घी थोड़ा महंगा होता है। अगर मक्खी घी पर पड़ जाए तो हम उतने स्थान से घी को निकाल करके फेंक देते हैं और घी को इस्तेमाल कर लेते हैं। साथी आपने और भी प्यारा सा संदेश लेकर के भेजा है, मीठा और अच्छा चीज़ उपयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को चरितार्थ करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। अगला कमेंट हमारे पास आया है जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवाहा। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं, उसी तरह घी

0: को भी फेंक देना चाहिए। मक्खी घी में गिरे या दूध में, चाय में बैक्टीरिया तो छोड़ ही देती है। जी बहुत शुक्रिया। आप हैं प्रवीण चौहान। घी बहुत महंगा होता है, इसलिए पूरे घी को कभी नहीं फेंकते। वैसे भी गाय का घी बहुत पवित्र माना जाता है, इसे फेंकने पर पाप लगता है, इसलिए घी में गिरी मक्खी को निकालकर उपयोग में ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया। आप हैं दर्पण कुमार सैनी, ग्राम एंचोरा, पोस्ट क्रमचा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से। चाय में मक्खी गिरे तो पूरी चाय फेंक देते हैं और घी में मक्खी गिरे तो केवल मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं और घी रख लेते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि इंसान चीज़ों की कीमत और अपने फायदे के हिसाब से अपने नियम बदलता है। चाय सस्ती होती है इसलिए उसे फेंक देते हैं, जबकि घी महंगा होता है इसलिए केवल मक्खी बाहर निकालते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है।
1: कौन साहब बोल रहे हैं?
2: रामपुर से बोल रहा हूँ।
1: हाँ, वैसे तो सारी दुनिया ही राम भरोसे है और आपका नाम है तो हमें और अच्छा लगा आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े। कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक हैं, आप सुनाइए।
1: क्या करते हैं राम भरोसे जी?
2: खेती किसानी करते हैं और हलवाई की काम करते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारा आज का जो विषय है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंकते हैं और घी और घी में गिरे तो क्या करते हैं?
2: तो नहीं खाना चाहिए, दुख तकलीफ होती है और परेशानी है, खाने का उसका खाने का मन ही नहीं करता है।
1: अच्छा अच्छा,
2: ये चीज है, ये मक्खी गिरने से बहुत दिक्कत आती है, खाने का मन ही नहीं करेगा।
1: अच्छा अच्छा, तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय को भी फेंक देते हैं आप। चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके राम भरोसे जी। और कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
2: संग्राम फिल्म का
1: सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं सुनील कुमार जिला बरेली से बोल रहा हूँ। 25 के नेता बढ़िया
0: सुनील कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: है सर, आप दुआ है हम लोग कैसे। हाँ
0: बढ़िया है। आज का हमारा जो विषय है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय को फेंकते हैं और घी में गिरे तो क्या करते हैं आप?
1: देखो सर, ये है कि चाय तो सभी लोग फेंक देते हैं, मगर घी में गिरेगी तो घी कोई नहीं फेंकेगा। तो ये है कि सावधानी बरतें जो मक्खी गिरेगी ना।
0: अच्छा। हाँ नहीं, वैसे तो ढक के
1: हाँ
0: रखना चाहिए, नहीं लेकिन इन केस अगर गिर जाती है तो मतलब तो घी का उस जितने स्थान पे गिरती है उस उतना घी फेंक देते हैं या सारा घी फेंक देते हैं आप?
1: नहीं, उतना ही निकाल देते हैं आप बैठी है, क्योंकि
0: क्यों?
1: कहीं कहीं जो उनके आती है, कहीं बैठती है, कहीं कुछ करती है, तो इस्तेमाल एरिया का मान लो 10 ग्राम है, 20 ग्राम वो हटा देना।
0: अच्छा। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो पंजे होते हैं या पर होते हैं वो प्रदूषित होते हैं और वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, है ना
1: बिल्कुल बिल्कुल, कई कई जगह बैठती है वो, तो उससे हानि पहुंचती है। चांदनी
0: जी? अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कौन सा गीत सुनेंगे सुनील कुमार जी?
1: फिल्म का लगी आज सावन की किरणें भरी।

0: ये कमेंट हमारे पास आया है कटर चंदखा पुराना शहर बरेली मौर्य मंदिर से। आप कहते हैं कि सभी आकाशवाणी बरेली के सदस्यों को मेरा प्रणाम, आपको भी हमारा प्रणाम। आप हमारे श्रोता हैं मुकेश मौर्य। आप कहते हैं कि चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, लेकिन घी में मक्खी गिरने पर मक्खी निकाल देते हैं और घी का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा घी के गाढ़ेपन और उसकी कीमत की वजह से किया जाता है। आप कहते हैं कि मक्खी एक ऐसा जीव है जिसमें अनेक बैक्टीरिया होते हैं और वो सभी चीज़ों पर बैठती है, तो जहाँ वो बैठती है उसको निकाल करके फेंक देना चाहिए, वही उचित रहेगा। मुकेश मौर्य, बहुत शुक्रिया आपका।
1: हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन श्रोता बोल रहे हैं हमारे?
2: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदू, जिला उज्जैन से।
0: क्या बात है, बड़ा दूर से उज्जैन से हमारे प्रोग्रामों को आप सुनते हैं, कैसे लगते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम?
2: फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी करता हूँ और बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होते हैं, और जो बात आपकी जो होते हैं ना ये प्रोग्राम,
0: हाँ,
2: उसमें बहुत दूर दूर से श्रोता फोन लगाते हैं और अपनी बातें बताते हैं विषय के बारे में। ये प्रोग्राम हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
0: आज का टॉपिक आपको मालूम है?
2: जी हाँ, चाय में मक्खी गिरे तो फेंक देते हैं और घी में गिरे तो क्या करें?
0: जी जी बताइए, क्या करेंगे आप?
2: जी तो आपको बताना चाहूँगा, मक्खी की कीमत नहीं होती है, घी और चाय की कीमत होती है
0: जी।
2: अगर हमारे पास में चाय में गिरे तो हम तुरंत चाय को फेंक देते हैं और घी में से मक्खी को हटा कर जो मक्खी के जो आसपास का जो घी थोड़ा खराब हो जाता है उसी को फेंकने की कोशिश करते हैं
0: जी।
2: लेकिन आपको बताऊँ, जैसे कि मक्खी गिर जाती है तो घी तो थोड़ा खराब हो जाता है, उसे भी फेंक देना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो लोग नहीं फेंकते हैं।
0: जी बिल्कुल, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपकी तरह हमारे जितने भी लिसनरों से हमारी बात हुई है उन सबके विचार यही हैं कि
2: लेकिन आपको बताना चाहूंगा मैं
0: जी,
2: मैंने तो कभी मक्खी गिरा हुआ घी नहीं खाया है और नहीं कभी चाय पी है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मक्खी के जो मतलब पंख होते हैं या मतलब कहते हैं पैर होते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदूषित होते हैं और वो जगह जगह गंदे स्थानों पर नाली में या कीचड़ में या ऐसी जगहों पर बैठती है, तो इसकी वजह से वो प्रदूषित होती है ना?
2: जी बिल्कुल, प्रदूषित तो होता ही होता है।
0: तो उससे क्या है कि जो हमारे खाने का चीज़ है या पीने की चीज़ है वो प्रदूषित हो जाती है।
2: जी बिल्कुल,
0: इस वजह से उसको फेंकना ही उचित रहता है ना?
2: जी बिल्कुल।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, क्या करते हैं आप?
2: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: क्या बात है, सावन का महीना चल रहा है, कोई भजन शिव भजन अगर आपके पास हो तो सुनाइए हमारे श्रोताओं को भी।
2: जी बिल्कुल, आपको बताऊँ उससे पहले कि अभी हम खेत में काम कर रहे हैं
0: जी,
2: और खरपतवार का निकालने का काम हो रहा है, और अभी हमारे प्रोग्राम हर मतलब सोमवार को भी होते हैं, मंगलवार को भी होते हैं और गुरुवार को भी होते हैं, पूरे सावन महीने में।
0: जी जी सुनवाइए।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: नमस्कार सर, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम शिवराय चंपकपुर तहसील आंवला जिला बरेली से। सर
0: नमस्कार सद्दाम जी, ठीक हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? सर
0: बस बढ़िया है। बरसात हो रही है आपकी तरफ?
1: हाँ, इस समय बारिश हो रही है सर।
0: चलिए, इस बारिश के मौसम में आप हमारे प्रोग्रामों को सुन रहे हैं, हमें और भी अच्छा लग रहा है। हमारा आज का टॉपिक तो आपको मालूम ही होगा।
1: जी सर मालूम है मुझे सर।
0: क्या
1: सर चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या करेंगे, अगर घी में गिरे तो क्या करेंगे? सर
0: जी, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो क्या करते हैं? जी बताइए, क्या करेंगे आप? अगर आपकी चाय में मक्खी गिर जाए तो आप क्या करते हैं मोस्टली?
1: चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो चाय तो सर फेंक देते हैं सर,
0: जी, और घी
1: और
0: में?
1: घी घी की बात सर ऐसी है, घी तो जो है कीमत उसकी कुछ अलग है, जो चीज का मोल अलग है सर वो अनमोल होती है सर, इसलिए ज्यादातर लोग घी को नहीं फेंका करते हैं,
0: चाय को फेंक देते हैं।
1: इच्छा नहीं होती है सर।
0: जी बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि चाय में अगर मक्खी गिरे तो चाय को फेंक देते हैं और घी में जिस स्थान पर गिरती है उसी स्थान से घी निकाल करके और उस मक्खी को फेंक देते हैं। पूरा घी नहीं फेंकते हैं मोस्टली, है ना?
1: नहीं सर,
0: ये फेंक दे तो पूरा घी भी?
1: नहीं पूरा नहीं, उतना ही ऊपर से निकाल कर फेंक देते हैं सर, क्योंकि घी की कीमत सर अलग होती है, एक कप चाय की कीमत 10 रुपए और एक कप घी की कीमत सर लगभग 100 रुपए होगी सर।
0: जी बिल्कुल सही बात कही आपने,
1: जी
0: और
1: सर
0: अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हमारी इस सभा के शेष और कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात 8 आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विधानमंडल समीक्षा रिले की जाएगी आज रात्रि 8:20 पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। किसानवाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 6:30 पर। इसमें आज की बात होगी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी। जानकारी देंगे कृष्णपाल मौर्य और रविंद्र कुमार। साथी होगा हेलो किसान, बाजार भाव, मौसम, कृषि समाचार, सवाल, नसीहत और साथ में लोकगीत। आज शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत, चर्चा तंबाकू का सेवन न करें। एक वार्ता आपको सुनवाएंगे महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं श्रीमती अभिलाषा से। साथी होगा लोकगीत और ओवी। युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी आप सुनेंगे आज शाम 6:00। कुछ खास है आज, फिरोज शाह मेहता जयंती पर चर्चा की जाएगी। साथी होगा आपकी पसंद और ओवी। 5:30 पर हमारी बहनें सुनेंगी कार्यक्रम नारी संसार भावना के साथ। इसमें चर्चा होगी पहले 6 केवल मां का दूध, वार्ता रिश्तों में भरोसा कायम रखें रूबी रानी से। साथी होंगे किचन टिप्स और इनसे मिलिए। 7:31 पर आप सुनेंगे अपने पत्रों पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। और अब से कुछ ही देर में 5:05 पर आप आनंद ले सकेंगे भजन संध्या का।

श्रोताओं, एक नजर कल की सभा में हमारे केंद्र से रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल दोपहर 3:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा। यंग बरेली का समय रहेगा कल सुबह 8:15।

मिनट पर, इसमें ओबीफोन होगा, साथ ही बरेली की खबरें। सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुनेंगे कल सुबह 10 बजे। खतों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे अनुरोध गीत कल दोपहर 1 बजे। कल शाम 4 बजे आप सुनेंगे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कल प्रातः 8:45 पर आप आनंद ले सकेंगे लोकगीतों का। सबरंग आप सुनेंगे कल सुबह 11 बजे। रसरंग में गजल कव्वाली और लोकगीत आप सुनेंगे कल दोपहर 2 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 9 बजे। उसके बाद दोपहर में 2:30 पर और रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे कल सुबह 11:30 पर।

कल शाम 7:31 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन। विषय रहेगा वायरल फीवर, शंकाएं एवं आधुनिक उपचार। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद अकीक। प्रायोजक गंगाशील एवं गंगाचरण अस्पताल बरेली। संसद समीक्षा आप सुनेंगे कल रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विधानमंडल समीक्षा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कल रात्रि 8:20 पर। नारी संसार कल आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। इसमें चर्चा होगी कामकाजी माताएं और स्तनपान, घर में मच्छर रोकने के आसान उपाय, साथ ही एक वार्ता बढ़ती महंगाई और किचन का बजट। वार्ताकार होंगी फाखरा सुल्ताना। पेरेंटिंग टिप्स और इनसे मिलिए ग्राम जगत आप सुनेंगे कल शाम 6:30 पर। इसमें चर्चा होगी ग्रामीण युवा स्वरोजगार से जुड़े, कृषि गोष्ठी। विषय रहेगा खेती किसानी और पशुपालन से लाभ। प्रतिभागी होंगे प्रेमपाल, सुनील कुमार, राकेश कुमार और साथ में आप सुनेंगे लोकगीत। युवाणी आप सुनेंगे कल शाम 6 बजे। इसमें कुछ खास है आज, प्यार की धुन ओबी और साथ में आप सुन सकेंगे चक्रव्यूह। श्रोताओं कल शाम 5:05 पर आप आनंद ले सकेंगे भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या में। श्रोताओं ये तो थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी। हमारी इस सभा के शेष और कल की सभा में रिले व प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं भजन संध्या में ये भजन अनुप जलोटा के स्वर में।

रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी में नया क्या, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी में नया क्या, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। और आइए सुनते हैं अब नंदनी शरण के स्वर में ये भजन।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, भजन संध्या में आप सुन रहे हैं भजन, और ये भजन है हरिओम शरण के स्वर में।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी में नया क्या, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी में नया क्या, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भजन संध्या। आइए सुनते हैं अगला भजन अनुप जलोटा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे भजन संध्या 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम नारी संसार भावना।

गुड इवनिंग, नमस्कार आप सभी श्रोताओं का, बहनों का आपके इस फेवरेट प्रोग्राम नारी संसार में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन। कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूं बहुत ही खुश होंगी और प्रसन्न होंगी। और आज हम आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हर बच्चे के स्वास्थ्य जीवन की मजबूत नींव रखता है। जी हाँ, और कहा भी जाता है जब बच्चा घर में आता है तो हर किसी के मन में हर्ष और उल्लास रहता है, और बच्चे की किलकारियाँ जो होती हैं वो सूने आंगन को उत्साह से भर देती हैं। तो हम बात कर रहे हैं नवजात शिशु के बारे में, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ स्तनपान। जी हाँ, नवजात शिशु के लिए माँ का जो दूध होता है वो प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार होता है, और ये केवल भोजन ही नहीं बल्कि संपूर्ण पोषण, सुरक्षा और स्नेह का अद्भुत संगम होता है। जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध जो होता है वो शिशु के लिए अत्यंत लाभकारी होता है, और यह बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है, उसे कई संक्रमणों से बचाने में सहायक होता है, और अगर हम स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह को माने तो शिशु के जन्म के पहले 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। साथ ही साथ जन्म से लेकर पहले 6 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस अवधि में बच्चे को पानी, शहद, घुट्टी, गाय या भैंस का दूध या फिर कोई भी अन्य भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। माँ का दूध अपने आप में ही संपूर्ण होता है और साथ ही साथ बच्चे की भूख और प्यास दोनों की पूर्ति करता है। स्तनपान के लाभ केवल शिशु तक ही सीमित नहीं है बहनों, इससे माँ और शिशु के बीच एक भावनात्मक संबंध बनता है और अधिक मजबूत होता है। नियमित रूप से स्तनपान माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक माना जाता है, और कई बार तो नई माताओं को स्तनपान कराने में अगर कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो

ऐसे में घबराने की जगह डॉक्टर, ANM, आशा कार्यकर्ता या अन्य प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लेना उचित माना जाता है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी भी है कि वो माँ को पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और भावनात्मक सहयोग दे, ताकि वो बिना किसी तनाव के अपने शिशु को स्तनपान करा सके। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एक छोटा सा जो कदम है वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और उज्जवल भविष्य की मजबूत शुरुआत बन सकता है। और इस बारे में हम और बातचीत करेंगे अपने स्पेशल सेगमेंट इनसे मिलिए में, लेकिन फिलहाल तो समय है एक गाने का, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

0: आप सभी श्रोताओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है नीतू सिंह सोलंकी जी, और जिनसे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बच्चा जब घर में आता है तो नई खुशियाँ लेकर के आता है और माँ के लिए एक नया जन्म होता है। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ और बच्चा दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से आगे बढ़ता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान किस तरीके से जरूरी है, आइए हम जानते हैं नीतू जी से। नीतू जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मैम।
0: नीतू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्तनपान बच्चे के लिए इतना जरूरी क्यों कहा जाता है?
1: माँ का दूध शिशु के एक तो संपूर्ण विकास और पोषण स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है, और अगर जन्म के 6 महीने तक स्तनपान कराया जाए बच्चे के लिए तो उससे बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। और दूसरी बात, जो माँ का शरीर है तो माँ का शरीर भी अपने सुचारू रूप से कार्य करने लगता है और फिगर भी मेंटेन एक तरीके से होती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चे के लिए फीड कराना। और सबसे बड़ी बात है, जो हम डिब्बे का दूध पिलाते हैं उसमें वो भावनात्मक जुड़ाव भी नहीं होगा। जो माँ का दूध होता है उसमें उसके प्रेम भावनाएं सब कुछ उसमें शामिल होता है। तो ये चीज इसलिए मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत जरूरी है, और इसमें सभी पोषक तत्व तो भी काफी पाए जाते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है और कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीजें, और इससे बच्चे की जो स्ट्रांग इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होती है, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। मैं
0: जन्म के बाद कितनी जल्दी स्तनपान शुरू करना चाहिए?
1: कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो कभी कभी माँ जैसे कमजोर है तो उसका जल्दी दूध नहीं उतरता है, तो जन्म के 1-2 घंटे के बाद ही दूध जैसे पिलाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो शुरुआत का दूध उसका गाढ़ा और जो पीलापन लिए हुए होता है
0: जी,
1: तो वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की मात्रा काफी होती है, और सबसे बड़ी बात है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पचता भी अच्छी तरह से है बाकी अन्य दूध की तुलना में।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि बहुत जरूरी है बच्चे को स्तनपान कराना, क्योंकि एक तो ये भावनात्मक जुड़ाव रखता है माँ के प्रति और साथ साथ बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अच्छा, अगला प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि कई बार जो माएँ होती हैं वो बहुत ही जल्दी स्तनपान कराना छोड़ देती हैं, तो कितने समय तक जरूरी है स्तनपान कराना बच्चे के लिए, या कब से हमें ऊपरी आहार देना शुरू करना चाहिए?
1: देखिए, हम 6 महीने के बाद आप उसे बच्चे के लिए हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन दे सकते हैं, जैसे दाल का पानी है, हल्का सा गलाकर खूब दलिया है, मूंग की दाल है, इन दालों का पानी बच्चों के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहता है
0: जी।
1: तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और 6 महीने से आप बच्चे के लिए ठोस आहार थोड़ा सा दे सकते हैं, और बच्चे के कम से कम नहीं है माँ के लिए दूध 2 साल तक तो पिलाना ही चाहिए।
0: जो आपने अभी हमें बताया कि 6 महीने तक बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, तो ऐसे में क्या उसे पानी वगैरह दे सकते हैं?
1: वैसे तो दूध में सारे ही पोषण तत्व तो होते हैं उसमें।
0: चलते चलते क्या कहना चाहेंगी जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, और जो बहुत सारे लोग इस समय आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी अपनी बहनों के लिए कि आजकल हम फिल्मी स्टाइल देखकर और ये सब फिल्में या सीरियल देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि बच्चा हो गया है तो अब हम इसे फीड नहीं कराएं, हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो है फिगर खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को दूध पिलाने से आपका फिगर भी मेंटेन होगा और आपका वजन बल्कि जल्दी ही नियंत्रण में आएगा
0: जी।
1: तो इसलिए ये बच्चे के लिए दूध से वंचित ना करें, ये बच्चों का अधिकार है, हक है ये उनका, और ये हक उनके लिए अवश्य दें।
0: जी नीतू जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, और इस समय जो बहनें आपको सुन रही हैं कहीं ना कहीं आपकी बातों से बहुत ही ज्यादा लाभान्वित होंगी। आपने हमसे इतनी बातें करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो ये तो था हमारा आज का सेगमेंट इनसे मिलिए, जिसमें हमने बातचीत की नीतू सिंह सोलंकी जी से, और अब बारी है एक गाने की, तो आइए सुन लेते हैं ये गाना।

0: बहनों, रिश्ता चाहे कोई भी हो, माँ का उसके बच्चे के साथ, पति का पत्नी के साथ, सास का बहू के साथ या किसी के भी साथ, अगर रिश्तों में भरोसा ना हो तो गाड़ी आगे तक नहीं चल सकती। तो आइए, अब वक्त है वार्ता का, तो आइए सुनते हैं वार्ता। रिश्तों में भरोसा कायम रखें, वार्ताकार है रूबी रानी।
1: नमस्कार साथियों। साथियों, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? सोना, हीरा, पैसा? नहीं, सबसे महंगी चीज है भरोसा। क्योंकि सोना हीरा तो बाजार में मिल जाता है, पर भरोसा बाजार में नहीं मिलता। एक बहुत अच्छी लाइन है, भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो लाख जोड़ो निशान रह ही जाता है। भरोसा कोई एक दिन में नहीं बनता। भरोसा मतलब ये यकीन कि सामने वाला मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ा रहेगा। पति पत्नी का रिश्ता हो या बाप बेटे का, दोस्ती का या भाई बहन का, मालिक मजदूर का, इस रिश्ते की नींव सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है, वो है भरोसा। बिना भरोसे का रिश्ता बिना नींव की इमारत जैसा होता है, जो कभी भी गिर सकता है। आज भरोसा क्यों टूट रहा है? पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा होता था। आज के समय में तीन कारणों से भरोसा टूट रहा है। पहला, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने लगे हैं। दूसरा, मोबाइल और दिखावा, हम अपनों से ज्यादा बाहर की दुनिया को समय दे रहे हैं। तीसरा, स्वार्थ, जहां मतलब खत्म वहां रिश्ता खत्म, ये सोच बहुत ही खतरनाक है। मानव जीवन रिश्तों की डोर से बंधा हुआ है। परिवार, मित्र, पति पत्नी, भाई बहन, सहकर्मी और समाज, हर संबंध की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि किसी रिश्ते में भरोसा बना रहता है तो वह रिश्ता समय की हर परीक्षा में सफल रहता है। लेकिन यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत संबंध भी कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रिश्तों की सबसे बड़ी पूंजी धन नहीं बल्कि भरोसा होता है। आज के आधुनिक जीवन में व्यस्त प्रतिस्पर्धा और तकनीकी के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं। ऐसे समय में रिश्तों में विश्वास बनाए रखना पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। विश्वास का निर्माण धीरे धीरे होता है, इसके लिए सबसे पहले ईमानदारी आवश्यक है। यदि हम सच बोलते हैं और अपने वादों को निभाते हैं तो लोग हम पर विश्वास करने लगते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है पारदर्शिता। किसी भी रिश्ते में बातें छिपाने या झूठ बोलने से संदेह पैदा होता है। यदि किसी कारणवश कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना और क्षमा मांगना विश्वास को मजबूत बनाता है। तीसरा गुण है सम्मान। जब हम दूसरों की भावनाओं, विचारों और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हैं तब सामने वाला व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। यदि परिवार के सदस्य या मित्र खुलकर एक दूसरे से बातचीत करें तो अधिकांश समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि ध्यान से सुनना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम सामने वाले की बात बिना टोके, बिना निर्णय दिए सुनते हैं तो उसका विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। आज सोशल मीडिया के दौर में भी कई बार बिना सत्यता जाने अफवाहों पर विश्वास कर लिया जाता है, जिससे रिश्तों में दूरी आ जाती है। इसलिए किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले सत्य की पुष्टि करना आवश्यक है। विश्वास दोबारा बन सकता है, लेकिन इसके लिए समय, धैर्य, निरंतर अच्छे व्यवहार की आवश्यकता होती है। परिवार समाज की सबसे छोटी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यदि परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास बना रहे तो घर में प्रेम, शांति, सहयोग का वातावरण रहता है। माता पिता यदि बच्चों पर उचित विश्वास करें और बच्चे अपने माता पिता से कोई बात न छुपाएं तो परिवार मजबूत बनता है। पति पत्नी के संबंधों में भी विश्वास सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आधार है। आपसी सम्मान, सहयोग और पारदर्शिता वैवाहिक जीवन को सुखद बनाते हैं। सच्ची मित्रता और विश्वास के बिना एक अधूरी कहानी है। एक अच्छा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ दे, आपकी बातों को गोपनीय रखे और आपकी सफलता से प्रसन्न हो। मित्रों के बीच ईर्ष्या, झूठ या स्वार्थ आ जाए तो संबंध कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए मित्रता में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखना आवश्यक है। विश्वास केवल व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, समाज की व्यवस्था भी आपके भरोसे पर चलती

0: करती है। व्यापारी, ग्राहक, शिक्षा और विद्यार्थी, डॉक्टर, मरीज, अधिकारी और नागरिक सभी के संबंध विश्वास पर आधारित होते हैं। यदि समाज में विश्वास की भावना मजबूत होगी तो सहयोग, ईमानदारी, विकास का वातावरण बनेगा। वही विश्वास बढ़ने पर तनाव, विवाद और असुरक्षा का भावना पैदा होती है। भरोसा बनाए रखने के सरल उपाय: हमेशा सच बोलें और ईमानदार रहें। अपने वादों को निभाने का प्रयास करें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। गलत फहमियों को बातचीत से दूर रखें। दूसरों की निजी बातों को गोपनीय रखें। गलती होने पर स्वीकार करें और क्षमा मांगें। बिना प्रमाण किसी पर भी संदेह न करें। कठिन समय में अपने प्रियजनों का साथ दें। विश्वास जीतने के लिए धैर्य और निरंतर अच्छा व्यवहार बनाए रखें। अंत में एक छोटी सी कहानी। एक बार दो दोस्त रेगिस्तान में जा रहे थे। रास्ते में झगड़ा हो गया। एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिसे थप्पड़ लगा उसने रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे मारा। कुछ दिन बाद वही दोस्त उसकी जान बचाता है। तब उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो दोस्त ने पूछा, पहले रेत पर और अब पत्थर पर क्यों लिखा? उसने कहा, जब कोई तकलीफ दे तो उसे रेत पर लिखें ताकि हवा उसे मिटा दे, और जब कोई अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिखें ताकि कोई भी हवा उसे मिटा ना सके। यही तो भरोसा है साथियों। रिश्ते जीवन की सबसे अनमोल धरोहर है और भरोसा उनकी सबसे मजबूत नींव है। धन, पद और प्रतिस्पर्धा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन विश्वास पर आधारित संबंध जीवन भर साथ निभाते हैं। इसलिए हम अपने व्यवहार में ईमानदारी, संवेदनशीलता, सम्मान, पारदर्शिता को स्थान देना चाहिए। जब हम विश्वास को बनाए रखने का प्रयास रखते हैं, तब परिवार मजबूत होता है, मित्रता गहरी होती है और समाज में प्रेम तथा सद्भावना का वातावरण विकसित होता है। धन्यवाद।
1: तो ये तो थी हमारी आज की वार्ता, रिश्तों में भरोसा कायम रखें। वार्ताकार थी रूवी रानी। और अब आइए सुनते हैं ये गाना।

तो श्रोताओं, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम नारी संसार। कैसा लगा आपको? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर हमें लिखकर भेजिएगा। आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं, इसके साथ ही साथ फेसबुक पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, और चिट्ठी पत्री तो है ही, तो देर किस बात की, जल्दी से आप हमें या तो मैसेज करिए या फिर लेटर लिख करके भेज दीजिए। कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र बरेली, 243001। और अब हमारे पास और ज़्यादा वक्त नहीं है कि आपसे बातचीत कर सकें। अपनी रेडियो दोस्त भावना कंचन को दीजिए अनुमति। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। और आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युव वाणी आपकी रेडियो फ्रेंड नेहा सिंह के साथ। दोस्तों, आज है 4 अगस्त और आज के दिन मनाई जाती है सर फिरोज शाह मेहता की जयंती। इनका जन्म 4 अगस्त 1845 को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। बॉम्बे विश्वविद्यालय से एमए करने वाले ये पहले पारसी थे और बाद में उन्होंने लंदन स्कूल से कानून की पढ़ाई भी की थी। लंदन में ही ये भारतीय सभा एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संपर्क में आए और यहीं से इनके राजनीतिक, सामाजिक एंड साहित्यिक जीवन की शुरुआत भी हुई। फिर वापस इंडिया आने के बाद ये मुंबई नगर पालिका के सदस्य बन गए और उसके अध्यक्ष भी रहे और इस संस्था के

सुधार के लिए उन्होंने बहुत से कार्य भी किए। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन में सक्रिय होने के साथ साथ इसके अध्यक्ष भी रहे और साथ ही मुंबई के एडवोकेट जनरल और इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे। मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े रहे और उन्होंने लोगों में राष्ट्र भावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम था द बॉम्बे क्रॉनिकल्स और ये एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, इसकी स्थापना भी की थी। एंड 1890 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि सिक्स्थ अधिवेशन था उसकी इन्होंने अध्यक्षता भी की थी। अपनी पढ़ाई का इन्होंने प्रॉपर यूज़ भारत को आज़ादी दिलाने में लगाया। ये लगातार स्वतंत्रता सेनानी बने रहे और साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अखबारों में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट आर्टिकल्स छापते रहते थे जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े और वो स्वतंत्रता संग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। श्रोताओं, हम अपने प्रोग्राम को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, बट अब सुनते हैं कार्यक्रम में गीत।

0: पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं, आजकल की बढ़ती जनसंख्या के कारण जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है ना, वो डे बाय डे कम होती जा रही हैं, जैसे कि पानी। और जो पीने योग्य पानी है वो तो आज के समय में बहुत ही कम बचा है, और ये जीने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए इसका कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है। और इसी विषय पर अब हम वार्ता करेंगे प्रीति सिंह के साथ।
5: जल है तो कल है, ये लाइन हमने न जाने कितनी बार पढ़ी और सुनी है, बट क्या इस लाइन की इम्पोर्टेंस को हमने कभी समझा और अपनाया? शायद नहीं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। आज हम जानेंगे आज के समय में सबसे ज़रूरी विषय के बारे में, जो जल संरक्षण है। पृथ्वी पर सभी के जीवन के अस्तित्व के लिए पानी आवश्यक है। हम खाने के बिना तो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। अगर हम सब आज के समय में वाटर कंजर्वेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। वैसे तो 70% पार्ट ऑफ अर्थ पानी से घिरा हुआ है, जिस कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में है जो कि खारा है, एंड पीने योग्य केवल 1% वाटर है। ऑन एन एवरेज पर डे एक इंसान को अप्रॉक्स 250-400 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है अपने दिन भर के काम से लेकर खाने पीने तक, एंड हम में से मोस्टली लोग इसी पानी को यूं ही बहा देते हैं, वेस्ट करते हैं। हमें तो जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है ही, साथ ही जीव जंतुओं पेड़ पौधों के लिए भी ये असेंशियल है। अब से काफ़ी सदी पहले मनुष्य को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जल पर्याप्त था, बट जैसे जैसे आबादी बढ़ी पानी की मांग भी बढ़ गई, जिससे आज 25% लोगों के पास फ्रेश वाटर पहुंचा ही नहीं। जहां काफ़ी लोगों को पानी इजीली मिल जाता है, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पानी लेने कुएं तक जाना पड़ता है या गवर्नमेंट वाटर टैंक के आने पर घंटों लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि वर्षा होने का इंतज़ार करना पड़ता है समर्स में। पानी की कमी के कारण काफ़ी हैं, जैसे कि पहला, हमारे घरों और उद्योगों में पानी का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करना। दूसरा, फैक्ट्रीज से निकला वेस्ट डायरेक्ट नदियों में जाता है जो फ्रेश वाटर को पल्यूट करता है और कृषि पर भी प्रभाव डालता है। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर ध्यान से करें और जल संरक्षण के तरीकों अपनाएं, जैसे कि बर्तन धोते टाइम, ब्रश शेविंग करते टाइम वाटर टैप तभी खोलें जब ज़रूरी हो, ना कि पूरा टाइम चलने दें। नल से पानी टपक रहा हो तो उसे ज़रूर ठीक करवाएं। नहाने के लिए शावर की जगह बाल्टी यूज़ करें। वॉशिंग मशीन डिश वॉशर का यूज़ कम से कम और तभी करें जब उसमें पूरा लोड हो। बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसे आप बाद में पेड़ पौधों कार वॉश साफ सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। कपड़े धोने के बाद बचा हुआ पानी घर में सफाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर फिल्टर से पानी जो निकलता है उसको कलेक्ट कर आप अन्य कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वाटर कंजर्वेशन के तरीके तो अनेक हैं, बस उन्हें अपनाना ज़रूरी है और लोगों में जागरूकता लाना भी। एंड ये सब चीज़ें आप अपने घर के मेंबर्स स्पेशली बच्चों को ज़रूर समझाएं। आजकल बच्चे खेलने के लिए

वाटर टब, मिनी पूल्स घर में ले आते हैं, जिसमें ना जाने कितना पानी डालकर वो बस कुछ देर खेलने के लिए उसको वेस्ट कर देते हैं। एंड ये वो डेली बेसिस पर करते हैं। दूसरों को समझाने से पहले अपने घर में शुरुआत करें, खुद तो वाटर सेव करें, साथ ही अपने बच्चों को भी इसके फायदे के बारे में सिखाएं। जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और इसका भंडार भी सीमित है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। सो सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स।

वेल फ्रेंड्स, आजकल तो मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल रहा है। एकदम से बादल होते हैं, फिर वर्षा होते ही थोड़ा ठंडा मौसम भी हो जाता है, बट उसके कुछ देर बाद ही कभी धूप, उमस और ये गर्मी ना सबको बहुत परेशान कर देती है। एंड यही बदलता मौसम हमें बीमार भी बनाता है। फीवर होना, कोल्ड, कफ, बहुत इजीली ये सब चीज़ें हमें इस मौसम में हो जाती हैं। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हमारे हाथ में ही है, और इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बारिश में भीगने से हम जितना हो उतना बचें। और अगर बाई चांस हम भीग भी जाते हैं ना, तो घर पर आकर सादे पानी से ज़रूर नहाएं, किसी भी तरह के जर्म्स या इन्फेक्शन से बचने के लिए। इसलिए और साथ ही दोस्तों, इस मौसम में ना जो बिल्कुल चिल्ड पानी है फ्रिज का, उसको बिल्कुल भी ना पिए। ये हमारे गले को ख़राब करता है, और खांसी ज़ुकाम का जो मेन कारण होता है ना, वो यही होता है कि एकदम हम गर्मी से आकर ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीने लगते हैं, और इस वेदर में इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो और भी ज़्यादा डबल हो जाते हैं। इसलिए जो स्ट्रीट फूड हुआ उसको अवॉइड करें, क्योंकि जो ये बाहर के अनहाइजीनिक फूड होते हैं, हमें स्टमक इन्फेक्शन या पेट में दर्द करना, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स, या पॉल्यूटेड वाटर से टाइफाइड, पीलिया, ये सब बीमारियां भी हमें हो जाती हैं। इसलिए जितना पॉसिबल हो फिल्टर्ड वाटर पिएं या पानी को उबाल कर पिएं। साथ ही हमें अपने खाने का भी बेहद ध्यान रखना चाहिए। ऐसे वेदर में विटामिन सी रिच फूड लें और प्रोटीन से रिच डाइट लें, और मौसमी फलों का भी सेवन करते रहें, और बारिश के मौसम में जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनको ना खाएं, क्योंकि ऐसे मौसम में इन सब चीज़ों में कीड़े वगैरह ज़्यादा रहते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए प्रोटीन रिच डाइट लें, फ्रूट्स खाएं, विटामिन सी के लिए आप आंवला जैसी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दही, छाछ, ये सब चीज़ें भी हमारी हेल्थ के लिए और स्पेशली हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी रहती हैं, और जो अपना पानी है उसका जो कंटेंट है वो प्रॉपर लेते रहें, डिहाइड्रेशन से बचे रहें। और ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगी, साथ ही आप बीमार होने से भी बचेंगे। और श्रोताओं, अपने कार्यक्रम को हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। चलिए अब लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

श्रोताओं, हमारा आज का सवाल ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों में ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स, और अभी 2026 में ही ये हुए हैं स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में 23 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। और भारत ने इन गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, टोटल 39 मेडल्स जीत कर पदक तालिका में इंडिया ने फोर्थ प्लेस अचीव किया है। एंड इन गेम्स में हाई जंप में सिल्वर मेडल भारत के सर्वेश कुमार को मिला है, और उन्होंने ये 2.25 मीटर की ऊंची जंप करके ये मेडल अपने नाम हासिल किया है। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में जो समय है वो बहुत ही लिमिटेड बचा है, तो चलिए अब सुनते हैं आज का अंतिम सॉन्ग।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युववाणी नेहा सिंह के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी कृष्णा भैया और रविंद्र कुमार के साथ।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब भैया बहनों को आपके भैया रघु
2: और आपके भैया कृष्णा की
1: राम।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में।
3: तो देखो कृष्णा भैया, अब ऐसो है कि देख रहे हो मौसम को हाल, कहू कुछ हुई जा रहा हो, कहू बारिश हुई जा रही है, कहू घाम निकल आ रही है, तो धान की फसल कैसी है आपकी?
4: लगू भैया देखो, धान की फसल तो बढ़िया है, लेकिन बस ऊपर को देखते रहते हैं कि भैया थोड़ी बरसात हो जाती है, लेकिन बस बूंदें गिर जाती हैं हल्की फुल्की, लेकिन भैया ढंग से बरसात ना हो पा रही है।
3: अच्छा, अब जा है कि देखो जा में कुछ ना कर सकत, हम तो कल परसों दोनों दिन धान भरे अंजन चलाए के, तो अब जय है कि भैया बरसात होगी तो ज्यादा अच्छा है, ना होगी तो अपने लोगों को तो अब धान पाल नहीं है।
4: पाल नहीं भैया, देखो खेती बाड़ी काम तो ऐसा है जिसमें भैया मेहनत करने हैं और जो अपनों काम है वो हमको करने हैं, समय से करने हैं। अगर बरसात ना हो रही है तो भैया पंपिंग सेट से पानी लगाने हैं, अगर कहूँ घास हो रही है खेतन में धानन में तो उसकी निराई गुड़ाई भी करने हैं, और कहूँ दिखाई पड़ रहा हुआ है कोई रोग बीमारी धान की फसल में तो उसको भी भैया धान की फसल से दूर हटाने हैं।
3: बिल्कुल कृष्णा भैया, और इसीलिए अन्नदाता कहते हैं हम लोगों को, क्योंकि हमारे तो दिन निकलो तो खेत पे और शाम भई तो घर, और जाहे कि खेत में काम ना करेंगे, देखभारी ना करेंगे तो कुछ पैदा ना होएगो, तो बातचीत तो हम करेंगे ही। आज सवाल का पूछ रहे हो
4: भैया? हम तो जय सोच रहे हैं कि आज शायद आप सवाल भूल गए और हमारे किसान भैया बहन सोच रहे हैं कि भैया जी तो दोनों भैया बातें करने लिख रहे लेकिन भैया सवाल तो इन्हें हमारे बीच में रखो ही ना, तो आपको ध्यान आएगा। तो भैया झोला से हम अपने जो सवाल लेके

0: है वो निकाल ले रहे हैं। और जो आज को सवाल लेके आए हैं वो सवाल है, आम के बाग को ईंटों के भट्टे के पास क्यों न लगाना चाहिए?
1: तो जाको उत्तर देखो भैया, हम बतावेंगे कार्यक्रम के आखिर में जैसे रोजाना बताते हैं। और अब बात करें कृष्णा भैया, देखो सरकार भी बड़ी मदद कर रही है कि किसान भैयन की जो स्थिति है वह अच्छी होए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकें।
0: बिल्कुल भैया, इसीलिए जो हमारी सरकार है वो तरह तरह की कल्याणकारी योजनाएं हम किसान भाइयों के लिए, ग्रामीण भैया बहनों के लिए चला रही है। और वो चाह रही है कि जो हमारे किसान साथी हैं, हमारे किसान भैया बहन हैं, उनकी आय दोगुनी हो।
1: जाई क्रम में कहा है कि सरकार जो कृषि यंत्र है ना कृष्णा भैया, उन पे खूब सब्सिडी दे रही है। क्योंकि अब देखो पहले खेती करते और आज की खेती में जो बदलाव हुआ है, वासे उत्पादन बढ़ हुआ है, समय की बचत भई है। और बहुत से आज ऐसे कृषि यंत्र हैं जो 4 घंटा को काम 2 घंटा में कर दे रहे हैं,
0: 2 घंटा में कर दे रहे हैं। लेकिन भैया कुछ जो कृषि यंत्र हैं महंगे हैं, हमारे किसान भैया बहन उनको ना खरीद पाते, तो ऐसे में हमारी जो सरकार है वो मदद कर रही है, उनको खरीदने के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।
1: हाँ, तो हमारे जो भैया हैं वे जाहे की जानकारी लेके, और जाकी जानकारी हमारे भैया इनको कृषि विभाग से मिल सकती है, उद्यान विभाग से मिल सकती है, उनसे जानकारी लेके और किस किस कृषि यंत्र पे कितनी सब्सिडी है, किसों पे 70% है, किसों पे 60% है या किसों पे 40% है, तो बाकी जानकारी करके अब देखो भैया लाभ लेने के लिए घर से तो निकलने पड़ेगा।
0: कतई जवाब सही कह रहे हैं, क्योंकि भैया जब घर से नहीं निकलोगे तो फिर भैया जानकारी आपको कैसे मिलेगी, तो फिर बाकी लाभ आप कैसे ले पाओगे। और कम से कम ज़्यादा दूर ना जा सको तो कम से कम जो अपनों विकास खंड है, ब्लॉक स्तर पे भी एडीओ बैठते हैं एग्रीकल्चर, वहाँ पर भी आप जैसे बीज के बारे में या और बहुत से जो कृषि यंत्र उनके बारे में पूरी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और जानकारी प्राप्त करके आप जो है भरपूर तरीका से लाभ ले सकते हो।
1: तो बिल्कुल हमारे भैया समझ गए होंगे कैसे कृषि सब्सिडी को लाभ लेने हैं, कृषि यंत्रण पर जो सब्सिडी है वाकु लाभ कैसे लेने हैं, कैसे जानकारी प्राप्त करने हैं।
0: और रघु भैया देखो, अपनी जो बातचीत चल रही है वो बातचीत तो अपने भैया बहनों से करेंगे ही, लेकिन अपनी बातचीत को अब यहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम में आए पहुंचे हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर आर एल सागर जी। और उनके साथ में देखो मुस्कुरात में चले आ रहे हैं मिथिलेश भैया, और आपको मालूम है क्योंकि समय हो चलो है हेलो किसान, यानी कि फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान को।
1: बिल्कुल।
0: और आज का जो विषय है वो है एल नीनो की परिस्थितियों में धान की फसल में रोग एवं कीट नियंत्रण, शंकाएं एवं समाधान। तो ज विषय पर जो समाधान करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर साहब, और आपके साथ में भेंट कर रहे हैं भैया मिथिलेश श्रीवास्तव।
2: दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव, और आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का विषय है कि एल नीनो की परिस्थिति में धान की फसल में कौन कौन से रोग होते हैं, कौन से कीड़े लगते हैं, उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। इस विषय पे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए भी हमने व्यवस्था की है। आईवेराई बरेली से हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर आर एल सागर साहब को। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। तो आप वैज्ञानिक हैं और आप सबकी समस्याओं का वो समाधान करेंगे डॉक्टर साहब। तो सबकी समस्याओं का समाधान करें उससे पहले सर एक बार एक इंट्रोडक्टरी कुछ बताइए, कि पहले तो बहुत सारे हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे कि एल नीनो है क्या।
3: आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एल सागर कृषि विज्ञान केंद्र बरेली से आपके बीच में आया हूँ। और जो बात चल रही है एल नीनो, एल नीनो का जो हमारा समुद्री तापमान है वो तापमान में एकदम बढ़ोतरी हुई है, और तापमान में बढ़ोतरी के कारण जो हमारा दक्षिण से पश्चिम की ओर मानसून आ रहा था ना, वो जो है काफी थोड़ा लेट आया। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें या तो अधिक बारिश होगी या कम बारिश होगी, तो कहीं पर सूखे की स्थिति होगी और कहीं बाढ़ की स्थिति होगी। तो जिन एरिया में कम बारिश हुई है तो ऐसी एरिया में आपको कुछ ऐसी फसलों का संकट है जिसमें कम पानी की आवश्यकता आपको पड़े, जैसे ज्वार है, बाजरा है, या दाल वाली फसलें हैं, तिल वाली फसलें हैं, अरहर वाली फसलें हैं, जिनको कि कम पानी की आवश्यकता में भी अच्छा उत्पादन आपको दे सकते हैं। क्योंकि धान ऐसी एरिया में जब कम वर्षा होती है तो धान में पानी की बहुत आवश्यकता होती है।
2: जी बिल्कुल।
3: जब धान में पानी की इतनी आवश्यकता होगी और आपका जो है प्रॉफिट भी आपका कम है, क्योंकि आपको जितना ज्यादा धान में पानी देना पड़ा उतना आपका प्रॉफिट लाभ जो है कम होता जाएगा।
2: बिल्कुल। तो फिर इसी परिस्थितियों में धान की फसल में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे, और कई सारे श्रोता भी हमारे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। कौन श्रोता

0: है हमारे साथ इस समय, अपना नाम बताइए।
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय हीरामन बाबा रेडियो श्रोता संघ तहसील ईसागढ़ जिला अशोक नगर एमपी से विनोद नारायण कुशवाहा बोल रहा था सर।
0: जी विनोद नारायण कुशवाहा जी, बहुत दूर से आपने कॉल किया है, अपना सवाल पूछिए।
1: सर जी हमें जानना चाह रहे थे, जैसे कि धान में पानी तो भरा रहता है, सर जो उसके पौधे कुछ पीले पड़ने लगते हैं और पत्ते सूखने लगते हैं, सर उसका मुख्य कारण क्या रहता है?
0: जी
2: हाँ, एक तो आपके धान में लगातार पानी नहीं बना, पानी बनने से क्या हुआ है कि आपके जो शीत ब्लाइट होती है ना बीमारी, जो आपका धान का पौधा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर आपने देखा होगा जड़ के आसपास काले रंग के धब्बे ब्राउन कलर के आ जाते हैं ना, तो ये जिन खेतों में ज्यादा पानी भरा रहता है तो ये वहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको यदि बीज उपचार शुरू में किया होता ना आपने, तब ये बीमारी कम आने की संभावना है। और बीज उपचार के लिए इसमें 2 ग्राम अरविंदाजिम, ठीक ना, प्रति केजी बीज के हिसाब से यदि आपने उपचार कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है। और जहाँ तक पत्तियां पीली पड़ने का सवाल है, तो ये पत्तियां 2 तरीके से पीली पड़ती हैं। एक तो आपके खेत में यदि जिंक की डिफिशियंसी है तो ऊपर वाली पत्तियां आपकी पीली पड़ती हैं, ठीक है। और यदि नाइट्रोजन की कमी है तो जो पौधे के नीचे की सबसे पहले वाली पत्ती होती है ना, वो पत्तियां पीली पड़ती है। तो आपको ये डिफरेंस करना है कि ये जिंक की कमी है या ये नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी में पौधे की नीचे की पत्तियां पीली पड़ती हैं और जो जिंक की कमी से पौधे के ऊपर की पत्तियां पीली पड़ती हैं।
1: जी एक बात और कहना चाहेंगे, आकाशवाणी बरेली हमको घर बैठे इतनी ढेर सारी अच्छी अच्छी जानकारियां प्रदान करती है, उसके लिए पूरी टीम को दिल से धन्यवाद।
0: जी जी आप सबका भी धन्यवाद, आपका जो रेडियो लिसनर क्लब है उसको धन्यवाद, और तमाम श्रोताओं से ही हम हैं, आप सब सुनते हैं और लगातार संपर्क में भी रहते हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। तो कई सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम बता दें तमाम श्रोताओं को कि इस समय जो है किसान वाणी कार्यक्रम में हेलो किसान का सेगमेंट चल रहा है, जिसमें हम एक विषय पे आप सभी श्रोताओं से आपकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर आरएल सागर साहब हैं जो वैज्ञानिक हैं IVRI बरेली में, और हम बात करें धान की फसलों में जो रोग लगते हैं, तो इस समय सर कौन कौन से रोग इस समय लग सकते हैं, उसके प्रति जागरूक करें। हाँ,
2: धान की फसल में प्रमुख रोग जो है जिसमें कि सबसे पहला रोग है ब्लास्ट। ये ब्लास्ट एक्चुअली में 4 प्रकार की होती है।
0: अच्छा।
2: एक तो लीप ब्लास्ट होती है, एक नोड ब्लास्ट होती है। जैसे लीप ब्लास्ट है तो लीप के ऊपर आपके नाव के आकार के उस पर डब्बे बन जाते हैं।
0: अच्छा।
2: तो इसमें ब्राउन कलर के नाव के शेप के आधार के इसमें डब्बे बने, तो इसका मतलब ये लीप ब्लास्ट है। फिर एक आती है इसके ऊपर नोड ब्लास्ट, जहाँ से पौधे में गांठ बनना चालू होती है ना, तो गांठों के आसपास का एरिया काला होने लगता है।
0: अच्छा।
2: तो उसको हम नोड ब्लास्ट कहते हैं। फिर एक आती है नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट मतलब जहाँ से बाल निकलना चालू होती है, उस एरिया में बाल के नीचे का जस्ट हिस्सा वो काला पड़ता है, और काला पड़ने से आपके पौधे की बाल जो है नीचे गिर जाएगी, झुक जाएगी। ये और एक होता है काला ब्लास्ट। तो काला ब्लास्ट क्या होता है, जैसे स्टेम है, स्टेम के साथ में जो पत्ती आपकी निकलती है तो वही काला बोलते हैं।
0: जी जी जी एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं।
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर बोल रहे हैं।
0: जी मुन्ना सिंह जी, आज विषय है धान की फसल पे है, उसमें कोई समस्या हो तो पूछे। हमारे साथ डॉक्टर आरएल सागर साहब हैं, वैज्ञानिक हैं IVRI बरेली में।
1: धान की फसल में कहीं कहीं दीमक का प्रकोप दिखाई देता है।
0: दीमक का प्रकोप,
2: तो आपका दीमक का प्रकोप के लिए ना शुरू में ही आपको उपचार करना चाहिए था ना, क्लोरीपाइरीफॉस वाली दवा से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये चुनाव जितने भी कीड़े मकोड़े जो आते हैं ना, जब भी आप बीज लो कोई भी, तो उसमें FIR होता है। FIR एफ मीन्स फंजीसाइड, I मीन्स इंसेक्टीसाइड और R मीन्स राइजोबियम। यदि आपने अपने बीज को शुरू में ही फफूंदनाशक से और कीटनाशक से और राइजोबियम के जो बैक्टीरिया उनसे यदि ट्रीट कर लिया होता तो ये प्रॉब्लम आगे चल के आपको नहीं आती।
0: जी तो आपने किया है ये ट्रीटमेंट मुन्ना सिंह जी?
1: मक्का के अवशेष में जाती
0: है। अच्छा अच्छा।
2: तो जब आपने मक्का के अवशेष आपने खेतों में डाल दिए ना, तो मक्का के अवशेष जब डालेंगे उसमें दीमक का प्रकोप होने की ज्यादा संभावना रहती है। तो आपको ये ग्रेनुल्स फार्म में जो ना फिप्रोनिल दवाई आती है वो 0.3% और 0.6%, ये जो 0.3% है उसकी आपको 10 किलो मात्रा प्रति एकड़ यूज करनी है, और ये जो 0.6 है तो उसकी आपको 5 से 6 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ शुरू में बुआई से पहले यदि आप कर लिए होते तो ये समस्या का समाधान आपका हो जाता।
0: जी मुन्ना।

0: सिंह जी, आपका कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खेती के बारे में मुझे जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया। एक देसी उपाय भी किसानों में प्रचलित है सर, कि कंडे को खेतों में कई जगह गाड़ दिया जाए और वहाँ सब दीमक लग जाएंगे, फिर उसको उठा के नष्ट कर दिया जाए।
2: हाँ, ये इंडिजीनियस टेक्निक है एक्चुअली में, जो जिसको देहाती नुस्खा बोलते हैं।
0: हाँ, तो ये भी कारगर है,
2: कारगर फार्मर्स बोलते हैं। हाँ, ऐसा है। कंडे में बहुत ज्यादा दीमक पकड़ती जाए, क्योंकि उनका भोजन वहाँ से मिला ना।
0: हाँ,
2: तो इसलिए
0: तो खेत के जितने दीमक होंगे वहीं जाके लग जाएंगे और फिर उनको नष्ट कर दिया काफी मात्रा में।
2: और दीमक जब भी लगता है जब खेतों में पानी यदि कम होगा, पानी नहीं होगा, खाली नमी होगी, दीमक तो कभी भी भरे खेत में दीमक का प्रकोप नहीं होगा। यदि खेत में पानी आपने 2-3 सेंटीमीटर मान लीजिए लंबे समय तक रखा तो दीमक का प्रकोप नहीं होगा।
0: तो मतलब खेतों में पानी लबालब भर के रखें इस समय?
2: नहीं, हाँ इस समय, लेकिन इतना नहीं, बीच बीच में खाली भी होना चाहिए। वो प्रकाश संश्लेषण के लिए ना, सॉइल में ऑक्सीजन का भी आना जाना होना चाहिए ना।
0: तो
2: बीच बीच में पानी में थोड़ा ड्राई होना चाहिए, फिर भरना चाहिए, फिर ड्राई होना चाहिए, इस तरीके से तो दीमक कंट्रोल हो सकता है।
0: और कौन कौन से रोग जैसे आप पहले बताई भी रहे थे कि तमाम रोग हैं,
2: तो मैं अभी दीमक की बात कर रहा हूं। तो दीमक का एक जैविक नियंत्रण के लिए ब्यूवेरिया बेसियाना,
0: अच्छा,
2: आप उसको 2-2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज करने का तरीका ये है कि जब भी आप खेत में अंतिम बार जुताई करते हैं ना, तो उस समय पूरे खेत में ब्यूवेरिया बेसियाना का छिड़काव, ये जैविक है। यदि आप कीटनाशक नहीं करना चाहते तो जैविक की तरफ जा सकते हैं।
0: जी जी, और जैसे एक दीमक तो हो गया, और भी कुछ तरह के कीड़े हैं जिनका?
2: नहीं, कीड़े तो अब जैसे आपका दीमक हो गया, इसके बाद स्टेम बोरर आता है, जिसे कि हम धान का तना छेदक बोलते हैं। तो ये एक्चुअली में जब किसी खेत में आ जाता है तो ये बहुत नुकसान करता है, कम से कम 40-50% तक इससे नुकसान हो जाता है।
0: जी जी,
2: तो ये 2 स्टेज पर आता है, ये धान का तना छेदक 2 स्टेज पर, जब आपकी फसल 30-35 दिन की होती है, जब कल्ले बनना चालू होते हैं ना, उस समय आपका ये जो है तना छेदक का प्रकोप होता है। इसमें क्या होता है, जो मेन तना होता है धान का, उसके अंदर रूट के थ्रू इंसेक्ट उसके अंदर घुसता है और वो उसका मेन स्टेम को काट देता है और वो ऊपर जाके सूख जाता है। जैसे ही आप उसको निकालेंगे वो हाथ में निकल के आ जाता है, ठीक है। एक आता है जब आपकी धान में बाल की अवस्था आने वाली होती है, जैसे ही वो बाल की अवस्था पर आती है फिर स्टेम बोरर आपका अटैक करता है। बाल की अवस्था मतलब 60-65 दिन के आसपास, तो उसको डेड आउट बोलते हैं। तो जो मेन पोर्शन जो बाल वाला है ना, वो उसके मेन स्टेम को अंदर से काट देता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम होती है, जैसे भोजन का आदान प्रदान होता है ना, उसको कट कर देता है और आपका बाल बिल्कुल सफेद कलर का आएगा, जिसमें कोई भी दाना वगैरह नहीं भरेगा। इसका मतलब आपका वहाँ पर हानि होगी
0: पूरी।
2: तो इसके उपचार के लिए आपको दवाई, आजकल मार्केट में बहुत सारी दवाई है, यदि दानेदार के रूप में, जैसे आपको हमने बताया था कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, इसको जब हम यूज करते हैं 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, यदि शुरू में जैसे हमने पौध लगाई, पौध लगाने से पहले भी हम यूज कर सकते हैं और उसके बाद भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपको दिखा कि आपके खेत में प्रकोप होने वाला है। लेकिन जो भी दवाई डालेंगे उसमें आपके खेत में प्रॉपर नमी होना चाहिए,
0: प्रॉपर नमी
2: तो इसका कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा आपका क्लोरेंटाइन प्रोल 18.5% में आता है, तो उसकी 60 ml मात्रा 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे के रूप में 60 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है,
0: पर्याप्त।
2: उसका आप स्प्रे करेंगे तो उससे आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी।
0: जी, हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं फोन लाइन पे। जी, अपना नाम बताएं।
3: जी, जमुना प्रसाद बोल रहे हैं साहब।
0: जी जमुना प्रसाद जी, कौन से गांव से बोल रहे हैं?
3: जी भोजीपुरा से।
0: हाँ अच्छा, भोजीपुरा। तो बताइए क्या सवाल है आपका धान की फसल के बारे में?
3: धान की फसल के ये है कि साहब अभी बारिश जैसे अभी तो हो रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले नहीं हो रही थी, तो थोड़ा सा हमें लगा कि खराब हो रही है, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं है? तो पानी हम वैसे लगा दें या फिर अभी बारिश का और इंतजार कर लें? बारिश बहुत अच्छी तो नहीं हुई है अभी।
2: हाँ, बारिश तो अच्छी नहीं हुई। यदि आपको ऐसा मालूम पड़ा है कि आपके खेत में पत्तियां मुरझा रही हैं, तो आप पानी दे सकते हैं, ठीक है। यदि पत्तियां हरी भरी हैं, थोड़ा भी मॉइस्चर है, तो पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, एक्चुअली जब मानसून साफ रहता है तो उसमें घासें वगैरह बहुत ज्यादा आती हैं, ठीक है ना, तो आप उस समय यदि पानी यदि मुरझा के पौधा मुरने लगे, देखने दोपहर के टाइम में जाइए तो उसमें पत्तियां यदि मुड़के नीचे आ रही है, तो पानी देने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है, तब तक बारिश हो सकती है।
0: जी जमुना प्रसाद जी, और कोई सवाल आपका?
3: नहीं सर, नहीं।
0: जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि

0: आप सभी श्रोता जो सर ने उपाय बताए हैं उससे लाभान्वित होंगे, और जो एल नीनो की परिस्थितियां हैं। जी
1: धान में एक बीमारी आती है स्मट,
0: स्मट, अच्छा।
1: जो कि पिछले साल जिसको कि हम हल्दी रोग बोलते हैं, तो जब आपके धान में बाल आती है ना, तो उसमें ब्राउन कलर के ना बूंद टाइप के दाना के ऊपर वो बूंद टाइप का हो जाता है, और वो धीमे धीमे बिल्कुल एकदम हल्दी के कलर का हो जाता है।
0: जी,
1: ये बीमारी लास्ट ईयर काफी हद तक आई, काफी खेतों में देखी, और स्पेशली जो पूसा बासमती, जो बासमती प्रजातियां हैं ये उसमें ज्यादा है। एक बीमारी पिछले साल और आई थी धान के में, डबल जड़।
0: अच्छा,
1: तो एक्चुअल में क्या हुआ, डबल जड़ का मतलब ये होता है कि या तो आपके खेत में लगातार पानी भरा रहता है और जो रूट होती है वो नीचे से गल जाती है, और उसके बाद जो पानी में पोषण रहता है वहां से जो है ऑक्सीजन मिलना चालू होती है, तो वो डबल रूट का ये समस्या आती है। यदि आपका पौधा हरा भरा तो इससे डरने की जरूरत नहीं, इसके लिए जो ये बीज उपचार ही एक तरीका था, उसी से ये सॉल्व होता है।
0: जी, बीज उपचार की जो बात है तो एक बार फिर से, हालांकि हम लोग कार्यक्रम में बताते ही रहते हैं, लेकिन फिर से हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में भी आप बता दें कि किस तरह से बीज उपचार करना बहुत आवश्यक है।
1: बीज उपचार दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो जैविक है, ठीक है। जैविक में आप ट्राइकोडर्मा के माध्यम से बीज उपचार, 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा का जो है आप यूज करें। बीज बोने से पहले जैसे ही आप पॉट डालते ना, तो पॉट डालने के बाद इसका 10 ग्राम के हिसाब से, जैसे 8 केजी आपका बीज आए तो 80 ग्राम आप एक उसमें जिसमें पानी रखा है उसमें घोल लें और उसके अंदर बीज को डाल दें।
0: जी,
1: इसके साथ साथ आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड जैसे एमडिया क्लोरोप्रिड है, तो उसको 1 ml के हिसाब से, 10 लीटर है तो 10 ml डाल दीजिए, तो वहां पर आपका ट्रीटमेंट इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का दोनों का हो जाएगा।
0: जी,
1: हाँ। लेकिन यहाँ पर हम ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हैं, तो हमको इंसेक्टिसाइड फिर यूज नहीं करना,
0: नहीं करना, दोनों में से एक ही यूज करना,
1: एक ही यूज करना।
0: जी, तो इस तरह से बीज उपचार अगर आपने कर लिया तो जो भी रोग पनप रहे हैं वो रोग ही नहीं पनपेंगे। जी,
1: और धान में इस समय एक बीमारी आती है पत्ती लपेटक कीट।
0: अच्छा,
1: जो पत्ती को फोल्ड करके और उसका जो भी ग्रीन पार्ट होता है उस पार्ट को धीमे धीमे चाट करके पत्ती को सुखा देता है, पीला कर देता है, तो इसका भी उपचार करना बहुत जरूरत है।
0: जी,
1: तो इसके लिए क्लोरेंटानिल प्रोल को भी जो हम 60 ml मात्रा यूज कर सकते हैं, या जो है
0: ये दवा का नाम फिर से बता दीजिएगा हमारे श्रोताओं,
1: ये क्लोरेंटानिल प्रोल।
0: जी, ये नोट कर लीजिए आप।
1: हाँ, और ये दवाई आजकल काफी प्रचलन में, स्टेम बोरर के लिए, टॉप बोरर या सूट बोरर के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, और इसको 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। ये दानेदार और लिक्विड में दोनों में आती है। दानेदार कब अप्लाई की जाती है, जब आप खेत में पौधरोपण करते हैं, और उसके बाद यदि ये कीड़े की संभावना है, तो ये लिक्विड वाली जो दवाई हमने क्लोरेंटानिल प्रोल बताई, इसकी 60 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए, और इसमें 150-200 लीटर पानी में मिला करके आपको प्रयोग कर देनी चाहिए।
0: और कोई अगर सावधानी अगर आप बताना चाहें, खास तौर पे इस समय मानसून चल रहा है और धान की फसल में, और एल नीनो की जो बात उठ रही है, एल नीनो के समय में कैसे करना है?
1: एल नीनो का प्रभाव एक्चुअली में जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है वातावरण में, यदि बारिश नहीं हो रही तो आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी।
0: जी जी,
1: तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से बीमारी और कीड़े मकोड़ों का अटैक ज्यादा होता है।
0: जी जी,
1: तो किसान भाइयों को एक तो यह कि जो भी उनका धान का खेत है उस खेत में जो जंगली ग्रास वगैरह दिए हैं उनको हटा दें, क्योंकि जंगली ग्रास यदि बाउंड्री पर भी, मेड़ों पर भी है या आपके खेत के अंदर है, वो कीड़े मकोड़े का होस्ट होता है।
0: जी जी,
1: तो उससे कीड़े आपके खेत में ज्यादा है, तो आप अपने खेत को हमेशा साफ रखें, स्वच्छ रखें, उनमें जो भी जंगली ग्रास है उनको खरपतवार नाशक दवाइयों से या हाथ के द्वारा, यदि संभव हो सके तो हाथ के द्वारा निकाल करके, तो उसमें ऐसी स्थिति में आपके खेत में आपकी फसल में कीड़े मकोड़ों का थोड़ा प्रकोप कम होगा।
0: जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम श्रोता और जिन्होंने कॉल भी किया है और जो कॉल नहीं कर पाए हैं वो भी जो आपने तमाम बातें बताई उससे जरूर लाभान्वित होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आपकी रह गई हो, आपके मन में हो कि ये समस्या हम पूछ सकते थे, तो आप हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आईवीआर बरेली है तो आसपास के जितने किसान हैं वहाँ जाके संपर्क कर सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा।
1: हाँ, एक मैं इस संबंध में, ये जो हर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि सारथी पोर्टल है, किसानों की जो भी समस्या है वो कृषि सारथी पोर्टल पर एक्सपर्ट हर विषय के उपलब्ध रहते हैं, आप अपनी समस्या वहाँ पर, टेलीफोन नंबर भी है, उनके पर्सनल नंबर भी दिए गए, आप कभी भी 24 आवर्स कभी भी पहुंच

0: सकते हैं, तो आपका समाधान वहां से कृषि सारथी के पोर्टल के माध्यम से जी आपको दिया जाएगा।
1: जी, तो कृषि सारथी वेबसाइट भी है, उस पर जाके तमाम आप अगर कुछ जानकारी चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। दूसरे हमारा किसानवाणी में जो हेलो किसान है उस पर भी आप हर मंगलवार को कॉल करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। तो डॉक्टर आर एल सागर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे तमाम श्रोताओं को, किसान बहनों भाइयों की समस्याओं का आपने समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अबे हमारे भैया बहन सुन रहे कार्यक्रम हेलो किसान, जिसको विषय हो अल नीनो की परिस्थितियों में धान की फसल में रोग एवं कीट नियंत्रण। जब विषय पे किसान भैयन की समस्याओं को समाधान कर रहे डॉक्टर आर एल सागर और आपसे बातचीत कर रहे भैया मिथिलेश श्रीवास्तव।
3: और रघु भैया देखो अब समय है चलो हल्के हल्के मनोरंजन को।
2: बिल्कुल,
3: तो अपने भैया बहनों को सुनवा रहे हैं जो प्यारो सो सावन लोकगीत।

0: तो लघु भैया देखो, अभी हम सब ने मिलकर सुनो जो प्यारो सो सावन लोक गीत, पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, जिसको सोड़दा हो वंदना आवाज पे ही और अंजलि जैन ने। और अब भैया बहनों को अपने बता दें मौसम को हाल, तो कल के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान है कि कल दिन में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त करी गई है और आसमान अधिकांश से समय बादलों से ढकुर आएगा और कल अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने को अनुमान लगाओ गो है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सलाह भी दी गई है कि बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखें और कई हिस्सों में बारिश और गरज चमक की संभावना जताई गई है।
1: तो कृष्ण भैया, जो तो हो कल के मौसम को पूर्वानुमान, अब बता दो वह सवाल को जवाब जो कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो।
0: बिल्कुल भैया, और सवाल हो आम के बाग को ईंटों के भट्टे के पास क्यों ना लगाना चाहिए, तो हम अपने भैया बहनों को बता दें। भैया बहनों ने भी जा सवाल पर मंथन करो हुए जाको जवाब है, ईंटों के भट्टे से जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि पेड़ों और फलों को बर्बाद कर देते हैं और

0: फलों में अधिकांशतर ब्लैक टिप इन्हीं जो कोयलिया रोग होते हैं वो हो जाते हैं। तो इसलिए जो आम को बाग है वाको ईंटों के भट्टे के पास ना लगाना चाहिए।
1: और भैया आज के कार्यक्रम की नसीहत का है?
0: कार्यक्रम से हम सबको यह नसीहत मिली कि किसान भाई अपनी फसलों को कीट और बीमारियों से बचावें ताकि फसलों से अच्छे उत्पादन लेने में हम सफल हो सकें।
1: तो भैया अब आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग अपने भैया रघु
0: और अपने भैया कृष्णा को देव अनुमति। भैया बहनों
1: राम राम।
2: क्या कर रहा है? इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे पीछू का।
3: उतला बोल ले।
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाने?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर अब तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम किसानवाड़ी। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत में सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर आप सबको आपके भैया कृष्णा
1: और भैया रघु की राम राम। और सुना वो कृष्णा भैया, आप बात कर रहे हैं हम लोग कि हमारे भैया तम्बाकू को सेवन ना करें, और आपने देखी है गांव में तो हमारे भैया खेत पे जाते हैं तो तम्बाकू मलक पे ही चले जाते हैं।
0: कहते भैया सही कह रहे हो, और हमने तो जातक देखी है कि खेत पर जो जान की बात कर रहे हो ना आप, और कहूँ जैसे धान की फसल खेतन में खड़ी है, कहूँ स्प्रे को काम करने पड़ रहा है या कोई और काम करना है, तो भैया उन्हें जैसी मौका थोड़ा तो लगो और बस निकाली पुड़िया और हाथ पर अपने रगड़ रहे हैं
1: भाई। और जो इतो गलत है भैया कि देखो वे कीटनाशक हैं और उनसे कितनी नुकसान हो सकते हैं और जान तक चली जा सकते है, तो भैया जब देखो पहली बात तो जाए कि भैया स्प्रे जो कर रहे हो भाई, स्प्रे जब तुम कर रहे हो तो बाई में बहुत पाबंदी है कि तुम्हें देखो ग्लव्स भी पहनने हैं, मास्क भी लगाने हैं, और जब स्प्रे कर रहे हो और बाई समय तम्बाकू को सेवन भी कर रहे हो तो जो तो बहुत गलत बात है। वैसे तो तम्बाकू तो कतई जिंदगी के लिए बहुत खराब चीज है,
0: खराब चीज है। और भैया आपने देखी हुई जो ऐसी स्थिति होती है कि भैया स्प्रे खेतन में कर रहे हो उस समय अपना तम्बाकू को इस्तेमाल करो, और भैया जो पॉइजन जो हम अपने खेतन में लगा रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर भी चले जाते हैं, और कभी कभी भैया अनहोनी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। तो ऐसे बिल्कुल ना करने, और करने तो जाओ ना है कि जो भैया आप तम्बाकू खा रहे हो वो मालूम कितने नुकसानदायक है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। और दूसरी बात जो है रघु भैया कि जो पैसा है वो हमारा खर्च हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य तो खराब हो रहा है, तो फिर ऐसी चीज को खाने से क्या फायदा।
1: और बड़ी बात तो जा है कि कंपनी वह पैकेट पे लिख कर देती है कि तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर भी हो सकता है।
0: कते भैया सही कह रहे हो, और पैकेट पे तो बड़ो सो एक मुंह छपो हुए होते, इसमें बड़े भैया गाल कटे हुए से होते हैं और छाले पड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भैया खान भाई ना मानते हैं और खूब हाथ पर रगड़ रगड़ के भैया खाते निकाली पैकेट में से और मुंह में भैया डाल ली।
1: तो हमारे तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से जय कहनू है कृष्णा भैया कि जो भी भैया हमारे तम्बाकू को सेवन कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं।

0: रम पी रहे हैं, हुक्का या किसी तरीका को नशा कर रहे हैं, वो नशा ना करें। बासे अच्छो है कि ताजे अच्छे मौसमी फल खाएं, अच्छो भोजन लें, अच्छो आहार लें, क्योंकि खेतियों करने हैं हमें तो बाहू में भैया ताकत की जरूरत है, और नशा करके अपने शरीर को खोखलो ना करें,
1: बिल्कुल ना करें। और देखो कहते हैं कि नशा जो है नाश की जड़ है, क्योंकि हमको पता ना लगती, लेकिन नशा जो होते हैं वो हल्के धीमे धीमे जहर होते हैं और हमारे शरीर में पनप जाते हैं, और उसके बाद हमें एहसास ना होता, फिर कभी ना कभी जाकर फिर भैया हमारे वो नाश की जो स्थिति है वो आ जाती है। तो इसके प्रति हमें सतर्क रहने हैं, अपने जो बच्चा है उनकी तरफ हमें ध्यान रखने, भाई जो हमारे बालक हैं उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से कराने हैं, और जो हमारे घर में पत्नी हैं और जो बालक बच्चे हैं वो आपके इंतजार में रहते हैं कि भाई हमारे पिताजी ऐसे करेंगे, और आप भैया तम्बाकू की चुटकी खा रहे हो या कोई और नशा मतलब कर रहे हो, तो आपको घर जो है एक समय पर जाकर बर्बाद हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो भैया कतई तम्बाकू को सेवन कतई ना करें।

0: और देखो रघु भैया जो अपने बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति, कि भैया स्वास्थ्य के प्रति हमें सचेत रहने हैं, और जो नशीले पदार्थ हैं, तंबाकू होए, बीड़ी होए, गुटखा होए, शराब होए, इनको सेवन बिल्कुल हमें ना करने हैं। और अपने कोई ना कोई ऐसा रोजगार अपना लें जिससे कि भैया हम रोजगार को करके जो हमारे बालक बच्चे हैं वो भी अपनी तरक्की करें, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से हो जाए। और आपको मालूम है कि भैया जो हमारी माताएं बहनें अब तो वो भी हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं और हमारे हर काम में वो हमारा सहयोग कर रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जहाँ तक रोजगार की बात करें तो जो सरकार है, हमारी सरकार ने भी बहुत सारी यानी ढेर सारी योजनाएं हम किसान भाइयों के लिए, भैया बहनों के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। तो बहुत सारी जो योजनाएं हैं वे महिलाओं के लिए कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें जो हमारी माताएं बहनें हैं अपना स्वरोजगार करके अपने बच्चन की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपना जीवन है वो अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। तो इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं श्रीमती अभिलाषा, और वार्ता को विषय है महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज इस विशेष वार्ता में हम चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं विषय पर। साथियों, आज की महिला केवल घर की जिम्मेदारियां ही नहीं निभा रही बल्कि शिक्षा, व्यापार, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में स्वरोजगार एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है जिनके माध्यम से वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार की आय बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर बचत कर और बैंक से ऋण लेकर छोटे छोटे व्यवसाय चला रही हैं, जैसे अचार, पापड़, मसाले, अगरबत्ती, सिलाई कढ़ाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा हस्तशिल्प जैसे कार्य। इन समूह के माध्यम से महिलाओं को एक प्रशिक्षण, ऋण और विपणन की सुविधा भी मिलती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को संगठित करके स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इससे महिलाएं छोटे उद्योग स्थापित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी बहुत उपयोगी है। इस योजना के अंतर्गत बिना बड़ी गारंटी के छोटे व्यवसायों के लिए ऋण दिया जाता है। यदि कोई महिला ब्यूटी पार्लर, सिलाई सेंटर, रेडीमेड कपड़ों की दुकान, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट या अन्य कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो वह इस योजना का लाभ उठा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से भी महिलाएं अपना उद्योग स्थापित कर सकती हैं। इस योजना में सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है जिससे व्यवसाय शुरू करने का खर्चा कम हो जाता है। ग्रामीण महिलाओं के लिए कृषि

0: आधारित स्वरोजगार भी एक बेहतर विकल्प है, जैसे सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती, औषधीय पौधों की खेती, मशरूम उत्पादन, जैविक खेती, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन तथा बकरी पालन जैसे व्यवसाय कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त की जा सकती है। आज डिजिटल युग में महिलाएं घर बैठे भी रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। ऑनलाइन उत्पाद बेचने, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करने, सिलाई कढ़ाई, हस्तशिल्प, घरेलू खाद्य पदार्थ, पेंटिंग को इंटरनेट के माध्यम से देश भर के ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। विभिन्न विभागों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाते हैं। इनमें सिलाई, फैशन, डिजाइनिंग, कंप्यूटर, ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प तथा अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। प्रिय श्रोताओं, किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने केवल योजनाओं का लाभ लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मेहनत, ईमानदारी, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार तथा समय पर कार्य करना भी आवश्यक है। यदि व्यवसाय छोटा हो तो भी उसे पूर्ण लगन और विश्वास के साथ करें। धीरे धीरे वही छोटा व्यवसाय बड़ी सफलता का रूप ले सकता है। आज देश भर में अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत छोटे स्तर से शुरू किया और आज वे कई लोगों को रोजगार दे रही। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि सही जानकारी, उचित प्रशिक्षण और दृढ़ संकल्प हो तो सफलता अवश्य मिलती है। यदि आपके गांव या क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं तो उनसे अवश्य जुड़ें। अपने नजदीकी बैंक, ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय, जिला उद्योग केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर आप भी आत्मनिर्भर बन सकते। अंत में ये बस यही कहना चाहूँ कि महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना केवल उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं तब परिवार की आय बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा बेहतर होती है। हम सभी महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।
1: अबे हमारे भैया सुन रहे वार्ता, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती अभिलाषा। और देखो कृष्णा भैया, अब बहुत से भैया ने हमें कमेंट भेजे हैं और लोकगीत सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहलो लोकगीत हमें मिलू है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति की।
2: और जो फरमाइश हमको भेजी है दूने नगर बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: और हमें फरमाइश मिली है ग्राम सरोदी अंगदपुर तहसील मीरगंज जिला बरेली से हिमांशु वर्मा, कांता प्रसाद, भूपेंद्र सिंह, मनोज, प्रवेश, सचिन, अरुण, मनोज, माताजी रुक्मणी।
2: और आप हैं राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, प्रदीप मिश्रा, सविता देवी, सत्यम मिश्रा, शीतल, शिवम मिश्रा और इनके परिवार के सदस्य ग्राम बपोस्ट गोठा खंडुआ से।
1: ग्राम सविता तहसील जेबर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास से अमलेश कुमार, भूपेंद्र सिंह, मनोज और छोटू।
2: और आप हैं करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी। तो आप सबकी फरमाइश पे हम आपको सुनवाते हैं जो प्यारो सो सावन लोकगीत।

0: और लघु भैया देखो आप समय बिल्कुल ना आए कि हम अपने भैया बहनों से कोई और बात करें, तो अगले कार्यक्रम में नई नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात हुई। तब तक के लिए अपने भैया कृष्णा
1: और अपने भैया रघु को दो अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत रघु भैया और कृष्ण भैया के साथ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर,
1: 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
2: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com।
0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बस कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कहाँ है?
4: जॉब पर हूँ।
3: बस अभी ऑफिस पहुँचा हूँ।
5: ऑफिस में
3: मेरा भी ऑफर लेटर आ गया है और 10 दिन में ज्वाइनिंग है।
5: अरे वाह, फिर तो तुम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़ो।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी।
5: भारत सरकार की इस योजना से पहली जॉब पाने वाले एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी के साथ 15,000 तक का इंसेंटिव 2 किश्तों में मिलेगा।
3: मतलब नौकरी, सिक्योर फ्यूचर और बचत तीनों एक साथ।
6: योजना की अधिक जानकारी के लिए pmvbry.labor.gov.in पर विजिट करें।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,019,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 59,019,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240,97,00,000 रुपए की मदद अंशदान के रूप में मिलेगी। एक रिपोर्ट।
8: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कहा कि इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399,50,00,000 रुपए तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620,04,00,000 रुपए है। खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक में मुख्यतः भारी एवं मध्यम उद्योगों के लिए 22,107,88,00,000 रुपए, ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942,73,00,000 रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 74,022,27,00,000 रुपए और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं समाज कल्याण के लिए 1,655 करोड़ रुपए, महिला कल्याण विभाग के लिए 1,094 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
7: अनुपूरक बजट में प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन को भरोसा दिलाया कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह मजबूत है। श्री खन्ना ने कहा कि ये बजट प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
9: सप्लीमेंट्री बजट का जो नॉर्म्स है, विशेष रूप से जो हमारा ऑनगोइंग स्कीम्स है उसको पूरा करना और जहां पर आवश्यकता पड़े जो जनहित के काम जरूरी हो उनको करवाना, इसलिए मैं समझता हूं कि ये बजट निश्चित रूप से हमारे विकास की गति को आगे बढ़ाएगा।
7: उधर सदन में अयोध्या मंदिर चढ़ावा मामले, पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा और वेल में आकर नारेबाजी की।

0: वहीं मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया, जबकि समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में उर्वरक व बीज का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि खाद व बीज किसानों को समय से नहीं मिल पा रहा है। सपा सदस्य डॉक्टर मान सिंह यादव ने विगत 3 वर्षों में प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के लिए आवंटित बजट पर प्रश्न पूछा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले पर समाजवादी पार्टी के हंगामे पर मीडिया से बातचीत में कहा कि ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है बल्कि अलोकतांत्रिक है, सदन नियमों और परंपराओं से चलता है।
1: अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया।
0: ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक आज लखनऊ में संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने के साथ संपन्न हुई। ये बयान ब्रिक्स सदस्य देशों में सांख्यिकीय ढांचे को अधिक मजबूत, पारदर्शी और नीति प्रासंगिक आधिकारिक आंकड़ों के लिए आधार तैयार करता है। बैठक के दूसरे दिन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया ने आधिकारिक आंकड़ों, क्षमता निर्माण और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञान के आदान प्रदान, तकनीकी और पद्धतिगत प्रगति, मानव संसाधन विकास, AI, मेटा डेटा मानकीकरण और ओपन डेटा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक प्रदान करता है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें ब्रिक्स के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता, शिक्षाविद, थिंक टैंक, नागरिक समाज संगठन और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल थे। प्रदेश सरकार ने आज राज्य के 13 IAS अफसरों का स्थानांतरण किया है। इनमें 4 मंडलायुक्त भी शामिल हैं। इंद्र विक्रम सिंह को गोरखपुर मंडल का नया आयुक्त बनाया गया है। प्रबंध निदेशक PCDF वैभव श्रीवास्तव को बस्ती का मंडलायुक्त, शंभू कुमार को प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से हटाकर बरेली का मंडलायुक्त और डॉक्टर लोकेश एम को प्रयागराज मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी पहुंचे। श्री शेखावत ने यूनेस्को द्वारा सारनाथ को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के पश्चात सारनाथ में धार्मिक स्तूप सहित पुरातात्विक खंडहरों का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे पर्यटन, संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया आयाम मिलेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह उपलब्धि सारनाथ के संरक्षण, संवर्धन और वैश्विक स्तर पर उसके प्रचार प्रसार को नई गति देगी तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व पटल पर और अधिक प्रतिष्ठा दिलाएगी।
2: ये सारनाथ का ये मॉन्यूमेंट इनक्रिप्ट होने के बाद में निश्चित ही यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में बहुत बड़ी अभिवृद्धि करेगा। सारनाथ से निकल करके जो संदेश भारत के संदेश के रूप में, भगवान बुद्ध के संदेश के रूप में, धर्म चक्र के प्रवर्तन के साथ में जो संदेश यहाँ से निकला, इस संदेश ने दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का, बहुत बड़ी आबादी के जीवन को अवलंबन दिया है।
0: केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने इसके पूर्व वाराणसी के श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने मेरठ में एक प्रेस वार्ता में कहा कि एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि से किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन गन्ना, मक्का और धान उत्पादक किसानों के लिए फायदेमंद है। राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर, शामली सहित प्रदेश के कई जिलों में हो रही

0: बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं हापुड़ में भारी बारिश के चलते कुछ जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी भी हुई। एक रिपोर्ट।
1: बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था। जनपद हापुड़ में सावन मास की पहली तेज बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली। जनपद हापुड़ में बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी। वहीं बारिश के चलते किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। किसानों के खेतों में खड़ी गन्ना धान सहित सभी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी बताई जा रही है। हरिद्वार और ब्रजघाट से कांवड़ लेकर आते कांवड़िए बारिश में भीगते हुए काफी आनंदित दिखाई दिए। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सरकार ने पेश किया 59,19,54,00,000 रुपए का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा, प्रदेश के विकास की गति को आगे बढ़ाएगा ये बजट। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को यूपी रोडवेज बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। अनुपूरक बजट में किया गया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक लखनऊ में संपन्न। संयुक्त बयान को औपचारिक रूप से अपनाने पर बनी सहमति। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सारनाथ में धार्मिक स्तूप का किया भ्रमण। कहा, विश्व धरोहर का दर्जा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूं, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
6: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
7: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं, स्वदेशी शिमला विचार FM पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। श्रोताओं आदाब, नमस्कार। कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज किशोर कुमार जी की जयंती है। जी हां साथियों, हर वर्ष 4 अगस्त को किशोर जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। वर्ष 2026 में उनकी 97वीं जयंती मनाई जा रही है। साथियों, किशोर कुमार जी भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में गिने जाते हैं। उन्होंने हजारों गीत गाए और अभिनय, संगीत निर्देशन, गीत लेखन तथा फिल्म निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी आवाज आज भी करोड़ों संगीत प्रेमियों के दिलों में बसती है। वे भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में गिने जाते हैं। उन्होंने हजारों गीत गाए और अभिनय, संगीत निर्देशन, गीत लेखन तथा फिल्म निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले खत के साथ। ये पहला खत हमारे पास आया है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास बरेली से। आप हैं राम प्रसाद शर्मा और मनोरमा देवी वंश शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। आपने सुना चाहे फिल्म अभिमान का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत ST वर्मन का। और ये खत हमें भेजा है कटरा चंद खां मौर्य, मंदिर वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, अरोही मौर्य, स्वाति मौर्य। आप हैं महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोटखे, नंदा बोटखे, हनुमान बोटखे, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, वारिस अली खान और शाहनवाज खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आप हैं करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय,

लुधिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। और आप हैं हमारे श्रोता मौला हलवाईन शेरपुर जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके परिवार के सभी लोग। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैश्लव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिक। तो आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: फिल्म का नाम है बातों बातों में, आवाज़ है आशा भोसले और किशोर कुमार की, गीत है अमित योगेश का, संगीत राजेश रोशन का, और फरमाइश की है आप सभी ने बिलराम गेट कासगंज से, एम असलम सैफी जैबुन शब एकम अकरम सैफी आवाद खान, आप हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई नासिर भाई, बिक्की भारद्वाज, प्रदीप पाल नमन और श्री राम राठौर, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी, सोनम सलीमपुर बक्सर से शरीफ शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, बेबी अंसारी, छठिया पोखरा डुमराव से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज, आप हैं बिजली घर मीरगंज से भाई कल्लू मिस्त्री, रिजवान अहमद और इनके परिवार के सभी लोग, साथ ही कस्बा सिधौली से आप हैं जीशान वारसी, इमरान वारसी और रेहान वारसी, करूला मुरादाबाद से आप हैं अयुब खान, इरम गुड़िया और इनके परिवार के सभी लोग, सरगुजा पैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशम थापा, आदिबा थापा बिहारी, कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी बली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा, उल्ला आसमा, छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मिराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, मलुट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, बीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण और रमेश मिगलानी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलठाणा महाराज से नरेंद्र नरवाडे, ज्योति आकांक्षा और आकाश कुमार, आप हैं सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव, गोलू मोनिका, अनुराग और राजेश कुमार, मनगारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली से बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हृदय उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, ओमपति भारती, खनक, शकुन, सारांश, आयांश, अदिति, शिवांश और प्रताप सिंह, भटिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, आप हैं छत्रपति सामाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, राधिका गजबीय, विवेक अनिष्का और तन्मय गजबीय, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन डींगिया, आपार ढींगिया, आप हैं दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, रामचंद मखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सबिता और इनका परिवार, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं बातों बातों में फिल्म का ये गीत किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए सुनिए
2: कहिए कहिए ना।

कार्यक्रम की आखिरी फरमाइश, वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से प्रेम कमल वाशनी, सुशीला कमल वाशनी, प्रभात कमल, अमरीश कमल, सलोनी कमल, सचिन कमल, नीरू कमल, देविका कमल, कार्तिक कमल, वेदरिचा कमल, ऐश्वर्या कमल वाशनी। आप हैं लच्छनपुर से रामजीत साहू, जीवनलाल रजक, मोपका भाटापारा से देवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू, कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। आप हैं इस्लामपुरा सनावत पाकिजा रेडी श्रोता संघ से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतिशा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। अमरावती चौक महाराष्ट्र से कमरुल्ला भाई, नसीम बेगम, आशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुश्तवा खान, राऊ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। अमरपुर पेंडर छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी और

इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं वार्ड नंबर 5 कस्बा बिलसी से रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नज़ाकत अलवी, शाहीन बेगम अलवी, आहिल बाबू अलवी, आदिल अलवी। आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीजलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा। रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये हैं शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर त्रिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा और वर्मा परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गोलमाल का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम अनुरोध गीत से चलते चलते बस यही कहेंगे कि स्वर सम्राट किशोर जी की जयंती पर उन्हें हम शत-शत नमन करते हैं। उनकी मधुर आवाज और अमर गीत सदैव संगीत प्रेमियों का मार्गदर्शन और मनोरंजन करते रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम अनुरोध गीत से दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। उच्च सदन की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नकदी और कीमती सामान की चोरी का मुद्दा उठाया, जिसका सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अपनी बात रखने के लिए कहा। खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की कथित चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों पर लगे आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति की अनुमति से बोलते हुए कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है, उसे सदन में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अब ये दल चंदा चोरी के मुद्दे पर नाटक कर रहे हैं। इस बीच द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सदस्य तिरुचि शिवा ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाने का प्रयास किया, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच शून्यकाल में दो सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने देश में परिवहन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए परिवहन आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन समय की आवश्यकता है। भाजपा की ही गीता उर्फ चंद्रप्रभा ने उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में कौशल विकास केंद्र खोलने की मांग करते हुए कहा कि जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं तथा शिक्षा, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि औरैया में बड़ी संख्या में युवा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। हंगामे के बीच ही सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न भी पूछे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके जवाब भी दिए। प्रश्नकाल के दौरान लगातार नारेबाजी और शोर शराबे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश की अनुमति से गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा में भाजपा की दर्शना सिंह, विश्वजीत सिन्हा, साधना सिंह, तृणमूल की ममता ठाकुर, द्रमुक के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के संतृप्त मिश्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के मेदा रघुनाथ रेड्डी, अन्ना द्रमुक के एम थम्बीदुरई, एम धनपाल, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, माकपा के वी शिवदासन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो और शिवसेना की ज्योति नागनाथ वाघमारे ने हिस्सा लिया। चर्चा में अधिकतर सदस्यों ने माना कि देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण नागरिकों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विलंब से जन्म और मृत्यु पंजीकरण कराने से होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए

ये इसमें कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि जिन बच्चों का जन्म किसी अन्य देश में हुआ है ऐसे बच्चों का भी जन्म भारत में दिखाया जाए और इसके लिए कानून की खामियों का फायदा उठाया जाता है। उन्होंने आगाह किया कि अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी सही व्यक्ति के लिए कोई रोक नहीं है तथा इस प्रक्रिया का डिजिटलीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में 3.5 लाख से अधिक पंजीकरण केंद्र हैं। उन्होंने सदन को सूचित किया कि देश में जन्म पंजीकरण स्तर 2014 में 86.6% था जो 2024 में बढ़कर 99.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के मामले में यह आंकड़ा क्रमशः 72.5% था जो बढ़कर 99.4% हो गया है। राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से देश और लोकतंत्र के साथ धोखा किया था। मंत्री ने कहा कि सरकार जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जन्म या मृत्यु होने के 2 वर्ष के बाद यदि सूचना दी जाती है तो ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रार पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में जन्म और मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर सूचना देने वाले मामलों में जो पुराने प्रावधान लागू हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने 2 साल से अधिक की अवधि वाले मामलों के लिए प्रावधानों में बदलाव करने का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि देश चाहता है कि भारत माता की गोद में पैदा होने वाली हर संतान का रजिस्ट्रेशन हो। ये मोदी सरकार का संकल्प है। साथ ही जिसकी मृत्यु हो जाती है और वो भूत बनकर तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का मतदाता बना रहता है ऐसे भूतों से देश छुटकारा चाह रहा है। राय ने कहा कि इसलिए समय से मृत्यु का पंजीकरण भी अत्यंत आवश्यक है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। उच्च सदन में ये विधेयक पारित होने के बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामा थमते न देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने आज विनियोग संख्यांक 3 विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। हालांकि विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शोर शराबे के बीच ही सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। सदन की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के कारण पिछले कई दिनों की तरह आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा तो विपक्षी के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मैं आप सभी को बोलने का अवसर दूंगा लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्न उत्तर होते हैं और सभी से अनुरोध है कि कार्यवाही चलाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मैंने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सभी दलों से ये अनुरोध किया था। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और चर्चा एवं संवाद के लिए है। ये नारेबाजी करने और तख्तियां लेकर आने का मंच नहीं है। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 2 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। सैकिया ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर जाकर बैठने का आग्रह करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण विधेयक है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विपक्ष के जिन सदस्यों ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पेश किए जाने के विरोध में बोलने के लिए नोटिस दिया था
उन्होंने आसन द्वारा नाम पुकारे जाने के बावजूद ऐसा नहीं किया।

इस विधेयक का उद्देश्य संदाय एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करते हुए उन्हें सरल, स्पष्ट और अधिक प्रभावी बनाना है। ये मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। आयकर अधिनियम 2025 तथा आयकर अधिनियम 1961 में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इसके तहत कर निर्धारण, अपील, दंड और अभियोजन से संबंधित प्रावधानों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाया गया है। कुछ मामलों में दंड की राशि बढ़ाने तथा कुछ मामलों में कर की दरों का युक्तिकरण करने का प्रस्ताव है। स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए कुछ परिस्थितियों में दंड एवं अभियोजन से राहत का दायरा बढ़ाया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल भले ही नहीं चल सका, लेकिन सरकार ने कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने वर्ष 2024 से अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में 254 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इन लोगों के कब्जे से 40 करोड़ रूपये से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। मंत्री के अनुसार 103 विदेशी नागरिक अनिवार्य किरायेदार सत्यापन के बिना किराए के मकानों में रह रहे थे। इस मामले में 63 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक अन्य लिखित उत्तर में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का उल्लेख करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एनक्रिप्टेड संचार एप्लीकेशन तथा डार्कनेट के माध्यम से संचालित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क की पहचान कर उन्हें ध्वस्त करने के लिए खुफिया जानकारी आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि डार्कनेट आधारित मादक पदार्थ तस्करी तथा क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होने वाले लेनदेन की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल संबंधी विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सभी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में समर्पित डार्कनेट और क्रिप्टो करेंसी सेल स्थापित करने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, उन्नत तकनीकों तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से साइबर सक्षम संगठित मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि देशभर में इस वर्ष 1 मार्च से अब तक लू के कारण 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4,853 मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में लू से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, जबकि तेलंगाना में सबसे अधिक मामले सामने आए। राय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय ने 2026-31 अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन कोष SDRF तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष NDRF के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अंतर्गत लू और आकाशीय बिजली को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब SDRF और NDRF के माध्यम से राहत सहायता प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही लू से बचाव और उसके प्रभाव को कम करने से संबंधित परियोजनाओं को भी आपदा न्यूनीकरण निधियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हालिया गिरावट का मुख्य कारण भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की वृद्धि है। उनके अनुसार शुद्ध FDI वर्ष 2024-25 में घटकर 1 अरब अमरीकी डॉलर रह गया, जबकि ये 2023-24 में 10.2 अरब डॉलर तथा 2022-23 में 28 अरब डॉलर था। जितिन प्रसाद ने कहा कि शुद्ध FDI प्रवाह में हालिया रुझान भारत द्वारा विदेशों में बढ़ते निवेश तथा विदेशी निवेश की बढ़ती वापसी से जुड़ा हुआ है। जितिन प्रसाद ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ से देश का निर्यात 2025-26 में 11.8% बढ़कर 16,36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। उन्होंने कहा कि SEZ की क्षमता का अब बेहतर उपयोग करने, निवेश आकर्षित करने तथा उन्हें घरेलू आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए सरकार समय समय पर विभिन्न कदम उठाती रहती है, ताकि इन निर्यात क्षेत्रों की परिचालन दक्षता में वृद्धि हो सके। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण लगातार 12वें दिन आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो

0: सके। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समवेत स्वरों में देशगान।
2: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है, 104.4 FM पर।
3: मेगाहर्ट्ज़ यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@CBS.com।
2: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी में नया क्या, शंकाएं एवं समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है डायबिटीज अथवा शुगर की बीमारी में नया क्या, शंकाएं एवं समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, बुधवार दिनांक 5 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।
4: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है AIR@CBS.com। एक बार फिर से सुन लीजिए AIR@CBS.com।

0: हैं योगेश श्रीवास्तव।
1: विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्य राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। शोर शराबे और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब 45 मिनट तक स्थगित रही। हंगामे के बीच ही विधायी कार्यों का निस्तारण किया गया। इस दौरान सपा के सदस्य वेल में धरना देते हुए नारेबाजी करते रहे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सपा सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच 39,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक मांगों के अनुरूप प्रस्तावित अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार इस वर्ष के मूल बजट का 6.47% है। इसमें राजस्व लेखे का व्यय 17,399.50 करोड़ तथा पूंजी लेखे का व्यय 41,620.04 करोड़ रखा गया है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय पर विशेष बल देने का उद्देश्य प्रदेश में सड़क, ऊर्जा, उद्योग, चिकित्सा, ग्रामीण विकास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का तेजी से विस्तार करना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिले। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देना, नई जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा आधारभूत संरचना को और अधिक मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित अनुपूरक बजट में नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इससे सरकार नई विकास परियोजनाओं के साथ ही पहले से चल रही योजनाओं को भी और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए 22,107.88 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान की जा सकेगी। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी बड़ी प्राथमिकता दी है। इसके लिए ग्राम विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण अधोसंरचना, पंचायत विकास, ग्रामीण आजीविका, मूलभूत सुविधाओं और गांवों में विकास कार्यों को गति देने में किया जाएगा। प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा ऊर्जा अवसंरचना के विस्तार के लिए ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। अनुपूरक बजट में चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए करीब 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि से अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार, चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1,655 करोड़ आवंटित किए हैं। वहीं महिला कल्याण विभाग के लिए लगभग 1,094 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी योजनाओं को मजबूती मिलेगी। अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग सड़क निर्माण, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। शोर शराबे के बीच नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की अनुपूरक अनुदान मांगों को सदन के पटल पर रखा। सपा सदस्यों को आगाह करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि आप लोग विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष की चेतावनी के बाद भी सपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा। हंगामे के दौरान ही सपा के सदस्य सचिन यादव ने सदन में मौजूद नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो खींचने की कोशिश की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के मना करने के बावजूद निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें बलपूर्वक शेष सत्र के लिए निष्कासित कर दिया गया। साथ ही बाकी सदस्यों को भी चेतावनी दी कि जो भी सदस्य इस तरह का आचरण करेगा उसके खिलाफ इसी तरह की कार्यवाही की जाएगी। नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो सपा के सदस्य नारेबाजी और हंगामा करते रहे।

0: शोर शराबे और हंगामे के बीच ही नेता सदन ने अपना पूरा वक्तव्य दिया। शोर शराबे के दौरान भाजपा और सपा सदस्य दोनों आमने सामने आ गए। इस बीच सदन के सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सदस्यों का आचरण प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं से विश्वासघात है। जिस मंच का उपयोग जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए होना चाहिए, वहां पर इस तरह का शोर शराबा और हंगामा संवैधानिक मर्यादा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि सपा ने हमेशा लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। पीठ के द्वारा नियम के अंतर्गत जिन भी मुद्दों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, उन सभी मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लगातार सदन का माहौल खराब किया जा रहा है। शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।
1: यह थी विधानसभा की समीक्षा। अब सुनते हैं विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
0: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने शिक्षा के गिरते स्तर पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, बच्चों का भविष्य संवारने का काम किया जा रहा है, शिक्षकों से अधिक शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा। सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव कार्य कर रही है, जिसका समय समय पर अनेक माध्यमों से प्रचार प्रसार भी किया जाता है, जिससे जनता लाभ उठा सके। सदन में आज प्रश्न पहर शांतिपूर्वक चला। सपा के आशुतोष सिन्हा ने राज्य सरकार द्वारा एक अल्प अनुभव वाली AI कंपनी के साथ 25,000 करोड़ रुपए के MOU के संबंध में औद्योगिक विकास मंत्री से प्रश्न किया। औद्योगिक विकास मंत्री के उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं हुए। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकरण की जांच करा ले कि ये MOU कराने लायक है या नहीं। शून्य प्रहर में नियम 39 में ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शिक्षा विभाग में विनियमितीकरण से वंचित तदर्थ नियुक्त प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण करने के संबंध में सूचना दी, जिस पर उमेश द्विवेदी समेत अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बात रखी। नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पर शासकीय आदेश जारी किया जा चुका है। सभापति ने सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षा संबंधी मामलों के लिए सदन की जो समिति बनी हुई है, ये मामला उसमें उठाएं और बैठक कर सम्मानजनक रास्ता नियम के दायरे में निकालने का प्रयास करें। सभापति ने ये भी निर्देश दिया कि नेता सदन अगस्त के माह में ही ये बैठक कर ले। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदान की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। शून्य प्रहर में ही समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, आशुतोष सिन्हा, बलराम यादव, किरण पाल कश्यप, मोहम्मद जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, शाह आलम ने प्रदेश में शिक्षा के गिरते स्तर का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में विपक्ष ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो गलत हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। निर्दलीय समूह के राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के SCERT व डायट में कार्यरत प्रवक्ताओं के ग्रेड पे 6,000 रुपए का लाभ दिलाए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सदन को तथ्यों से अवगत कराया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस मामले को भी शिक्षा के मामले सुलझाने के लिए नेता सदन की अध्यक्षता में बनी समिति में उठाने का निर्देश दिया। सदन की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम विधानमंडल समीक्षा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

किसान। आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आरंभ करें फिल्म परदेशी के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है मीना कपूर ने। गीत के बोल

0: امروز کنه؟
1: نه مراد، یه تو سخت دردیان خود
2: پشودن ہے ان

आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रपट से आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गायन फिल्म धरती का ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शागिर्द का ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म हम जोली का ये गीत, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत के बोल आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम जोली का ये गीत। इसके साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार।

0: संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के

0: खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
1: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख

0: लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की

0: सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।
1: वो झरोके से

झुमरू फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार का ही संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे झुमरू फिल्म, माफ कीजिएगा, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत, जिसमें लता मंगेशकर की आवाज भी उनके साथ है और आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

सत्य पे सत्ता फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में ये गीत आपने सुना। गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपके लिए विविध भारती पर, और अब आपको सुनवाते हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से ये गीत।

जॉनी मेरा नाम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजें, इंदिवर के बोल, कल्याण जी, आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आपके लिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, फिल्म आन मिलो सजना।

अनमिल सजना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और आज का ये संगीत का सफर आपने तय किया अपने दोस्त नेहा शर्मा के साथ। अब दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं।

0: जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।
1: अरे हाय हाय हाय।

0: लाया हूँ।
1: सन 1929 के अगस्त महीने की 4 तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

0: इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं।
1: मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, नौ दो ग्यारह और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये

किशोरदा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोरदा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक

0: दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कचरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक

0: साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग सरकार ने कुछ
2: आत्मा से उपजा सबसे पवित्र प्यार।
3: भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया। अगर स्पोर्ट्स वाइज
2: हो निहारते रहो।
1: दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे।
4: एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम
1: अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
5: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर पटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली
3: भारत की नई पहचान बनाई। वहीं तेजस्विन शंकर कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में डिकैथलॉन पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। जूडो और पैरा स्पोर्ट्स भी भारत की सफलता की बड़ी कहानी बनकर उभरे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मीराबाई चानू ने एक बार फिर वेटलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी बादशाहत कायम रखी। पैरा एथलेटिक्स में सोमन राणा, शर्मिला ढांकर और दिलीप गावित ने स्वर्ण पदक जीतते हुए भारत को कुल 7 पदक दिलाए और ये साबित किया कि भारतीय पैरा खेल लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर पदकों की तुलना की जाए तो ग्लासगो में भारत ने बर्मिंघम 2022 के मुकाबले 22 पदक कम जीते, लेकिन ये भी सच है कि इस बार प्रतियोगिता में केवल 10 खेल शामिल थे और भारत के पारंपरिक पदक दिलाने वाले कई खेल कार्यक्रम से बाहर थे। बर्मिंघम में जिन 6 खेलों से भारत को 30 पदक मिले थे वो इस बार आयोजित ही नहीं हुए। ऐसे में 39 पदकों का ये प्रदर्शन केवल आंकड़ों से नहीं बल्कि नए खेलों में उभरती भारतीय ताकत की कहानी भी कहता है। ग्लासगो ने भारतीय खेलों को नए सितारे दिए, मुक्केबाजी ने नया इतिहास लिखा, जूडो ने नई शुरुआत की, एथलेटिक्स और पैरा स्पोर्ट्स ने नई उम्मीदें जगाई और अब इन खिलाड़ियों की नजरें अगले बड़े लक्ष्य एशियन गेम्स पर हैं। यही है नए भारत के खेलों की पहचान, लगातार आगे बढ़ना और हर मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाना।
6: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का समापन भारत के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक ओर भारतीय खिलाड़ियों ने 39 पदकों के साथ शानदार प्रदर्शन किया तो दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक तौर पर भारत को ही सौंप दिया गया। अब 2030 में खेलों के 100वें यानी कि शताब्दी संस्करण की मेजबानी करेगा अहमदाबाद। 2010 दिल्ली के बाद ये दूसरा मौका होगा जब भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: ग्लासगो में 11 दिनों तक चले रोमांचक मुकाबले के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का भव्य समापन हुआ, लेकिन समापन समारोह का सबसे यादगार पल वो था जब कॉमनवेल्थ गेम्स का ध्वज और बैटन आधिकारिक रूप से भारत को सौंपा गया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भारत की ओर से इस ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया।
7: ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ी

0: खिलाड़ियों ने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया है, भारत का झंडा शान से लहराया है। हालांकि ये वक्त हमारी जो गेम्स में हमें अधिकतम मेडल्स मिलते थे वो गेम्स को कट डाउन की गई है, फिर भी भारतीय खिलाड़ियों ने नई गेम्स में अपनी जगह बना ली और जगह बना के भारत का तिरंगा और शान से लहराया है। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं और साथ ही अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। कॉमनवेल्थ सेंटेनरी इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट है और अहमदाबाद उसे पूरी तरह से तैयारियों के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100वें संस्करण का आयोजन करेगा और इसकी मेजबानी करेगा भारत का अहमदाबाद। इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की 2 बार मेजबानी करने वाला दुनिया का केवल दूसरा देश बन जाएगा। इससे पहले भारत ने वर्ष 2010 में नई दिल्ली में इन खेलों का सफल आयोजन किया था। अब 2 दशक बाद दुनिया की निगाहें एक बार फिर से भारत पर होंगी। अहमदाबाद केवल खेलों की मेजबानी नहीं करेगा बल्कि भारत की खेल क्षमता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आयोजन कौशल का भी वैश्विक प्रदर्शन करेगा। भारत सरकार और गुजरात सरकार इसे भविष्य के खेल भारत की नींव मान रही है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत के ओलंपिक सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई खेल सुविधाएं, विश्व स्तरीय स्टेडियम, कोचिंग इकोसिस्टम और जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के विकास की योजनाएं आने वाले वर्षों में भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य रखती हैं। ग्लासगो में भारत ने 39 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया और अब उसी ग्लासगो से भारत को मिली है एक नई जिम्मेदारी, कॉमनवेल्थ गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी। 2010 में दिल्ली ने दुनिया को भारत की आयोजन क्षमता दिखाई थी। अब 2030 में अहमदाबाद उस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। अगला पड़ाव अहमदाबाद 2030।
2: भारत और जिम्बाब्वे के बीच हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज जहां कप्तान श्रेयस अय्यर की युवा ब्रिगेड ने जिम्बाब्वे को 3-0 से सीरीज अपने नाम की। हरारे में जो हुआ वो एक परफेक्ट कमबैक की कहानी है। आज हम बात करेंगे सीरीज के उस तीसरे और आखिरी मुकाबले की जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैन का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मैच की शुरुआत हुई जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के टॉस जीतने से, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी की। इस मैच का असली हीरो रहा वो खिलाड़ी जिसकी उम्र जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, 15 साल का चमत्कार वैभव सूर्यवंशी। हरारे की उस धीमी पिच पर जहां रन बनाना कभी भी आसान नहीं होता, वैभव ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। 49 गेंदों में 81 रन की वो आतिशी पारी, 8 करारे चौके और 4 गगनचुंबी छक्के। उन्होंने अपना अर्धशतक तो शानदार अंदाज में पूरा किया ही बल्कि ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रनों की एक बेहतरीन और ठोस साझेदारी भी की। ईशान किशन ने भी 29 रनों का अहम योगदान दिया, हालांकि वो एक बड़ा स्कोर बनाने से चूक गए। इसके बाद हमारे कप्तान श्रेयस अय्यर ने 27 रनों की एक तेज पारी खेली और अंत में हमारे अपने फिनिशर रिंकू सिंह ने 25 रन जोड़कर स्कोर बोर्ड को रॉकेट की तरह रफ्तार दे दी। नतीजा, भारत ने 20 ओवर में 192 रनों का एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। अब जिम्बाब्वे के सामने था 193 रनों का लक्ष्य। T20 क्रिकेट में 193 रन चेज करना कभी आसान नहीं होता और जब सामने मयंक यादव जैसी एक्सप्रेस पेस हो तो बल्लेबाजों के पसीने छूटना तय है। जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत ही लड़खड़ाती हुई। भारतीय गेंदबाजों ने पावर प्ले में ही अपना शिकंजा कस लिया। स्पिनर रवि बिश्नोई ने बेन करन को 20 रन पर मयंक यादव के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन दोस्तों, असली कहर तो बरपाया मयंक यादव ने। अपनी आग उगलती गेंदों से मयंक ने जिम्बाब्वे के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अपने 4 ओवर के कोटे में महज 29 रन देकर 3 अहम विकेट लिए। यश ठाकुर ने भी मयंक का बखूबी साथ निभाया और 45 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। अंततः 20 ओवर की समाप्ति पर जिम्बाब्वे की टीम 7 विकेट के नुकसान पर महज 157 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला 35 रनों से अपने नाम कर लिया। इस 35 रन की शानदार जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप कर ली। भारतीय बैडमिंटन को एक नया सितारा मिल गया है। महज 17 साल की तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी वर्ग की सबसे युवा चैंपियन बन गई हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: महज 17 साल

0: 222 दिन की उम्र और एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत की उभरती हुई बैडमिंटन स्टार तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 के महिला एकल फाइनल में वियतनाम की विश्व नंबर 21 नगुएन थुई लिन को सीधे गेमों में 21-16 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टू सुपर 300 खिताब जीता। इस जीत के साथ तन्वी ताइपे ओपन के इतिहास की सबसे युवा चैंपियन बन गई और भारत का 17 वर्षों का इंतजार भी खत्म कर दिया। साल 2008 में साइना नेहवाल के बाद अब तन्वी शर्मा इस प्रतिष्ठित खिताब को जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने सिर्फ एक गेम गवाया और अपने शानदार स्मैश, सटीक नेट प्ले और बेहतरीन रणनीति से सभी को प्रभावित किया। वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 रह चुकी तन्वी शर्मा का ये खिताब भारतीय बैडमिंटन के उज्ज्वल भविष्य की नई शुरुआत माना जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का उनका सफर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ चुका है। भारतीय बैडमिंटन को एक और बड़ा सितारा मिल गया है और दुनिया ने एक नया नाम याद कर लिया है, तन्वी शर्मा।
1: अब बात एक ऐसे चमकते सितारे की जिसने आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व कप की ट्रॉफी तक का शानदार सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर नल्लापुर रेड्डी श्री चरणी की। आज 4 अगस्त है और आज ही के दिन साल 2004 में इस टैलेंटेड खिलाड़ी का जन्म हुआ था, यानी आज हमारी चैंपियन श्री चरणी का 22वां जन्मदिन है। उनके इस खास दिन पर नजर डालते हैं उनकी अब तक की शानदार यात्रा पर। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के एरामला पल्ली गांव में जन्मी चरणी YSR कड़पा जिले से भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि उनका पहला प्यार क्रिकेट नहीं था। छठी क्लास में उनके पिता चंद्रशेखर रेड्डी, जो रायलसीमा थर्मल पावर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उन्होंने चरणी को बैडमिंटन की तरफ प्रेरित किया था। चरणी ने खो खो में भी हाथ आजमाया, लेकिन किस्मत को तो उन्हें क्रिकेट के मैदान पर ही चमकते देखना था। उनके चाचा किशोर कुमार रेड्डी ने उन्हें खेल की ट्रेनिंग में पूरा सपोर्ट किया। दिग्गज क्रिकेटर स्मृति मंधाना और युवराज सिंह को अपना आइडल मानने वाली चरणी ने जल्द ही अपनी स्पिन से जादू बिखेरना शुरू कर दिया। उनके घरेलू क्रिकेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश की टीम से खेलते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिसंबर 2024 में विमेंस प्रीमियर लीग ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने इस युवा प्रतिभा पर दाव लगाया और उन्हें 55 लाख रुपए में टीम का हिस्सा बना लिया। मार्च 2025 में सीनियर विमेंस मल्टी डे चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया बी के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया था। साल 2025 उनके लिए सचमुच एक सुनहरे सपने जैसा रहा। अप्रैल 2025 में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। इसके बाद जून 2025 में जब उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ अपनी T20 डेब्यू करने का मौका मिला तो चन्नी ने अपने पहले ही मैच में 4 विकेट चटका दिए। श्रावंती नायडू के बाद T20 डेब्यू में 4 विकेट लेने वाली वो सिर्फ दूसरी भारतीय महिला बनी। और उनके करियर का सबसे गौरवशाली पल तब आया जब उन्होंने 2025 के ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम की जीत में एक अहम भूमिका निभाई। अपनी बेहतरीन स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी से उन्होंने दुनिया भर के दिग्गज बल्लेबाजों को खामोश कर दिया और विश्व कप ट्रॉफी उठाने वाले स्क्वाड का एक चमकता हुआ हिस्सा बनी। आज अपने 22वें जन्मदिन पर श्री चरणी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर आपके हौसले बुलंद हो और मेहनत में सच्चाई हो तो कोई भी गांव या शहर आपकी उड़ान को नहीं रोक सकता। तो श्री चरणी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जनपद रामपुर में आयोजित होने वाली विभिन्न राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं और जनपद में उपलब्ध खेल अवसंरचनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं उप जिला क्रीड़ा अधिकारी संतोष कुमार।
2: मैं संतोष कुमार, उप क्रीड़ा अधिकारी जनपद रामपुर। आज वार्ता करते हैं खेलों में राज्य स्तर पर चमकते रामपुर के सितारे। जनपद रामपुर खेलों में पूर्व से ही काफी अग्रणी रहा है, जहां कई बड़े खिलाड़ियों ने अपना नाम विश्व स्तर तक रोशन किया है। क्योंकि जनपद रामपुर एक नवाबों के शहर से भी जाना जाता है, जहां खेल बहुत ही अपने चरम पे रहा है, वो चाहे उसमें हॉकी रहा हो, फुटबॉल रहा हो, वॉलीबॉल रहा हो, कबड्डी रहा हो, एथलेटिक्स, ऐसे बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो कि अपने चरम पे रहे हैं। और आज हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे चमकते सितारे खिलाड़ी के रूप में आज निकल कर जा रहे हैं, उभर कर निकल रहे हैं, जिसमें जनपद से मैं समझता हूं कि

बहुत सारे खिलाड़ियों को अवसर मिला है जो आज खेल के माध्यम से बहुत सारे विभागों में विभिन्न पदों पर नौकरी कर रहे हैं, और उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी जो अपनी आज तैयारी कर रहे हैं वो चाहे किसी भी खेल के रूप में हो। जनपद रामपुर चूंकि राज्य स्तरीय की जब हम बात करते हैं तो देखिए, मैं विगत वर्षों से देख रहा हूं कि जनपद रामपुर में कई खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और विभिन्न आयु वर्ग में आयोजन हुए हैं जिससे कि सभी खिलाड़ियों को अवसर मिला। और निश्चित जब हमारे यहाँ कोई भी आयोजन होता है, कोई भी कंपटीशन होती है किसी भी खेल की, उससे जो जनपद के खिलाड़ी और आसपास के खिलाड़ी मोटिवेट होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को उनका देखकर स्किल सीखते हैं और उनका भी मन होता है कि मैं भी खेलूं और एक बड़ा खिलाड़ी बनूं। क्योंकि जिस समय वो मंच पर सम्मानित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, उस समय जो भी दर्शक के रूप में आते हैं तो वो भी, उनके पेरेंट्स हो चाहे गार्जियन कोई भी हो, वो भी चाहता है और बच्चा स्वयं भी देखकर उससे मोटिवेट होता है और उसके अंदर एक भावना, खेल भावना जुड़ती है कि मैं भी खेल खेलूंगा। तो जनपद रामपुर, चूंकि मैं जैसा कि बता चुका हूं कि आज हम जो चर्चा कर रहे हैं राज्य स्तर पर चमकते सितारों की, जनपद रामपुर में एक उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के निर्देशन में हॉकी स्टेडियम नवाब जुल्फिकार अली स्टेडियम बना हुआ है जिसमें बालक हॉकी छात्रावास स्थापित है। विगत कई वर्षों से ये संचालित है जहां पर हॉकी एस्ट्रो टर्फ लगा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश से चयनित होकर हमारे खिलाड़ी चयन होकर आते हैं उनकी सरकार के द्वारा समस्त सुविधाएं, चाहे वो खेल हो, चाहे आवास हो, ग्राउंड हो, उनकी शिक्षा हो, उन सभी पर पूरी तरह से सरकार उनका जो खर्च होता है उसका वहन करती है। उनका स्वास्थ्य हो, मतलब तमाम जो उनकी सुविधाएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, खेलों की सामग्री हो चाहे जो भी हो, ऐसे कई छात्रावास उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, कई खेलों के हैं जिसमें जनपद रामपुर हमारा हॉकी छात्रावास संचालित है। जहां पर मैं चमकते सितारों की बात करूं तो राज्य स्तर पे तो लगभग हमारे यहां से प्रतिवर्ष करीब करीब जनपद की अगर हम बात करें तो विभिन्न खेलों में सैकड़ों खिलाड़ी राज्य स्तर पर प्रतिभा कर रहा है और कई खेलों में मेडल भी लाते हैं बच्चे खिलाड़ी, जो कि जिसे हमारा जनपद रामपुर गौरवान्वित होता है, जिनका उत्कर्ष प्रदर्शन से हम सभी गौरवान्वित होते हैं। हॉकी की अगर बात करें यहाँ पर तो पूर्व में हमारे जनपद रामपुर से छात्रावास के कई खिलाड़ी राज्य स्तर से खेलते हुए चयनित होकर वो राष्ट्र स्तर तक भर उन्होंने प्रतिभा किया और राष्ट्र स्तर पर स्कूल नेशनल खेलों में भी उन्होंने मेडल प्राप्त किया। पिछले वर्ष हमारे यहाँ कई खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जो खेल आयोजन होते हैं उन आयोजनों में जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता रहे उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया, नगद धनराशि से सम्मानित किया, जिसमें हमारे यहाँ अर्पित कुमार, कमर फैयाज और मानवेंद्र, जिनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगद धनराशि देकर उनको सम्मानित किया, चूंकि ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो इस तरह से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से खिलाड़ी स्टेट और स्टेट से नेशनल स्तर तक जाते हैं, खेल कर आते हैं। इस वर्ष भी कई हमारे खिलाड़ी, आयुष भट्ट हैं, पूजन तिवारी हैं, आर्यन रावत हैं, विभिन्न आयु वर्गों में ऐसे खिलाड़ी चयन होकर जाते हैं और खेलकर हमारे जनपद रामपुर का नाम रोशन करते हैं। राज्य स्तर पर हॉकी के अलावा भी कई खेलों का आयोजन होता है। विगत वर्ष में जनपद रामपुर में ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जिसका आयोजन किया गया, जनपद रामपुर उसका आयोजक रहा। खेल विभाग ने उसका बढ़ चढ़ कर और प्रशासन के सहयोग से बहुत ही अच्छा आयोजन कराया गया, जिसमें जो बाहर से टीमें आने वाली टीमों ने भी इसकी भूरभोर प्रशंसा की। वॉलीबॉल के साथ साथ फुटबॉल का भी आयोजन होते रहते हैं। इसी तरह से पिछले लगभग 2 से 3 वर्ष पूर्व मैं देख रहा था, चूंकि बास्केटबॉल एक खेल बहुत ही अच्छा खेल है जिसकी सुविधाएं अपने जनपद में भी हैं, जिसका आयोजन डीएमए स्कूल में किया गया और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। जो सुविधाएं हमारे जनपद रामपुर में जो मेहमानों की मेहमानदारी होती है, जिससे खिलाड़ी बहुत ही उत्साहित होकर जाता है और वो हमेशा रामपुर में आयोजनों में शामिल होने के लिए आतुर रहता है। इसी तरह से कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, विभिन्न ऐसे खेल हैं जिनके हमारे जनपद रामपुर में राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन हुआ और उन खेलों के आयोजन से ही हमारे जो चमकते हुए सितारे उसमें से चयन होकर आगे राज्य स्तर पर भी खेलने पहुंचे हैं। और अब बात आती है जो विद्यालय हमारे, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और दूसरा हमारा सीबीएसई बोर्ड है।
इस जनपद रामपुर में ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आपस में ये कंपटीशन हो रही है, खेलों की कंपटीशन है कि मैं अधिक आयोजन कराऊं या आप अधिक आयोजन कराएं। दोनों बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उसके पीछे कारण मैं समझता हूं कि यहां की सुख सुविधाएं

यहाँ के जिला प्रशासन का सहयोग, यहाँ के जो माननीय हैं हमारे उनका सभी का सहयोग, उन्हीं सभी का योगदान, जिसके वजह से हम बाहर की जो टीमें आती हैं उनको एक अच्छा वातावरण दे पाते हैं, बहुत अच्छा खेलने का अवसर दे पाते हैं उनको, खेल मैदानों की अच्छी एक सुविधाएं दे पाते हैं, आवासीय व्यवस्था दे पाते हैं, उनको सुरक्षा दे पाते हैं। मैं समझता हूँ कि जनपद रामपुर में जो भी खिलाड़ी आएगा वो मायूस होकर नहीं जाएगा, वो निश्चित ये सोच कर जाता है कि मुझे पुनः एक अवसर मिले, मैं रामपुर में जरूर प्रतिभाग करूंगा। जिसमें पूर्व में भी CBSE जोनल, जिसमें हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन जनपद रामपुर में पहले पूर्व में DMA ने कराया था, विगत वर्ष पिछले साल जो जोनल CBSE जोनल का जो आयोजन कराया गया स्मार्ट इंडियन पब्लिक स्कूल के माध्यम से, जिनका आयोजन कराया गया, जिसका खेल मैदान हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया पर स्थित खेल मैदान पर आयोजन किया गया और बहुत ही शानदार जिसका आयोजन किया गया। विगत वर्ष के सफल आयोजन को देखते हुए पुनः इस वर्ष भी स्मार्ट इंडिया स्कूल को ये कार्यक्रम कराने का अवसर मिला, जिससे जनपद भी गौरवान्वित होता है और उनके सफल आयोजन से भी खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं और खिलाड़ियों को एक और अच्छा अवसर मिल पाता है। जो कुछ खिलाड़ी बाहर नहीं जा पाते हैं वो मैं समझता हूँ यहाँ पर खेलकर अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारी वार्ता स्कूल विद्यालयों से होती रहती है बीच बीच में, जिन्होंने बताया है कि जनपद की इस CBSE प्रतियोगिता के आयोजन में लगभग 10 से 12 या 15 टीमें करीब प्रतिभाग करती हैं। निश्चित एक हॉकी खेल में किसी जनपद की विद्यालयों की टीमें 10 से 12 टीमें अगर प्रतिभाग करती हैं, निश्चित वो खेल अपने अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है, जनपद बढ़ रहा है उस खेलों में। और चूंकि मैं जैसा बता रहा हूँ विगत 3 वर्षों से DMA दयावती मोदी स्कूल, उसके बाद सिम्स स्कूल लगातार दूसरी वर्ष इसका आयोजन कर रहा है CBSE जोनल, क्योंकि CBSE जोनल में लगभग हमारा उत्तराखंड पूरा और UP के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो उसमें शामिल होते हैं, इस तरह का आयोजन जो यहाँ पर होता है, और जिससे कई बच्चे, कई विद्यालयों के बच्चे जो हैं बाहर जाकर इससे CBSE नेशनल और CBSE नेशनल के बाद वो अन्य खेलों में भी हिस्सा लेते हैं, अपने प्रतिभा को निखारते हैं। खेलों को देखते हुए खेल अवस्थापनाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। जनपद रामपुर में वर्तमान में खेल अवस्थापनाएं बहुत बढ़ गई हैं जो खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। मैं समझता हूं कि आपके जनपद रामपुर में एक ऐसा जनपद जहां पर 3-3 स्टेडियम इस समय संचालित हो रहे हैं, नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनबड़िया जहां पर हॉकी एस्ट्रोटर्फ ब्लू कलर का लगा हुआ है, बहुत ही प्रभावित करता है सभी खिलाड़ियों को, नवाब जुल्फिकार के बाद हमारा शहीद आजम स्पोर्ट्स स्टेडियम बमनपुरी जहां पर विभिन्न खेलों की अवस्थापनाएं इस समय निर्मित हैं, जैसे आपका स्विमिंग हो, बैडमिंटन हो, जिम हो, आपका वॉलीबॉल है, टेबल टेनिस है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, पिकल वॉल है, बास्केटबॉल का, ये अभी सिंथेटिक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और उससे कहीं बड़ी हमारे जनपद रामपुर में जो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा हमको एक सौगात के रूप में मिला है जो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक, जो इसी वर्ष अभी जिसका कार्य प्रारंभ हुआ है और इस वर्ष में एक वर्ष के अंदर कार्य पूर्ण होकर खिलाड़ियों को मिल जाएगा। इसी प्रकार से हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिगन खेड़ा जहां पर हॉकी का स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तैयार बना हुआ है, जहां पर भी हमारा हॉकी प्रशिक्षण संचालित हो रहा है। मैं पूरे जनपद के स्कूल कॉलेज और विद्यालयों से साथ ही साथ उनके जो बच्चे हमारे हैं उनके अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक इन अवस्थापनाओं का, खेलों का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे खिलाड़ी अधिक से अधिक जनपद से निकलकर हमारे राज्य स्तर से राष्ट्र स्तर और राष्ट्र स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और जनपद हमारा गौरवान्वित हो। बात करेंगे हम राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में। जैसा कि मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं कि जनपद रामपुर हमारे खेल स्टेडियम में अग्रणी है। जनपद रामपुर में चारों साइड पर विभिन्न खेल मैदान है, क्योंकि अब जो समय चल रहा है वो एक सीजन है, खेलों का सीजन है, पूरे साल का ये निचोड़ खेलों का होता है, क्योंकि ये 2 से 3 माह हमारा अक्टूबर तक पूरा चलता है जिसमें विभिन्न खेलों के राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय आयोजनों का आयोजन होता रहता है, जिसमें जनपद रामपुर में पूर्व में नेहरू हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पिछले वर्ष, और इस वर्ष उसके सफल आयोजन को देखते हुए और जिला प्रशासन के सहयोग को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि होगी। इस जनपद रामपुर में माध्यमिक खेलों के आयोजन शुरू हो गए हैं, ये 4 अगस्त से, बल्कि अभी स्टार्ट ही हो चुके हैं 4 अगस्त से लेकर और भी अन्य खेल, जिसमें पूरे प्रदेश में लगभग 20 से 25 खेलों के
जो आयोजन होने हैं पूरे प्रदेश में, जो राज्य स्तरीय तक आयोजन होंगे जिसमें

0: जनपद की टीम और मंडल की टीमों का चयन होना है। पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ सभी खिलाड़ी ऐसी प्रतियोगिताओं के लिए चयन होने के लिए अपना अभ्यास करते हैं और वहां पर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये जनपद रामपुर खेलों में बहुत ही अग्रणी है और इस वर्ष इस जनपद रामपुर में आपको सीबीएसई जोनल का आयोजन मिला है, जो 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, जिसका आयोजन सीबीएसई स्कूल स्मार्ट इंडियन स्कूल जो कर रहा है और जिसका नवाब जुल्फिकार अली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पनवड़िया में प्रतियोगिता का जो मैच है वो खेले जाएंगे। ये जो आयोजन होगा जिसमें पूरे आपके जनपद के लगभग 10 से 12 टीमें हैं और उसके अलावा जो जोन है पूरा, वो टीमें यहीं पर आएंगी और प्रतिभाग करेंगी। इस वर्ष भी माध्यमिक का जो राज्य स्तरीय स्कूली प्रतियोगिता होनी है हॉकी की, जिसमें लगभग 107 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। चूंकि हॉकी खेल है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, जिसमें 18 खिलाड़ी, टीम मैनेजर, उनके कोच सम्मिलित रहते हैं। लगभग 20 की एक टीम तैयार होती है और ये जनपद के लिए वास्तव में खेलों का मेला है। बहुत बड़ा एक मेला खेलों का हो रहा है जहां पर 107 टीमें, आप समझ लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से, वो चाहे गांव का बच्चा हो चाहे शहर का बच्चा है, इकट्ठा होकर हमारे जनपद रामपुर में आएगा और उसको देखेगा, हमारे यहाँ की अवस्थापनाओं को देखेगा, खेल मैदानों को देखेगा, हमारे यहाँ के जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको देखेगा। मैं समझता हूँ कि इस मेले में जो शामिल होंगे उन सबकी चाक चौबंद व्यवस्थाओं को करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमारा, हमारे जो माननीय हैं, सभी लोगों का हम लोग को आशीर्वाद है, हम लोग को सहयोग है और उसके संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाएगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक हम लोग उदाहरण बनकर तैयार होंगे कि जनपद रामपुर में इतना अच्छा, इतना शानदार हम लोगों ने आयोजन कराया है। हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा से ये जो आयोजन कराया, 6 अगस्त 26 को सिविल सर्विसेज खेलों का, जिसमें 19 खेल हैं, जिला स्तरीय चयन ट्रायल्स का आयोजन बमनपुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम रामपुर में किया जा रहा है। जनपद के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये चयन ट्रायल रखा जाता है। अधिक जानकारी के लिए खेल विभाग से संपर्क कर सकते हैं, जो मंडल और मंडल से राज्य स्तर तक और राज्य स्तर से राष्ट्र स्तर तक ये प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही प्रतिभाग कर सकते हैं।
1: दोस्तों, ये था कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। मैं हूं अवधेश, आपसे चाहूंगा अनुमति।
2: खेल दर्पण।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन, राग है गावटी।

अभी आप सुन रहे थे सुषमा वाजपेयी का ख्याल गायन राग था गावटी। इसके साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल

0: प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the Lower House was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud.